आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: फॉरन एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिरी जा रहा
1: तो तुम लोग क्या गया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: माँ कल क्या खाएंगे?
2: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे।
3: और फिर जशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला देखा, उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।
4: हाँ?

0: और अगली बार फर्स्ट आना, ठीक है?
1: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण, मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है,
3: मेरा गांव मेरी धरोहर, पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली विसरी कविताओं, लोकगीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।

0: जोर से बोलो।
1: मैंने सुनिया
0: जय माता दी।
1: फिर से बोलो
0: जय माता दी।
1: आवाज नहीं आई।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य के सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डन और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
3: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
5: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ की हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल सातवीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in fire services and prison department. Age limit relaxed. 7 workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under-construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Today is Partition Horrors Remembrance Day. The nation is paying homage to all of those who sacrificed their lives and suffered unimaginable pain during the partition in 1947. We have a report.
1: To mark the Partition Horrors Remembrance Day, various programs are being organized across the country, including in the national capital. In a fitting tribute to all those who lost their lives due to the partition of the nation and were displaced from their roots, in 2021, the government had decided to observe 14th August every year as the day to commemorate their sacrifice. It also ensures that future generations remember the pain and suffering endured by the people as the birth of independent India was marked by the violent partition which left lasting scars on millions. The Partition Horrors Remembrance Day keep reminding people of the need to remove the poison of social divisions, disharmony and further strengthen the spirit of oneness, social harmony and human empowerment. The partition caused among the largest migrations in human history, affecting about 20 million people. While celebrating the independence, a grateful nation also salutes those people who had to sacrifice their lives in the frenzy of violence.

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों कभी कभी ना जीवन में हम कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन उस बड़े के चक्कर में ना हम कुछ बड़े लोगों का साथ ढूंढने लगते हैं और हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान मौजूद है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कारम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आप सभी का इस्तकबाल करते हैं पूरी खुली बाहों के साथ। वेलकम बैक है जी, चरणों में समर्पित होते हुए गुड मॉर्निंग करना चाहते हैं। आज का दिन बहुत ही खास। आप जुड़ चुके हैं फिर मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आज की सुबह आनंद आ गया ढेर सारी बातों के पिटारे के साथ, एंड साथ ही साथ मेरे पिटारे में, मेरी पोटली में है तमाम वो जानकारियां जो आपकी सुबह को बनाएंगी और भी औसम। एक तो मौसम इतना प्यारा है यार, आज की सुबह क्या झमाझम बारिश हुई है, मेरी आंख खुली मैंने देखा भाई हल्की हल्की ठंडी ठंडी छींटे पानी की मुंह पे पड़ रही है, मेरे को लगा कोई उठा रहा है, लेकिन बाद में पता चला ये बारिश थी जो थोड़ा सा मुझे परेशान कर रही थी आज की सुबह। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, आज का मौसम देख करके तो फुल मजा आ गया, वाइब एकदम सेट हो गई है बॉस, आज का मौसम बहुत औसम हो रहा है। फिलहाल घड़ी में वक्त हो रहा है 8:24, 14 अगस्त की सुबह, बहुत प्यारा दिन, बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग वाइब। शुक्राना शुक्राना शुक्राना आप सभी का, शुक्र है आज शुक्रवार है और शुक्राना करना तो बनता है आप लोगों का, क्योंकि आप मेरी जिंदगी में हो और आप लोगों की वजह से जो वाइब आती है ना यार, किक स्टार्ट करने की उसकी एनर्जी कुछ और होती है। एनीवेज चलो शुरुआत करेंगे आज के सफर की कुछ अच्छे गानों के साथ। आप जुड़ चुके हैं मुरादाबाद पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। हां जी, यहां पर अच्छे गाने हैं, मौसम बढ़िया है, गाने भी औसम वाले होने चाहिए। आज के सफर की शुरुआत इस बेहतरीन से गाने के साथ करेंगे हम। चलिए जी, मेरा तो आगाज हो चुका है आज की सुबह में, बातों का सिलसिला जारी रहेगा 10 बजे तक इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप भी जुड़िए ना मेरे साथ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं या फिर छोड़ के आ रहे हैं, जो जहां भी आप जा रहे हैं ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, सो गुड लक, ऑल द वे बेस्ट। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिएगा आनंद के साथ, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। ऐसा ही कुछ मौसम का हाल है आज की सुबह। क्या हाल चाल है जी? बरसात तो चली रही है यार, सावन भी चल रहा है। आज फ्राइडे है, भोले के भक्त पहुंच रहे हैं हरिद्वार कांवड़ लेने, तो ऐसे में भोलेनाथ क्यों ना प्रसन्न होंगे भाई। आज का वेदर क्या कहता है, थोड़ी सी देर में होगा वेदर चेक। आप सुन रहे हैं आनंद को, आई विल बी राइट बैक इस गाने के उस पार। वेरी गुड मॉर्निंग, फुल ऑन वाइब सेट है बॉस, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा लो। मैंने कहा जी, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 विद आरजे आनंद।

चलिए आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 8:37 का समय हो रहा है स्टेशन क्लॉक में। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आप सभी के चरणों में समर्पित होते हुए गुड मॉर्निंग जी। हाँ, मैं आपको क्या कह रहा था भैया, देखो आज का मौसम बहुत ऑसम हो रहा है। और अभी बात करते हैं वेदर चेक की, तो आज का वेदर क्या कहता है। देखो कूल कोल्डी कोल्डी मौसम है, एकदम वो झमाझम बारिश वाला वेदर आज रहने वाला है। बहुत हैवी रेन तो नहीं है, लेकिन लाइट रेन आपको मिलने वाला है। फिलहाल 29 डिग्री सेल्सियस करंट वेदर दिखा रहा है। एंड अगर बात करें हाईएस्ट एंड लोएस्ट की, तो हाईएस्ट में 32 पहुंचेगा, लोएस्ट में 26 तक रहेगा। एंड बात करें आज की सुबह सुबह ठंडी हवाओं की, तो ये हवाएं चलने वाली है 7 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से। ह्यूमिडिटी की बात करूं तो 89%, यानी कि गर्मी से हल्की फुल्की राहत आज आपको मिलने वाली है। मौसम बहुत औसम, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी नजर आ रही है। ये था आज का वेदर चेक, जहां मैंने आपको बताया आज का मौसम कैसा रहने वाला है। इस मौसम वाले मौसम में आपने अपना बिल्कुल ध्यान रखना है। अब छाता वाता लेके मत निकलो यार, क्योंकि अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है। अगर आप छाता लेके निकले तो शायद ऐसा ना हो कि बारिश वापस ही लौट जाए। बट यार ले लो यार, कुछ पता नहीं, कोई पता चल रहा है आप निकले बिना छाते के और आगे जाके झमाझम बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी यार। चलिए अभी आज के दिन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ खास रहा आज के दिन, आज का इतिहास क्यों स्पेशल रहा, इस पे एक नज़र डालेंगे फटाफट से। श्रोताओं, आज 14 अगस्त की सुबह है, बहुत सारी चीज़ें आज के दिन सेलिब्रेट की जाती हैं। आपको बता दें बहरीन को 110 वर्षों के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी 1971 में आज ही के दिन। एंड इसके अलावा आज ही के दिन जो है एक और खास चीज़ हुई थी, वो ये थी भैया 1938 में बीबीसी की पहली फीचर फिल्म स्टूडेंट ऑफ जो प्राग टेलीविजन पर प्रसारित हुई थी आज ही के दिन। एंड इसके अलावा आज ही के दिन एक और खास चीज़ हुई थी जो आज के इतिहास को और भी स्पेशल बना रही है, बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी आज ही के दिन सन 1862 में। श्रोताओं, एंड चीन ने जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी सन 1917 में आज ही के दिन। और एक और खास चीज जो आज के दिन को और खास बना देती है, और बात है कुछ ऐसे खास कलाकारों की जिनकी कंट्रीब्यूशन से ये दिन और ये इतिहास दोनों ही खूबसूरत हो जाते हैं। श्रोताओं, यस, आज के दिन ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत एक भारतीय क्रिकेटर का जन्म हुआ था, प्रवीण आमरी का जन्म हुआ 1968 में, जो भारतीय क्रिकेटर हैं आज ही के दिन। और इसके अलावा आज ही के दिन एक और नाम जिसने हम सभी को बहुत हंसाया है, उनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। एंड कुछ उनके हिंट्स मैं आपको दूंगा, जिससे गेस करके आप मुझे बताएंगे मैं कौन से बॉलीवुड की एक अमेजिंग एक्टर की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मतलब कमाल कर दिया। जिस फिल्म में वो आ गए ना, वहां हंसी आनी तो बनती है यार। बताऊंगा थोड़ी देर में जब लौट कर आऊंगा। तो आज विश्व युवक दिवस भी मनाया जाता है, इस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ऐसे और भी तमाम सारे डेज हैं जो आज सेलिब्रेट किए जाते हैं। पाकिस्तान का आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। 1947 में ब्रिटिश भारत से अलग होकर जो है आज ही के दिन इनका एक नया राष्ट्र बना था, तो आज के दिन जो पाकिस्तान है वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है 14 अगस्त को। चलिए ये तो थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपके साथ साझा कर दी। इमीडिएटली इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे अभी लौट कर आएंगे, तो बात करेंगे आज की और कुछ खास चीज़ों पर जो मुरादाबाद में हो रही हैं, उस पर हम बात करेंगे, है ना। तो आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़िए हमारे साथ 9837896896 पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारे संदेश मेरे पास पहुंचे हैं। जुल्फी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं। गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूं। और एक और मेरे पास मैसेज पहुंचा है, नमस्ते जी, माय नेम इज तमन्ना, हाय गुड मॉर्निंग तमन्ना। इन्होंने बस तमन्ना लिख के भेजा है और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको भी। एक और मेरे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, सुबह सुबह आपके प्रोग्राम सुन के बहुत ही मजा आता है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। एंड एक और प्यारा सा संदेश तारिक भाई का मुझे मिल रहा है, ये लिखते हैं सुबह सुबह आपके गाने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। और आप लोग ऐसे ही अपने प्यारे संदेश पहुंचाते रहिए। एक बंदे का मैसेज बड़ा प्यारा है, इन्होंने लिखा है कल करे सो आज, आज करे सो अब। जिंदगी में कुछ भी अगर आपको करना है तो कल का इंतजार मत कीजिए, आपको जो भी करना है आज ही करना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत का आनंद उठाते हैं और लौट कर आएंगे, तो आपको थोड़ी सी देर में और कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूं। तो बस आप ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे आनंद के साथ और सुनते रहेंगे एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहेंगे
गुनगुनाते रहेंगे। एक प्यारा सा ट्राई। मौसम इतना औसम है तो ये गाना तो डेफिनेटली बनता है आज की सुबह। एक बहुत ही प्यारी बॉलीवुड की सिंगर है जो बहुत ही कमाल की प्लेबैक सिंगर है, जिनका आज बर्थडे सेलिब्रेट होता है। कुछ गाने उनके प्ले करूंगा और आपसे पूछूंगा वो कौन है। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं, उनके बारे में अभी बात करेंगे। आप ऐसे ही स्टे ट्यून्ड रहिए। वक्त हो गया 8:43।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कांवड़ लेकर महादेव का नाम।
4: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
3: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
4: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
3: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।
6: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: Sonjal. कमाल खान साहब ने गाया इस गाने को, लेकिन उससे पहले गाना आया था उदित साहब के पास, बट अनफॉर्चुनेटली ये गाना उदित साहब ने नहीं गाया, ये कमाल साहब ने गाया। अगर ये कमाल खान साहब ने गाया तो इतना सुपर हिट हो गया, एंड शायद अगर उदित साहब गाते तो और भी सुपर हिट हो सकता था। लेकिन अभी भी गाना बहुत ही जबरदस्त है, जतिन पंडित का इतना प्यारा म्यूजिक है, जतिन ललित साहब इतने प्यारे गाते हैं यार, इतना प्यारा इनका म्यूजिक होता है, मतलब मजा आ जाता है इनका म्यूजिक ही सुन के ना, मतलब वाइब सेट हो जाती है। समीर साहब ने लिखा था, जतिन ललित साहब का म्यूजिक था, एंड सलमान खान एंड काजोल के ऊपर पिक्चराइज गाना, बहुत ही अच्छा ट्रैक, कमाल खान साहब की आवाज, और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आनंद की है, और बहुत प्यारा गाना भी आपने सुन लिया। आगे बढ़ते हैं, आप सभी को कहते हैं एक बार यहाँ पर गुड मॉर्निंग एंड जोरदार तालियां। हाँ जी, कभी कभी फ्लो फ्लो में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, 8:56 होने में ये स्टेशन ब्लॉक में। अच्छा, क्या कहा आनंद जी, समझ में नहीं आया आपने कैसे टाइम बताया। अरे भैया 8:56 हो रहे हैं हमारी घड़ी में, ठीक है जी, आप अपनी घड़ी सेट कर लो। सुबह बहुत सारी मौज मस्ती के साथ करते हैं हम सुबह की शुरुआत। वैसे आज की सुबह बिग शाउट आउट उन सभी के नाम जो सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, एक सेल्फी भेज दो, चलो एक फोटो खींच के भेजो, अपनी छत पे हो, घर पे हो, ऊपर हो, जहाँ भी आप हो, एक अच्छा सा फोटो मेरे को भेजो। आपके आसपास कितनी ग्रीनरी है जरा आप मुझे दिखाओ, मेरे को फोटो भेजो। अगर आप गाड़ी में है तो एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भी आप मुझे भेज सकते हो, 30-40 सेकंड तक का। एंड इस इंडिपेंडेंस डे क्या स्पेशल हो रहा है आप मुझे जरूर बताइए। कल मैंने आपसे पूछा भी था कि आपको इस आज़ादी के जश्न पर, इस आज़ादी के महोत्सव पर किस चीज़ से आज़ादी चाहिए, या आप मुझे बता सकते हैं इस इंडिपेंडेंस डे आप कौन सी चीज़ से आज़ादी चाहते हो, या आप मुझे बता सकते हो आज की सुबह। वंस अगेन देखो, हम तो आज़ाद हो ही गए हैं, लेकिन इस इंडिपेंडेंस डे हम चाह रहे हैं कि आप हमें वो चीज़ बताएं जो जेन्युइनली आपको लगता है कि यार इस चीज़ से हमें ना आज़ादी मिलनी चाहिए, हम भारतवासियों को इस चीज़ से आज़ादी मिलनी चाहिए, हम इंडियंस को इस चीज़ से आज़ादी चाहिए। सो प्लीज़ टेल अस क्या वो चीज़ है जिसको आपको लगता है कि यार ये चीज़ से ना हमें डेफिनेटली आज़ादी मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है प्लास्टिक से हमें आज़ादी मिलनी चाहिए यार। आप अपने मैसेज जरूर पहुंचाइएगा। एक मैसेज आया है मेरे पास, गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हालचाल है। हाय, माय नेम इज वरुण। गुड मॉर्निंग वरुण लिखते हैं, आनंद जी जिंदगी में ना इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है, बशर्ते कि बस वो ईमानदार हो, खुद के साथ एकदम लॉयल हो, और वो जो चाहता है वो सब कुछ पा सकता है, बट उसके लिए उसको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा। क्या बात है यार, एब्सोल्युटली बहुत अच्छी बात बोली है। और ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये हर किसी के बस की बात ना है भाई, मेंटेन रख पाना है ना। बट अगर आज की सुबह आपने कुछ ठानी लिया है बढ़िया करने का, तो बस हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ऑल द वे बेस्ट। आप जो भी चाहते हैं वो जरूर आपको मिलेगा, बस उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ऑल द वे बस भैया, हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल कर सकते हैं और ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। देखिए, एक ज़िंदगी मिलेगी, और इसमें मैं तो ये भी कहता हूँ कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसीलिए जो भी कुछ करना है ना इसी लाइफ में करना है। जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आप सपने देखते हैं, सोचते हैं, उन्हें सोचते मत रहिए, उन्हें देखिए बिल्कुल, लेकिन उनके साथ ही साथ थोड़ी सी मेहनत करने का भी प्रयास कीजिए। जब आप सही डायरेक्शन में प्रयत्न करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपको सफलता ज़रूर मिलती है, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपनी मंजिल पर पहुंचने की मेहनत हो, अगर आप खुद से फिट होना चाहते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है कि मुझे ठीक होना है, अगर आपके अंदर जज्बा है कि मुझे इस चीज़ से आज़ादी चाहिए, इस चीज़ से मुझे खुद को निकालना है, मुक्त करना है, कोई गलत आदत हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आपको लगता है कि मैं नहीं गिव अप कर पा रहा हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो आप ज़रूर छोड़ सकते हैं। बस थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस लेकर आइए, एक सही कॉन्फिडेंस लेकर आइए, आप सब कुछ तो कर सकते हैं यार, इंसान क्या नहीं कर सकता। बादलों से ऊंची उड़ान है आपकी, एग्जैक्टली
1: कहानी मंजूर,
0: आते जाते आने वाला गाना,
1: बादलों से ऊंची उड़ान,
0: मजे से
1: सबसे अलग पहचान,
0: ओए होए
1: उसे है प्यार की कहानी।
0: 9 बजने को है,
1: आते जाते सासु की रवानी मंजूर,
0: इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जो बोलने वाले हैं ना ये बॉस, मैं इस सर के

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: कहा मेरी कसम?
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
5: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
3: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: गाइस तीसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, बज चुके हैं स्टेशन की घड़ी में 9 बज के इनफैक्ट 5 मिनट हो गए हैं यार। हेलो हाय, कैसे हाल चाल है? यू आर लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6 में RJ आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में और इस घंटे हम आपको कुछ स्पेशल बताने वाले हैं, स्पेशल कुछ जिताने वाले हैं। इंडिपेंडेंस डे है यार, तो क्या आप चाहते हैं संडे मेरे साथ मूवी पर जाना? एक खास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास आज की सुबह, कैसे बताऊंगा ना अभी आपको। हाँ जी देखो यार, पीली कोठी तो बड़ी अच्छी तरीके से जो है सज चुका है। अगर आप रात में वहां से निकलेंगे ना एकता चौकी तरफ से, तो क्या लाइटिंग जबरदस्त वाली हुई है वहां के आसपास के बिल्डिंग्स इतने प्यारे सज चुके हैं, इतने प्यारे प्यारे तरीके से जो है ना लाइटिंग हो गई है। मतलब पूरा इंडिपेंडेंस डे वाला माहौल जो है, कल रात को तो मैं गया ही था एक्सप्लोर करने के लिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली देख सकते हो जाकर के। रेलवे स्टेशन मुरादाबाद के इतना प्यारा लग रहा है ना देखने में, ओ माय गॉड सच अ ब्यूटीफुल यार। एंड अगर मैं बात करूँ टाउन हॉल की तरफ, तो वहां पर भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, लाइटिंग बहुत प्यारी हुई है। मतलब और आज तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा शहर के अंदर, जो इंडिपेंडेंस डे की वाइब है ना वो फुल ऑन सेट हो रही है यार। ये हमारे देश का पर्व है, हम सभी का पर्व है ना, और इस पर्व को हम एक साथ मिलकर मनाते हैं। एक जज्बे का पर्व, एक जुनून का पर्व, एकता का पर्व, हमारे राष्ट्रीय का पर्व, हमारे भारत का पर्व। इस इंडिपेंडेंस डे पर कुछ तो हम भी करने वाले हैं, लेकिन यार मुझे तो स्कूल वाला टाइम याद आ रहा है। वो ऐसे स्कूल में जाते थे सुबह सुबह, बूंदी बूंदी के लड्डू मिलते थे, मतलब लाइन में लग के ओ हो इतने घंटों वेट करना पड़ता।

0: भाई साहब ये जरा सी दिन में अब तक पहुंचेगा गाना, बहुत ही कमाल की सिंगर ने इस गाने को गाया है। जरा सी दिन में इस गाने से हम डेफिनेटली अच्छी शुरुआत करेंगे, लेकिन एक और गाना जो आज के मौसम को ऑसम बना रहा है,
1: अब कर दे हाय हाय मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह।
0: जरा सी देर में सारे गाने सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं मुझे तो डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पर। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आज की सुबह, कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि यार ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आनंद तक पहुंचनी चाहिए, तो उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम और एक बढ़िया सा वो मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हैं मुझ तक कर दीजिए यार, फटाफट व्हाट्सएप कीजिए। और मैंने कहा था एक फोटो मुझे खींच के भेजिए, बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, इतने सारे फोटोज आ गए यार, थैंक यू सो मच मुरादाबाद। एंड आप अगर गाड़ी में हैं तो छोटा सा वीडियो जरा शेयर करो, आपका वीडियो हम शेयर करेंगे अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी पर, तो प्लीज जल्दी से एक छोटा सा वीडियो मुझे फॉरवर्ड करो 9837896896 पर। चलो जी आगे बढ़ते हैं इस गाने के साथ, आतिफ असलम एंड श्रेया घोषाल की प्यारी आवाज ड्रॉप कर रहा हूँ, एक अच्छा गाना, लौट कर आता हूँ थोड़ी देर में। आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए आनंद को, गुड मॉर्निंग।

J'ai Anandiz.

0: क्या बात है, इतना सोना क्यों रब ने बनाया यार। मैं पूछ के आऊंगा, उसके बाद में जरूर बताऊंगा कि इतना सोना रब ने आखिर बनाए तो बनाया क्यों। और यार सब कोई सोना बनाया है, मुझे थोड़ी स्पेशल बनाया है। हाय वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। 9:17 हो गए स्टेशन क्लॉक में यार, और ये जो टाइम है ना इतनी तेजी से आगे भागता है बॉस, मतलब यकीन मानो ऐसा लगता है जैसे भाई ये मेरे साथ ना इंसाफी कर रहा है यार। वक्त से कोई तो रुका लो यार।
1: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
2: नालायक बेटा।
0: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
7: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
8: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
7: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
9: पुलिस कर रही है लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
10: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
0: यार मुंबई सरकार ने, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा अजीब गरीब डिसीजन ले लिया है यार वहां पर। और कभी कभी ना कुछ डिसीजन हमें बड़े संकट में डाल देते हैं। हां जी, कैसे हालचाल है, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है एफएम मुरादाबाद। भैया वहां पर वहां की गवर्नमेंट ने कहा है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो टैक्सी और जो लोग कैब वगैरह चलाते हैं उन ड्राइवर्स को उन्होंने खास चेतावनी दी है कि भैया मराठी भाषा कामकाजी ज्ञान अनिवार्य जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मराठी लैंग्वेज जो है वो कामकाजी को बढ़ाने के लिए, आपके ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। और नए नियमों के तहत जो वहां के ड्राइवर हैं, जो वहां पे ड्राइवर हैं जो ऑटो चलाते हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो वहां पे कैब वगैरह चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, उनके लिए जो है ये रूल सख्त कर दिया है कि जब भी वहां पर आप सड़क पे लेके अपनी गड्डी उतरें तो आपको मराठी आनी चाहिए, ताकि जो वहां की यात्री हैं उनसे आप अच्छे से बातचीत की बुनियाद रख सकें। और मराठी आना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गया, और जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे उन्हें 1 महीने का समय दिया जाएगा। अगर वो नहीं सीख पाए तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जा सकता है। मतलब यार ये तो बड़ा मतलब संकट वाला सीन हो गया यार, अब हर कोई तो मराठी नहीं बोल पाएगा यार। मतलब तुम्हें कशिकाई मुंबई वो तो मुझे आ गया, मैंने सीख लिया था थोड़ा सा टीवी सीरियल देख के, बाकी यार बड़ा टिपिकल है। हाँ अगर आपको कोई मुरादाबाद की लैंग्वेज बोलने के लिए बोले तो चलो भाई समझ में आता है कि कहाँ जा रही है क्या खा रही है, तो हर कोई बोल लेता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं यार, मतलब मुरादाबाद की भाषा भी बहुत अलग है यार, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इधर आसपास की जो लैंग्वेज है ना, इधर कांट सेवारा धामपुर, इधर की लैंग्वेज तो भाई मतलब अलग ही लेवल की है, एक अलग ही भाषा है बॉस। 9:20 हो रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं हम आपके साथ, और अभी फिलहाल कुछ अपडेट आपको देने वाले हैं। इस इंडिपेंडेंस डे हम कुछ और खास चीजें भी करने वाले हैं। एंड हरिद्वार में पहुंचे हैं 5 करोड़ कांवड़िए और छोड़ गए हैं 7,000 टन कचरा। ओ माई गॉड, अनएक्सपेक्टेड है बॉस ये। आपको पता है ना अभी कांवड़ मेला चल रहा है, ऐसे में जो है वहां पर पर्यटक दूर दूर से आ रहे हैं, 7,000 टन कचरा जो है वहां से रिसीव किया गया, इतना कचरा वहां पर हो गया है भाई साहब। आसपास के जो घाट हैं वहां पर बहुत सारा कचरा मिला है यार। भैया अगर आप हरिद्वार जाने का प्लान कर रहे हैं, आप ब्रज घाट जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो प्लीज यार कचरे को इधर उधर मत फेंकिए यार, दिक्कत हो सकती है ना, समझ रहे हो ना बाबा। एक मैसेज मेरे पास आया है सोनालिका का, लिखती है, आनंद जी सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो सोने ना दे। कितने दिन से नहीं सोने दिया आपको सपनों ने। बताइएगा जरूर मैडम। चलिए फिलहाल अभी एक काम की बात करते हैं आपके साथ में, छोटा सा ना यहाँ पर हम एक गेम खेलने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, मतलब एक बहुत ही प्यारी प्लेबैक सिंगर का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं एंड उनके कुछ गाने प्ले करूंगा, बस उनका नाम आपको मुझे बताना है। लेकिन उससे पहले आने वाला गाना आज की सुबह जो आपकी सुबह को और अच्छा बनाएगा भाई साहब, आए हाय एक कड़क चाय साथ में गाना,
2: फिर मोहब्बत करने चला है तू।
0: जरा सी दिन में इसको सुनने वाले हो आप मेरे साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, एंड अभी फटाफट से आप मुझे मैसेज करके जरूर बताना भाई ये जो गाने चल रहे हैं कौन से सिंगर की आवाज में है। व्हाट्सएप करना आज होता है इनका हैप्पी वाला बर्थडे,

everybody. व्हाट्सएप करके मुझे आपने बताना है अभी जो आप गाने सुन रहे हैं वो कौन सी प्ले बैक सिंगर की आवाज है. एंड शी इज अ वेरी वेरी अल्टीमेट ब्यूटीफुल अमेजिंग आवाज. बॉलीवुड की एक ऐसी आवाज जिसको हम रेडियो पे सुनते सुनते बड़े हो गए हैं. क्या नॉस्टैल्जिया वॉइस है यार इस बंदी की. बहुत प्यारा गाती है. एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ कुछ गाने इनके. प्लीज मुझे बताओ ये जो गाने चल रहे हैं कौन से सिंगर की आवाज है ये. व्हाट्सएप कर देना अगर आपको समझ में आ जाए तो.

चलो भैया मैसेज कर देना आप मुझे, अगर आपको समझ में आ जाए तो भी मैं लौट कर आता हूँ। कुछ खास बातें आपको बताने वाला हूँ एक्सक्लूसिवली इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बस आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ एंड सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और भैया अभी एक करंट अपडेट आई है सचित ऐप के माध्यम से, प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 3 घंटों में जो है भाई साहब आसपास के जिलों में जो है मतलब बारिश होने की संभावना है और तेज बिजली गरजने की भी जो है भाई साहब चेतावनी जताई जा रही है। प्रोटेक्शन हुई है भैया, तेज भारी बारिश हो सकती है, रेड अलर्ट की सूचना भी प्राप्त हुई है सचित ऐप के माध्यम से। एंड आपको बता दें कहां कहां पर जो है अगले 3 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। अमरोहा, बदायूं, बरेली एंड एटा, फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कासगंज, मेनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर, संभल एंड शाहजहांपुर, इन एरियाज में अगले 3 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि भारी बारिश होने की संभावना है। प्लीज वेरी वेरी केयरफुल, अगर आप कहीं निकल रहे हैं तो बड़ी सावधानी के साथ निकलिए। आसपास में वाटर लॉगिंग हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इस समय अगर आप गाड़ियों में हैं तो जरा संभाल के निकालिए इस एरिया से जहां हैवी वाटर लॉगिंग है प्लीज। ठीक है जी, उनका भी ध्यान रखिए जो बेचारे साइकिल से जा रहे हैं, जो पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं या फिर जो अपनी छोटी मोटी वाहन से जा रहे हैं, प्लीज उनका भी जरा ख्याल रखिए आप, है ना। और ये जो रेड अलर्ट जारी किया गया अगले 3 घंटों में इन इलाकों में, प्लीज उन लोगों से रिक्वेस्ट है जरा सावधानी के साथ आप घर से बाहर निकल रहे हैं ना। और अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये कड़क अपडेट मैंने आपको दे दी इस स्टेशन पर। एक अच्छा सा गाना सुनते हैं एंड अभी लौट कर आते हैं थोड़ी देर में, फिर उसके बाद कुछ और कड़क अपडेट मैं आपको दूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। ऐसी तमाम जानकारियां जो बैक टू बैक आपको मिलती है हमारे साथ इसी चैनल पर, क्योंकि ये है आपके शहर का अपना रेडियो जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। चलो जी, एक बढ़िया गाना आपका वेट कर रहा है, इस गाने के बाद मैं फटाफट लौट कर आता हूं। उसके बाद आपको फटाफट एक और खास चीज बताने वाला हूं जिसको सुनकर ना आपको मजा आ जाएगा। बस ये जो कमाल की चीज है ना, बहुत प्यारी है, शायद इसके बारे में आपको ना पता हो। अभी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है बॉस, ये आपको पता लगेगा। और हाँ, आज फ्राइडे है, इसके बारे में बात करेंगे। आज एक बहुत ही बढ़िया फिल्म रिलीज हो रही है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इसी स्टेशन पर। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बस आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए। अभी तो शुरुआत हुई है यार, अभी तो बहुत कुछ है जो मुझे आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं और ये गाना सुनते हैं, बहुत प्यारा ट्रैक है सच में। आई रियली लव दिस सॉन्ग, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम इस गाने को सुनेंगे हम। और बातों बातों में मुझे बड़ी सारी बातें याद आ रही है, मैगी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, उस पर बात करने वाला हूँ। क्या हो गया है ऐसा मैगी के साथ जिसके ऊपर इंस्टाग्राम पे ना लड़ाइयां चल रही हैं, भसड़ मची पड़ी है इंस्टाग्राम पर, बताता हूँ। अभी लौट कर आता हूँ इस गाने के उस पार। राइट है करण औजला, आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है बिंदास मॉर्निंग एलपी।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
5: हां जी, बिंदास मॉर्निंग आप सुन रहे हैं आनंद के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और देखो भाई, मैं ऐसी कड़क अपडेट आपको ढेर सारी पहुंचा रहा हूं और आपके मैसेज लगातार मेरे पास पहुंच रहे हैं। चलिए फटाफट आपके मैसेज को शामिल करेंगे, अभी लौट कर आता हूं, उसके बाद जल्दी से आपके जो भी मैसेज आए हैं वो सारे के सारे मैं यहां पर शामिल करने वाला हूं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। फिलहाल ये आने वाला गाना, इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, करीना कपूर खान के ऊपर पिक्चराइजेशन ये ट्रैक, इसको सुन रहे हैं आप आनंद के साथ। अभी आता हूं, उसके बाद आपने जो मैसेज किए हैं फटाफट शामिल करेंगे, कितने लोगों ने सही जवाब दिया ये भी हम पता करने वाले हैं अभी के अभी। तो आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए हमारे साथ।

छोटे बच्चों के साथ जो है ना रंग बिरंगे छाते भी नजर आए थे मुझे मॉर्निंग में जब मैं स्टूडियो आ रहा था, तो बड़े सारे छातों के साथ जो है बच्चे स्कूल जा रहे थे, कलरफुल छाते थे, पेरेंट्स साथ में थे और स्कूल बच्चे निकल रहे थे। देखिए यार, बच्चे ना मतलब वो होते हैं जो मन के बड़े सच्चे होते हैं, और जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है यार, हम क्यों ना निकले भाई अपने ऑफिस के लिए, अपने काम पर। आप जहां भी जा रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। आप सुन रहे हैं आनंद को, वेलकम बैक है। 9:41 हो गए स्टेशन क्लॉक में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी आपके लिए कुछ काम की बात फटाफट से बता देते हैं आपको। यस ऑफ कोर्स, ये काम की बातें जानना बहुत जरूरी है। देखो यार, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमारे दिन को और हमारे पूरी मॉर्निंग को बहुत ही स्पेशल बना देते हैं, राइट। और वैसे ही मैं अभी आपको एक अपडेट दे देता हूँ फटाफट से, इंडिपेंडेंस डे वाली। और वो इंडिपेंडेंस डे की अपडेट ये है भैया, इस 15 अगस्त को जो है आप भी तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर को अपलोड कीजिए, हर घर तिरंगा हैशटैग के साथ या harghartiranga.com पर जाके आप जरूर अपलोड करें अपनी सेल्फी में। हर दिन आपको बोल रहा हूं, बिकॉज आपको यार प्राउड फील होना चाहिए। देखिए, हम एक ऐसा पर्व मना रहे हैं जहां पर सब लोग एकत्रित होते हैं और एक साथ अपने इस देश के पर्व को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ये देश का जो पर्व है बहुत ही स्पेशल है। इस पर्व को अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसके जश्न को क्यों ना पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए, है ना। तो अगर आप पूरी दुनिया तक उसको पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको harghartiranga.com पे जाके अपनी सेल्फी को अपलोड करना होगा। एग्जैक्टली, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है फ्राइडे और आज के दिन फिल्में, दो बड़ी फिल्मों की बात हो रही है, आज मूवी रिलीज हो रही है, तो ऐसे में जो है बहुत सारी बातें चल रही हैं। और आपको बता दें, इमरान हाशमी की 2008 में फिल्म आई थी आवारापन, एंड आज भले ही एक क्लासी फिल्म बहुत ही मानी जाती, कल क्लासी मूवी मानी जाती, लेकिन रिलीज के समय जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी असफल जो है बताया जा रहा है कि साबित हुई थी ये फिल्म। एंड उस दौरान इस फिल्म ने अपने पूरे लाइफ टाइम में महज 7.7 करोड़ की कमाई की थी। कि समय के साथ केबल टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, एंड ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई। सालों के बाद इसी लोकप्रिय का जो है सीधा फायदा उठाते हुए अब इसका सीक्वल एक और मिल रहा है, एंड इस वीकेंड यानी कि फ्राइडे को बताया जा रहा है कि भैया आवारापन 2 जो है वो आने वाली है, जिसकी एडवांस में बुकिंग हो रही है। दिस इज द फ्राइडे टुडे, आज भी बहुत अच्छी फिल्म रिलीज हो रही है। कौन सी फिल्म की बात मैं कर रहा हूं जो आज रिलीज होने वाली, दो कमाल की फिल्में जो है कॉम्पिटिशन देंगी आपस में जो आज रिलीज हो रही है, उसके बारे में मैं डेफिनेटली अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक कड़क अपडेट यह है, रील देखते देखते अगर आपने लिंक पे क्लिक किया तो आपके खाते से पैसे उड़ सकते हैं। एग्जैक्टली, अब ये क्या फंड है जरा इस पे जरा ध्यान लगाना और इसको ध्यान से सुनना। देखिए, कभी क्या होता है ना कि कभी कुछ कुछ हम ऐसे इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे लिंक आ जाते हैं जब हम रील स्क्रॉल करते हैं, कि ये चीज़ करने से अगर आप चाहते हैं इसको, ये आपके पास ऑफर आए या ये डील आए या फिर ये चीज़ आपको मिले, तो इस लिंक पे फटाफट क्लिक करो। बायो में एक लिंक होता है जिसे हम उस पर टैप करते हैं, हम तुरंत व्हाट्सएप पे पहुंच जाते हैं, करेक्ट। और जैसे व्हाट्सएप पे पहुंचते हैं वहां पर भी बहुत सारे लिंक्स होते हैं, हम उन पर खड़खड़ क्लिक कर देते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ के जो है तोते उड़ गए हैं। तो भैया, आपको अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चीज का सामना ना करना पड़े, इस चीज का आपको बिल्कुल भी सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए प्लीज वेरी वेरी केयरफुल। इंस्टाग्राम चला रहे हैं आप तो सोच समझ के जरा इंस्टाग्राम का यूज करें। रील्स अगर आपके आसपास आपको दिख रही है तो अच्छी बात है, रील चलाने इट्स नॉट अ बैड हैबिट, बट बहुत ज्यादा चला रहे तो बैड हैबिट है ही यार। लेकिन अगर आपको कोई लिंक वहां पर मिल रहा है तो प्लीज उस लिंक पे बिना सोचे समझे मत कीजिए भाई क्लिक, नहीं तो दिक्कत हो सकती। मेरा काम है आपको बताना। आम तौर पर दो सिलेंडर हर बंदा अपने घर में रखता है, लेकिन दो गैस सिलेंडर रखना भारी पड़ सकता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो चलो मैं अभी लौट कर आऊंगा तो फिर बताऊंगा ऐसे मैंने आखिर क्यों कहा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैंने आज आपसे पूछा था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने कहा था आप मुझे बताओ ये जो गाने चल रहे हैं, ये मोहतरमा की आवाज़, ये जो प्यारी सी सिंगर हैं, कौन सी सिंगर हैं, इनका नाम आपने मेरे को बताना था।

अगर आप समझ गए कौन सी प्यारी सिंगर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे अपने नाम के साथ सही जवाब। एवरीबॉडी चलो जी, अभी भाई साहब आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। 9:46 हो गए स्टेशन क्लॉक में, कुछ एड ब्रेक का टाइम हो रहा है। इन एड ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं इस स्टेशन पे। आप मेरे साथ यूनिट रहिए क्योंकि यह है एफएम मुरादाबाद, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। मैं अभी फटाफट लौट कर आता हूं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कुछ एड ब्रेक के बाद।

0: करो।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन। कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: हां मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय
4: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
5: भैया देखो 7 से 10 हम आते हैं और ढेर सारी बातें आपके साथ करते हैं इस स्टेशन पर, जहां हम होते हैं, आप होते हैं और होती है ढेर सारी वाइब। ठीक है, फिलहाल अगर आप हमारे साथ मूवी देखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। कुछ ना कुछ स्पेशल तुम्हें करने वाला है। हाय गाइस, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर आरजे आनंद को, और यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, यानी कि आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। आप जहां भी जा रहे हैं, आप दिल्ली रोड हैं, कांट रोड हैं या आप स्टेशन रोड हैं, आज फ्राइडे है, रूट डायवर्जन होगा बॉस। आपको पता है ना कल सैटरडे है बॉस, सावन चल रहा है, तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार हमारी काम करती रहती है ताकि कोई दिक्कत किसी को भी ना हो। ऐसे में रूट डायवर्जन होने वाला है, इसके बारे में, डायवर्जन के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। मैगी के बारे में एक भसड़ मची हुई है, उसके बारे में बात करता हूँ। जो मैगी लवर्स है ना, उनके लिए बहुत अच्छी खबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है यार। फिलहाल ये गाना, आज इनका बर्थडे होता है जिनकी आवाज में ये गाना सुन रहे हैं, पिक्चराइजेशन ईशा देवल पर। चलो इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। ये फ्राइडे मॉर्निंग है, हैप्पी वीकेंड, वक्त हुआ है 9:48। गुड मॉर्निंग।

हाय हाय धूम मचा ले धूम मचा ले धूम आहा धूम मचा ले धूम मचा ले धूम एवरीबॉडी हाय धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। भाई साहब यही आपको बताना था कि जो अभी ये आवाज़ आप सुन रहे थे कौन सी सिंगर की आवाज़ थी, मतलब आई मीन टू से कि ये जो गाना है वो कौन सी सिंगर ने गाया। और यार मैं आपको सच बताऊं, मतलब ये गाना सुन के ना मतलब मैं जू करके फ्लैशबैक में वो चला गया, बिकॉज वो मेले में ना छोटे वाले फ़ोन आते थे पिंक बेबी वाले, उनमें बटन दबाते थे तो यही गाना सुनाई देता था, धूम मचाले। वो थोड़ा फास्ट होता था बट बड़ा मज़ा आता था यार सुनने में, सच में यार एकदम बेबी वाला फ़ोन याद आ गया मुझे आज की सुबह। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखो मुरादाबाद में जो है अभी 18 अगस्त तक जो है राशन वितरण हो रहा है, तो जिन लोगों को राशन वगैरह में जिनका नाम है जिनको मिलता है वो डेफिनेटली ले सकते हैं। अभी 5 अगस्त से इसकी शुरुआत हो गई थी एंड ये 18 अगस्त तक चलने वाला है। चलिए भैया आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये कहना चाहते हैं धूम मचा ले धूम, और धूम आप भी मचाते रहिए। ढेर सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, थैंक यू वेरी मच। और बंटवारा आज रिलीज़ हो रही है, येस ऑफ कोर्स मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कौन कौन सी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं बंटवारा 1947 आज रिलीज़ हो रही है, इसके अलावा आवारा पन 2 इसका सीक्वल आ रहा है। तो आप कौन सी मूवी देख रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों मूवी एक दूसरे को कॉम्पिटिशन दे रही है। एंड जो बंटवारा 1947 है प्रीति ज़िंटा एंड स्टारिंग बाय सनी देओल, बहुत ही अच्छी जो है जा रही है, इसकी टीजर ट्रेलर बहुत अच्छी थी एंड आज ये सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। एंड दूसरी आवारापन 2, आवारापन का सेकंड

एक सवाल भी पूछा था जिसको लेकर ढेर सारी मैं बातचीत कर रहा था आपसे, और सच बता रहा हूँ मुझे बहुत सारे मैसेज जो है मिल गए हैं आपके, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, तनाव कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए थिएटर जा रहे हैं आज की जेंजी। यस, मतलब अभी बताया जा रहा है कि भैया लोगों की टेंशन चिंताएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं एंड इससे काफ़ी लोग परेशान हैं, इरीटेट हैं, इसीलिए वो जो है थिएटर जाते हैं और अपने टेंशन को दूर करते हैं। भाई ये अलग ही थेरेपी लग रही है मेरे को तो। एंड 15 से लेकर 23 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो ज्यादातर अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, रिलीज करने के लिए, खत्म करने के लिए अपने टेंशन को थिएटर का सहारा ले रहे हैं। कैन यू इमेजिन यार, क्या चल रहा है भाई। चलो जी, फिलहाल ये सुनते हैं और मैं अभी आपके लिए जोरदार ताली बजाने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूंगा, खिसकूंगा, बिकॉज मेरा जाने का समय हो रहा है। 10 बजे आपके लिए एक स्पेशल जो है आने वाला है, एपिसोड, एक स्पेशल प्रोग्राम आने वाला है। 9:56 हो गए, 14 अगस्त की सुबह आनंद के सुन रहे थे आप। कल इंडिपेंडेंस डे पे आपको मिलूंगा ढेर सारी बातों के साथ, लेकिन अभी ट्रैफिक के बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी ना, तो इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, तीसरे सोमवार के लिए जो है डायवर्जन आज से लागू रहेगा। एग्जैक्टली आपको बता दें, शाहजहांपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले ट्रक, ट्रैक्टर और जो भारी वाहन हैं, तो भाई साहब वो उनकी एंट्री पूरी तरीके से आज जो है ब्रेक पर रहेगी। मतलब अगर आप दिल्ली रोड और कांट रोड की मैं बात कर रहा हूँ भैया, इधर जो है भारी वाहनों की एंट्री नहीं है, तो ऐसे में जो है आपने सोच समझ के अपनी गाड़ी को निकालना है बॉस, कहीं ऐसा ना हो फिर आप फंस जाओ, है ना। देखो आपको बताएं, सावन माह का तीसरा सोमवार आने को है, जिसे मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को कुशल संपन्न कराने के लिए जो है सारी जितनी भी चीज़ें वो शुरू कर दी हैं। ट्रैफिक पुलिस शुक्रवार को जो है आज 8 बजे से हाईवे पर भारी वाहनों का संचालन बिल्कुल बंद कर देगी, और यह वाहन चंदौसी, संभल और इसके अलावा बुलंदशहर के रास्ते से गंगा एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेंगे, ये वहां से जाएंगे। और आपको बता दें ये डायवर्जन जो है, ये जो प्लान है पूरा का पूरा, ये सोमवार की दोपहर तक लागू रहेगा। कांट रोड से जो भारी वाहन है वो भी जो है आज फ्राइडे से डायवर्जन किए जाएंगे। तो भैया तीसरा सोमवार 17 अगस्त को पड़ रहा है एंड इसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। शुक्रवार को यानी कि आज दोपहर 2 बजे से सारे रूल्स लागू हो जाएंगे और इसी दौरान हाईवे पर बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से उस पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कि वो नहीं निकलने वाले हैं। दिल्ली मेरठ की ओर जाने वाले जितने भी भारी वाहन हैं वो बिलारी, चंदौसी, संभल, इन बुलंदशहर होते हुए निकलेंगे भाई साहब, उसी रास्ते से जाएंगे, उसी रास्ते से वापस अभी वो आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो ये डायवर्जन है वो प्लान में आपके साथ शेयर कर रहा था। बाकी जो है ये 17 अगस्त मंडे को शाम 6 बजे तक लागू रहेगा एंड बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चेक कीजिए, वहां पर SP ट्रैफिक सुभाष गंगवार जी ने लेटेस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप जानना चाहते हैं उन्होंने क्या क्या बताया था, तो उसके लिए आपको चेकआउट करना है हमारा ऑफिशियल इंस्टा हैंडल, वहां पर आपको दिख जाएगा सारा कड़क लेटेस्ट अपडेट ट्रैफिक से रिलेटेड। ये ट्रैफिक डायवर्जन जो हुआ है अभी, आज दोपहर से होने वाला है, इसकी अपडेट मैं आपको दे रहा था। अगर आप अपने भारी वाहन लेकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया अवॉइड करें।

0: गाइज 10 बजे स्पेशल शो आएगा, तो इसलिए मुझे अभी यहाँ अपनी बातों को विराम देना होगा और आपसे लेनी होगी इजाजत। कल टुमारो मिलेंगे इंडिपेंडेंस डे पर। आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। आज मैंने आपसे पूछा था, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने गाने सुने थे वो कौन सी सिंगर की आवाज में थे? एग्जैक्टली दिस इज द राइट आंसर, सुनिधि चौहान। कांग्रेचुलेशन ऑल द पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए आज की सुबह, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। और आज की सुबह ये वॉइस नोट मेरे पास सबसे पहले पहुंचा था, जरा इनको सुन लेते हैं, इन्होंने क्या सही जवाब दिया था।
1: राधे आनंद जी, राधे राधे जी, जो सभी सॉन्ग बजा रहे हैं
0: जी,
1: ये सुनिधि चौहान exactly. जी ने गाया है और आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है।
0: थैंक यू।
1: और प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा है आपका, प्रोग्राम सुन के तमाम तरह की जानकारियाँ हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। गुड डे, गुड जॉब।
0: थैंक यू सो मच। गुड डे, गुड जॉब। आपको भी राधे राधे, और आप नींद से भी थोड़ी जाग जाइएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड कंग्रेचुलेशन अलका वर्मा जी, आज की सुबह आपका मेरे पास वॉइस नोट सबसे

0: तो आज की सुबह आप ही सुपरस्टार बन जाती है हमारी शो की, बाकी लोग भी हमारे लिए बहुत ही बड़े वाले स्टार हैं, उनके लिए भी तालियां। इतना टाइम आप साझा करते हैं, 10 बज चुके हैं सुबह के स्टेशन की घड़ी में, और अभी एक स्पेशल शो की बारी है। तो ये स्पेशल शो जो है आपके लिए आने वाला है इसी चैनल पर, तो आप बस ऐसे ही जुड़े रहिए, ट्यून इन रहिए, बहुत सारी चीजें और आगे खुशी भी आ रही है आपके लिए अच्छे गाने लेकर। आदि की रिक्वेस्ट पूरी करेगी तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। फटाफट इन शॉर्ट आपके नाम पढ़ देता हूँ। मेरे पास रामगोपाल गुप्ता जी बुद्धि बिहार से जुड़े थे सही जवाब के साथ। ये ललिता कश्यप नवीनगर से राइट आंसर पहुंचा रहे थे। ईदगाह शफी अहमद, ईदगाह से हमारे साथ शफी अहमद रईस दूला अंसारी गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे थे। एंड गुड मॉर्निंग आनंद जी, सना तुर्क नाजिया तुर्क हमारे साथ जुड़ी थी, लिखती हमें आज़ादी चाहिए मटर पनीर से, एंड पनीर ढूंढने की इस मशक्कत से। और मतलब इन्होंने जो भी बोला है ना, मैं समझ सकता हूँ मैम, आपको इस चीज़ से आज़ादी तो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ से आज़ादी नहीं चाहिए यार। और ये अविनाश सतनागर जी पूरी मुंबई की लैंग्वेज में मेरे साथ बात कर रहे हैं आज की सुबह। देखिए सर, मैं पढ़ तो नहीं पाऊंगा लेकिन मैं समझ गया हूँ आपकी बात, थैंक यू सो मच। आप पक्के मुंबई वासी हैं मेरे को लग रहा है, मुंबई कर लग रहे हो आप मुझे। हाय गुड मॉर्निंग, राजा कश्यप जी मेरे साथ सही जवाब के साथ जुड़े हैं। अमित वर्मा जुड़ चुके हैं आज की सुबह हिमगिरी से, सही जवाब पहुंचा रहे हैं और साथ में गुड मॉर्निंग लिखते हैं। ये जुड़ चुके हैं राधे राधे आनंद जी, आप कैसे हालचाल हैं। भूपी शर्मा नगर पंचायत पागवाड़ा से, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। राजेश मीना जुड़े हैं बेंगलुरु से मेरे साथ। नौनेश कुमार जुड़ चुके थे आज की सुबह। दुर्गेश सैनी जुड़े थे यूपी से हमारे साथ, मुरादाबाद यूपी से। रणवीर सिंह जेठालाल जुड़े थे, एंड सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीस मेरे साथ जुड़े थे आज की सुबह। रेगुलर लिसनर रिहाना मेरे साथ जुड़ चुकी थी, एंड हमारे साथ ये जुड़े थे आज की सुबह आंचल सैनी जी, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। इन्होंने भी जो है मेरे को मैसेज किया आज की सुबह, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड ये बबलू सैनी जुड़े थे जिला मुरादाबाद बस्तूर से। अतर सिंह सैनी से आप जुड़े हैं, अतर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मठा बहुत ही कमाल का था, मजा आ गया उसे पीकर। एंड आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल हैं, मेरे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग आनंद जी कैसे हालचाल है, ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, और गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं हमें। ये मुमताज आलम गुड मॉर्निंग सर, रेडियो वाले आनंद गुड मॉर्निंग पहुंचते हैं, पहुंचा रहे कौन, विक्की सागर जी थैंक यू सो मच। ये लक्ष्मी भाभी संतोष भाभी जुड़े हैं गुड मॉर्निंग के साथ आज की सुबह। चलो गाइज मिलते हैं आपको कल सुबह इंडिपेंडेंस डे पे। रोहित राणा अलीगढ़ से जुड़ गए हैं सही जवाब के साथ, लिखते हैं हर हर महादेव, आपको भी हर हर महादेव। 10:03 कुछ एड ब्रेक, उसके बाद स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए निकाल रहे हैं, एंड सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं कल, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। कुछ कहना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ, ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से। बाय।
1: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा। अगर

Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि गांव की गलियों, खेतों, घरों और लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, और आज की कहानी है कानपुर देहात की। एक ऐसा जिला जिसकी पहचान गांवों की मिट्टी, खेती किसानी, मेहनत कश लोगों और बदलते ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। यहाँ की तस्वीर में परंपरा भी है और विकास की नई उम्मीद भी।
0: और यही बदलाव आज हमारी कहानी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का जोर इस बात पर है कि विकास की रफ्तार गांव तक पहुंचे और हर क्षेत्र को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: सड़क, रोजगार, स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं, यानी विकास की ऐसी तस्वीर जिसमें उत्तर प्रदेश के गांव भी नए उत्तर प्रदेश की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े।
0: यानी आज बात होगी विकास की कहानी आम लोगों की जुबानी।
1: तो चलिए चलते हैं कानपुर देहात के उस ग्रामीण परिवेश की ओर जहां बदलाव को महसूस किया जा सकता है, और सुनते हैं वहां के लोगों की अपनी कहानी।
0: उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि विकास की योजनाएं कागजों तक सीमित ना रहें, बल्कि उनका लाभ गांव, घर, परिवार तक पहुंचे। सड़क हो या रोजगार हो या स्वरोजगार, हर क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी मिले।
1: और यही सबसे अच्छी बात है कि जब किसी योजना का लाभ सीधे किसी परिवार तक पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उससे पूरा परिवार मजबूत होता है और आत्मनिर्भरता की राह आसान होती है।
0: तो अब सुनते हैं उस व्यक्ति की आवाज जिसने खुद इस बदलाव को महसूस किया है।
2: श्याम सुंदर कमल, ग्राम बखरिया, ढाकन सिवली से रहने वाला हूँ। मैं कानपुर में मिस्त्री टाइल पत्थर का काम करता था। अटेंडम एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया। बुखार में बच्चे अच्छे सब घबरा गए मेरे, तो उन्होंने मुझे लाद के डॉक्टर के यहाँ ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हम हृदय रोग संस्थान में एडमिट हो गए। वहाँ करीब जहाँ पे डॉक्टर ने जांच की तो उसमें उन्होंने बताया कि अटैक इनकी बीमारी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 3-4 लाख रुपया लगेगा। हम 2-3 में पड़े रहे वहाँ पे, कुछ इलाज चलता रहा, जो घर का था सब खत्म हो गया, लाज गल्ला जो भेजा वो भी सब बेच दिया। इसके बाद में मेरे पिताजी एक दिन देखने गए तो उन्होंने मुझे कागज दिखाया। तो वो कागज मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये तो आयुष्मान कार्ड वाला है, इससे आपका इलाज हो सकता है। तो उसी से मेरा फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, फेसमेकर मशीन पड़ी, तब से आज तक मेरा वहीं से इलाज भी चल रहा है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो उन्होंने मेरी वक्त पे, बुरे वक्त पे उन्होंने साथ दिया मेरा, मैं उनका दिल से आभारी हूँ।
1: सुना आपने, यही तो विकास की असली तस्वीर है, जब सरकारी प्रयास लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं तो योजनाओं का उद्देश्य भी सार्थक होता है।
0: और उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, गांव हो या शहर, किसान हो या छोटा कारोबारी, हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
0: लेकिन हरी, ये बताइए, किसी योजना की सफलता को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: वो तो लाभार्थियों से पूछिए।
0: बिल्कुल सही। तो चलिए एक और लाभार्थी से जानते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया और सरकारी मदद ने उनके लिए किस तरह की नई संभावनाएं खोली।
3: मेरा नाम वंदना पाल है, मैं ग्राम तातमो खबरा की निवासी हूँ। मेरी एजुकेशन एमए है। मेरी शादी 2016 में हुई थी। 16 में शादी होने के बाद हम घर में ही रहते थे, जैसे घर का काम करते थे और हमें बाहर आना जाना नहीं होता था। 2022 में हमारे यहाँ ब्लॉक से कुछ दीदियाँ आईं जिन्होंने हमें समूह के बारे में जानकारी दी। हमने भी अपना समूह में जुड़ने का निर्णय ले लिया, जिसमें हम अध्यक्ष पद पे थे। मेरे समूह का नाम सागर महिला स्वयं सहायता समूह है। और क्या कहते हैं, 2 महीने बाद, जब हमें समूह में जुड़ने के बाद 2 महीने बाद पता चला कि ब्लॉक में कुछ वैकेंसियां निकली हैं, जैसे समूह सखी और बैंक सखी ये सब निकली थी, जिसमें हमने बैंक सखी के पद पे फॉर्म डाला था, जिसमें हमारा 60 दिन की ट्रेनिंग आर शेट्टी अकबरपुर में हुई थी। उसके बाद हमको बैंक में 2022 अगस्त में हमको ज्वाइनिंग मिल गई थी। उसके बाद हम बैंक में आना जाना शुरू किया, वहाँ पे हम बैंक में रह के समूह की दीदियाँ, जैसे नए पंचायतों में खाते खुलते थे बनते थे, उसमें हम उनके खाते खुलवाते थे, जब 6 महीने पूरे हो जाते थे उनका लोन पास करवाते हैं। ऐसे चलते चलते हम ब्लॉक में एक दिन गए तो हमें वहाँ पे पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के बारे में पता चला, जिसमें हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारा वो लोन भी पास हो गया और हमें 5 लाख का लोन मिला, जिसमें हमने किराने की दुकान की। ये पैसा हमको मतलब हाथ में नहीं मिला, इसके लिए जो हम सामान लाए उसके लिए मिला था। हम मतलब समूह में जुड़ के हमने काफ़ी कुछ किया, उसके पहले तो हम गरीब में रहते थे, अब हम भी अपना कुछ अपना खर्च निकाल सकते हैं अपने पैरों पे खड़े होके। हम तो सबसे यही कहते हैं सभी दीदियों से कि समूह में जुड़िए और समूह से लाभ उठाइए। मुख्यमंत्री युवा उद्यम के बारे में अगर हम भी नहीं जान पाते तो हम भी घर पे होते और बस वही थोड़ा समूह का काम करते होते। जब हमको इसके बारे में जानकारी मिली तो हमने ये अपना लोन करवाया और हम इसमें आगे बढ़े। हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी योजना ये शुरू की है, जिससे हम लोगों को, हम गृहिणियों को भी इसमें आगे बढ़ने के लिए लाभ मिल सकता है। जब ये हमारे यहाँ, मेरे पास ये किराने की दुकान नहीं थी तो मेरे घर का खर्च मेरे पति ही चलाते थे, अब हम उनका हाथ बटा सकते हैं और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और हमारा जीवन कुशल पूर्वक है और शांति से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
1: वाह, इनकी बातों में सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि आगे बढ़ने का भरोसा भी सुनाई देता है।
0: और यही भरोसा उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा की ताकत है। सरकार की योजनाएं तभी प्रभावी बनती हैं जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और वो लाभ उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।
1: अब इस पूरे विकास कार्य से जुड़े अधिकारी से जानते हैं कि सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ रही है।
4: मैं विधान जायसवाल और मैं इस जनपद कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ पिछले लगभग 6 महीने से।
1: सबसे पहले सर, श्रोताओं की ओर से जानना चाहेंगे कि जनपद कानपुर देहात में वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी प्रभावी योजनाएं संचालित हो रही है।
4: देखिए, शासन की विभिन्न योजनाएं हमारे जनपद कानपुर देहात में भी संचालित हैं और मुझे खुशी है कि विभिन्न जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं में लोगों को लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से हम देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगजन पेंशन, गरीब बच्चियों के जिनकी शादी नहीं हो जाती उनके लिए हमारे समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, शादी अनुदान योजना जिसमें उनको कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिसमें किसी अनटाइमली डेथ पे जो है कुछ सरकार जो है मदद करती है, इसी तरह पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है पूर्व दशमोत्तर, किसानों के लिए उनके सम्मान राशि के रूप में भारत सरकार के योजना के अंतर्गत किसान सम्मान निधि देते हैं, फसलों के लिए अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दैवीय आपदा राहत योजना, इसी तरह DBT के माध्यम से अगर पशुओं को भी आप रख रहे हैं तो उसमें भी तमाम योजनाएँ हैं जिसके अंतर्गत जो है लाभ पहुँचा रहे हैं। हर घर में नल हो, जल हो, उसके लिए हमारी ग्रामीण जो हमारी पाइपलाइन सप्लाई है उसके अंतर्गत, इसके अलावा भी हमारी एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो पहले आप लोग इसको नरेगा के नाम से जानते होंगे, वो भी जो है BBG राम जी के नाम से और भी बेहतर ढंग से जनपद में संचालित कराई जा रही है।
1: जो भी योजनाएं आपने बताई इनका जो हमारे खासकर ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको प्रत्यक्ष कैसे लाभ मिल पा रहा है?
4: हमारी योजनाएं जो जमीनी स्तर पे जब लागू होती हैं उसका सीधा सीधा इसमें जो प्रभाव है और उसका लाभ है उस गरीब व्यक्तियों को मिलता है, जिसका असर जो है ग्रामीण जीवन पे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। आप देखेंगे हमारे जो भी गांव हैं, गांव में गरीब लोग रहते हैं, उनके पास यदि उनकी खुद की ज़मीन है तो उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी भी उनकी पात्रता हो उनके अंतर्गत उनको पक्का मकान हम बना रहे हैं। लाखों पक्के मकान हम लोगों ने बना लिया है अभी तक, और आगे भी जैसे जैसे इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते जाते हैं वैसे वैसे इनको हम नए पक्के मकान बनाते हैं। इसी तरीके से बीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 125 दिन का जो पहले नरेगा के अंतर्गत 100 दिन था उसको सरकार ने 125 दिन कर दिया, जो मजदूरी है वो भी बढ़ा के 300 रुपये के करीब कर दी है। तो उस सारी चीज़ें जो है रूरल जो हमारी इकॉनमी है, रूरल जो हमारी लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, उनको उनकी आय और उनके जीवन को बेहतर ढंग से और आगे बढ़ाने के लिए ही लागू की जा रही हैं।
1: सर इसी के साथ क्या कोई ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार की किसी योजना का लाभ लिया हो और वो आज आगे सकारात्मक बढ़ रहा हो?
4: ऐसे तो आप देखेंगे तो कानपुर देहात में अनगिनत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे
1: जी।
4: सरकार हमारी जो है और जो हमारे विभाग हैं जिले स्तर पे, उनमें आप देखेंगे हम निराश्रित जैसे अगर कोई वृद्ध हो गया गांव में तो उसके लिए भी हम पेंशन की व्यवस्था करते हैं, विधवा है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करते हैं। एक बहुत ही अच्छी हमारी जो योजना है भारत सरकार के उसके योजना के क्रम में राज्य सरकार ने उसको लॉन्च कर रखा है, पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, वह है हमारी स्व सहायता समूह के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी महिलाएँ हैं उनको सशक्त किया जाना। तो तमाम हमारे समूह बनते हैं और उस समूह की महिलाएं जो सरकार भी स्टार्टअप फंड और फिर अन्य भी बैंक के माध्यम से फंड के थ्रू जो है उनको मदद करती है, और उसमें बहुत सारी हमारी समूह की महिलाएं दीदियां जो है उसमें जुड़ के समूह बना के आत्मनिर्भर हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में जैसे अगर आपने जैसा पूछा है कि अभी किसी का, तो मुझे अभी याद आ रहा है कि अभी हम लोगों ने एक यहाँ पे कार्यशाला भी कराई थी, हमारी एक रंजना जय माँ दुर्गे स्व सहायता समूह, उसमें उन्होंने जो है एक गृहिणी से, पहले वो कुछ नहीं करती थी जैसे सामान्य दिनचर्या होती है एक महिला की ग्रामीण क्षेत्र में घर के काम, और उन्होंने एक समूह का गठन कराया, समूह में महिलाओं को जोड़ा और वो समूह आज एक गृहिणी से हट के एक उद्यमशील एक एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंतर्गत जो खुद लोगों को रोजगार देने वाली वो बन चुकी हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो विभिन्न हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं ऑफिसर्स अन्य जगहों पे जो स्टेशनरी इत्यादि की है वो जेम पोर्टल जो भारत सरकार ने बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार के क्रम में, जिससे सामग्री खरीदने की बाध्यता है उसके बिना हम सीधे किसी से खरीद नहीं सकते, वो वहाँ पे भी पंजीकृत हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है आज उनकी मासिक आमदनी जो पहले कुछ नहीं थी वो जो है 20,000 से लेके 25,000 तक वो प्रतिमा जो है अपना अर्न कर रही है।
1: इसी के साथ सर ये जानना चाहेंगे जैसे कोई व्यक्ति पात्र है किसी भी योजना का और वो लाभ नहीं ले पा रहा है तो उसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए?
4: देखिए हमारे सरकार और शासन के विभिन्न माध्यम हैं, सूचना विभाग है, हमारे अखबार हैं, आपका रेडियो है, इनके माध्यम से हम लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जागरूकता के माध्यम से चलाने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जून माह में एक वृहद जो है एक जन जागरूकता शिविर लगभग 15 दिन का चलाया था, ब्लॉकों में और मुख्यालय स्तर पे जगह जगह कई कई दिन तक कैंप लगाए थे। इसके अलावा भी हमारे जो पंचायत भवन हैं जो हर गांव में हैं वहां पे भी विभिन्न हमारे शासकीय जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके योजनाओं के पात्रता उनके लाभ के बारे में वहाँ पे हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करा रखा है। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे कार्मिक हैं, सचिव हैं या अन्य विभागों के जो फील्ड स्तरीय कार्मिक हैं वो भी जगह जगह जाके लोगों को इसके बारे में जागरूकता करके लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: सर इसी साथ जानना चाहते हैं कि जो हमारी विकास की योजनाएं हैं इनका प्रभावी क्रियान्वयन और उसमें जो पारदर्शिता होती है वो सुनिश्चित करने के लिए जो हमारा जिला प्रशासन है वो क्या कदम उठाता है?
4: देखिए अगर कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं होती है तो निश्चित तौर से ये उस योजना को कहीं न कहीं वो एक कमजोर करती है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जनपद में बहुत ही स्पष्ट निर्देश और क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए योजनाओं का हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो भी लाभार्थी होंगे उनका पहले जो उनकी पात्रता होगी उसके आधार पे उनकी जांच हो कि वास्तव में उसके लिए पात्र हैं। ऐसा तो नहीं कोई किसी वास्तविक कोई लाभार्थी का हक छीन के किसी अपात्र व्यक्ति को मिल रहा है, जो इसके पास ऑलरेडी मकान है उसको हम मकान दे रहे हैं। तो इसलिए फील्ड में सरकार ने भी इसके लिए जो ऐप बना रखा है, ऑलरेडी एक ऐप बना रखा है, उसमें फील्ड पे जाके जियो टैगिंग होती है, फिर उसको देखी फोटो खींची जाती है कि हाँ वो कहाँ पे है, आवास है नहीं है, फिर उसके बाद उसको आगे हम ले जाके उसको शामिल करते हैं। इसी तरीके से अन्य भी जो योजनाएं हैं DBT के माध्यम से, सीधे उसके कहीं बीच में बिचौलियों की जरूरत ही नहीं है, सीधे खाते में पैसा उनके जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो शिकायत भी मिलती है

0: तो शिकायतों को भी हम लोग निराकरण कराते हैं। अगर कोई लापरवाही बरती जाते हैं किसी के स्तर पे तो उनको दंडित करने का भी काम करते हैं।
1: सर, इसी के साथ अंत में जनपद कानपुर देहात के जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो साथी हैं आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: इनके लिए मेरा यही एक संदेश है कि आप सरकार की योजनाओं से जुड़ के इसका लाभ लीजिए। आप अगर अच्छा आपको खेती करने का मन हो तो हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और इसके अलावा भी विभिन्न सरकारी अनुदान हैं, उनके माध्यम से आप अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। आप अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो हमारे यहाँ CM युवा जैसी तमाम स्कीम्स हैं जिसमें आप हम फैसिलिटेट करेंगे और आप अपना कोई भी उद्यम उसमें अपना सकते हैं। इसी तरह समाज कल्याण की विभिन्न योजनाएं हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया आप आगे आइए। जो भी हमारा फील्ड ऑफिस है या कहीं भी आप जिलाधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, हमारे मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, किसी भी योजना के बारे में आपको जानकारी शत प्रतिशत मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ, प्रशासन से जुड़ें, सरकार से अधिक अधिक जो योजनाएँ हैं उनका लाभ आप तक पहुँचे। किसी भी तरीके से किसी मिडिल मैन, बिचौलिए या कोई इस तरह से कहे कि हम आपका काम करा देंगे, उसके प्रभाव में मत आए। सरकारी जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे कंट्रोल रूम नंबर हमारे यहाँ चलता है, जिलाधिकारी प्रतिदिन जनता दर्शन में बैठ के लोगों को सुनते हैं, मेरे स्तर पे भी सुनवाई होती है, तो ब्लॉकों में, तहसीलों में कहीं भी आप जा सकते हैं किसी अपनी समस्या का निराकरण कराने के लिए। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं और जनपद कानपुर देहात में हम आपके साथ मिलकर ही इसके विकास को आगे बढ़ाएंगे, मेरी यही आप सभी के लिए संदेश रहेगा।
1: सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्तम समय से समय निकाला हमारे श्रोताओं के लिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो जानकारी है हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगी और सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका वो लाभ भी लेंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके श्रोताओं के साथ रूबरू हूं उसको, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बातों से साफ है कि विकास सिर्फ निर्माण कार्यों का नाम नहीं है। विकास का मतलब है लोगों के जीवन में सुविधा, अवसर और आत्मविश्वास बढ़ना।
3: और यही दूरदर्शी सोच आज उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति दे रही है, जहां आज की योजनाओं की नींव पर कल के आत्मनिर्भर और सशक्त प्रदेश की तस्वीर तैयार की जा रही है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का जोर है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे।
3: गांव में सुविधाओं का विस्तार हो, लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले, जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का सहारा मिले, ये प्रयास उत्तर प्रदेश को नई दिशा दे रहे हैं।
2: यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान केवल आबादी या क्षेत्रफल से नहीं बल्कि तेजी से बदलती विकास की तस्वीर से भी हो रही है।
3: तो दोस्तों, आज की कहानी हमें यही बताती है कि विकास तब तक सार्थक होता है जब तक उसका असर जमीन पर दिखाई दे
2: और जब उस बदलाव की गवाही खुद आम आदमी की आवाज दे।
3: उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्य प्रदेश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं
2: और इसी विश्वास के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है विकास के रास्ते पर, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर और नए उत्तर प्रदेश के रास्ते पर।
3: तो श्रोताओं, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत।
2: सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 FM पर, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
4: बदलते
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM।
6: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
2: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
2: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
1: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
0: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। समय हुआ है 10:28। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, लेकर आई आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। फ्राइडे मॉर्निंग है एवरीवन, ब्यूटीफुल मौसम बाहर का बहुत ही ऑसम है, सुबह सुबह बारिश होए। दोस्तों आज फ्राइडे मॉर्निंग है और फ्राइडे को ब्यूटीफुल थॉट आपके साथ शेयर न करें ऐसे कैसे हो सकता है कि कल की तस्वीर बनाने की जल्दी में आज के रंग फीके मत करिए। क्योंकि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और हम अक्सर क्या करते हैं, कल के चक्कर में ना अपनी जो आज का टाइम है उसको भी हम ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो कुछ इस तरह से थॉट है आज की मॉर्निंग कि कल की तस्वीर बनाने की जल्दी में आज के रंग फीके मत करिए, जिंदगी को थोड़ा खुलकर जीने दीजिए, क्योंकि हर खूबसूरत मोड़ पहले से ही तय नहीं होता। कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानी वह होती है जो हमने प्लान नहीं की होती है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज सिर्फ एक दिन नहीं, एक खूबसूरत मौका है कुछ अच्छा सोचने का, कुछ अच्छा करने का और सबसे जरूरी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखने का, क्योंकि आज खूबसूरत दिन है और इससे खूबसूरत बनाने, इसे खूबसूरत और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने का काम हमारा है, राइट नाउ।

तो कल की चिंता को थोड़ा कम कीजिए, आज की खुशी थोड़ी ज्यादा हो और खुद पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। इसी थॉट के साथ करते हैं अपने शो की शुरुआत और एक प्यारा सा गाना आज की मॉर्निंग आप सभी के लिए। और सुबह सुबह जब मैंने बाहर विंडो से देखा तो छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जा रहे थे और इतने मतलब खूबसूरत लग रहे थे। हल्की बूंदाबांदी थी, तब तो ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं थी। एंड सब अपने अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहा है तो कोई अपने काम पर जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है। मतलब देखिए, मौसम चाहे कैसा भी हो, हमारी जब हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना होता है ना, तो फिर हम हर चीज़ का सामना आसानी से कर पाते हैं। और हम भी अपने ऑफिस आ चुके हैं आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर। और अब आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा आज की सुबह। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ओहो, आज क्या मम्मी से शिकायत कर रहे हैं आप? हाँ, क्या फरमाइशें हैं आज आपकी? मम्मा, आज मौसम बहुत अच्छा है तो प्लीज़ कुछ गर्मा गर्म पकौड़े बनाइए ना। हाँ, ये चल रहा है ना मॉर्निंग में घर में? अच्छा ठीक है, चलिए पकौड़ों का और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए। मैं सुनवाती हूँ आपको एक शानदार सा ट्रैक अरिजीत सिंह जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ आज की सुबह। सुनिएगा इस गाने को, मैं बस वापस आती हूँ।

0: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और बिल्कुल जी, देखिए तेरे आने की खुशी में सावन आ गया है। सावन का आज 16वां दिन है और खूबसूरत सा फ्राइडे का दिन है। अपने आप में शुक्र है कि शुक्रवार है। और आज का मौसम भी बड़ा ही औसम है। आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त हुआ है अभी 10:42, 10:42 राइट नाउ। स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गई है और आपके खूबसूरत मैसेज को ही यहाँ पर झड़ी लग गई है, तो उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज हमें पहुँचाती है आज की सुबह निखत फातिमा जी। गुड मॉर्निंग खुशी दी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग निखत, मैं बहुत अच्छी हूँ। और कहती हैं कि आज सुनिधि चौहान जी का बर्थडे है मैम, तो उन्हीं का एक ट्रैक मैं सुनना चाहूंगी, तेरे वास्ते मेरा मेरा इश्क सूफियाना। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, आज की सुबह सुनवाएंगे बिल्कुल आपको। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है दुर्गी सैनी जी का। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कल्याणपुर मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है रानी नांगल से रिहाना जी का। गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसी हैं? आज आप अपनी पसंद से अपनी पसंद का एक ट्रैक प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल मैम, ये मौका आपने दिया है तो इसको हम बिल्कुल नहीं गंवाएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी, साथ में रईस दुल्ला अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू खुशी जी? आई एम गुड सर, हैव अ लवली डे। एंड आप सभी आरजे को एंड लिसनर्स को भी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एडवांस में शुभकामनाएं पहुंचाते हैं सर। सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ये गाना सुनना चाहते हैं आज की सुबह, बिल्कुल सुनवाएंगे सुहाना से गाना। आप भी कुछ अगर सुनना चाहते हैं ना एवरीवन आज की सुबह, तो हमें जल्दी से मैसेज कीजिएगा आप। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो हमें भी सबरी से इंतजार है, अपने मैसेज पहुंचाएगा और सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत। उसके बाद अभी लौट कर आने वाले हैं एंड वेदर की अपडेट भी आज आपको देने वाले हैं, कैसा रहने वाला है मुरादाबाद का मौसम, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो बस आप बने रहिए, जुड़े रहिए, चिपके रहिए हर्षी खुशी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, ठीक है? हाँ, क्या आज डिसाइड कर रहे हैं वैसे खाना बनाने का? आप क्या सोच रहे हैं? आज इतना प्यारा सा मौसम है, कुछ स्पाइसी से खाने का मन कर रहा है आज की सुबह? हाँ, अरे अरे अरे, मुस्कुराने लगे हो आप। चलिए बताइएगा आज की सुबह आपका क्या खाने का मन कर रहा है, मतलब कुछ स्पाइसी सा या फिर कुछ अच्छा सा, कि आज तो कुछ बनाया जाए, भाई मौसम इतना प्यारा है। क्या डिसाइड कर रहे हैं आप, बताइए हमें, हम इंतजार कर रहे हैं आपका।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर

0: करो।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

मुरादाबाद हो, मुरादाबाद के लोगों के लिए जरूरी मौसम अपडेट। एंड सचेत ऐप से मिली सूचना के अनुसार मुरादाबाद जनपद में अगले 3 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। ऐसे में सभी नागरिक सतर्क और सुरक्षित रहें। बारिश के दौरान पेड़, बिजली के पोल और चर्च इमारतों से दूरियां बनाए रखें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतें। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ये सूचना जिला प्रशासन मुरादाबाद द्वारा जनहित में जारी की गई है। और एवरीवन, आपसे निवेदन है कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो प्लीज सावधानी के साथ जाइएगा। और यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आपके लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं, तो उनको भी हम शामिल करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है हम आपके मैसेज शामिल न करें? मुझे पता है आप बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे कि खुशी जी कब आएंगी और कब हमारा मैसेज शामिल करेंगी। तो चलिए कंप्लीट करते हैं आपका इंतजार। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जिला मुरादाबाद संभल से। आंचल सैनी जी हमें मैसेज पहुँचाती हैं। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है, गुड मॉर्निंग एफएम मुरादाबाद के सभी चाहने वालों और सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपको भी अमित वर्मा जी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया जिला मुरादाबाद से, मैसेज पहुंचाती हैं आकांक्षा सैनी जी। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। ओहो, ये गाना सुनना चाहती हैं आज की सुबह, सपनों में मिलती है। ओकोड़ी मेरे सपनों में मिलती है। अरे हम तो हकीकत में भी मिलने के लिए तैयार हैं, आप आइए ना हमारे स्टूडियो। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया कश्मीर से महराजुद्दीन जी का। गुड मॉर्निंग आरजी खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहते हैं आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक। सेम टू यू सर। और यहाँ पर खूबसूरत बातें भी होंगी, खूबसूरत अपडेट भी आपको मिलने वाली है। बस बने रहिएगा आप, चिपके रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ। और कुछ बेहतरीन गीत उसके बाद आएंगे लौटकर, फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। और देखिए 15 अगस्त की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं पूरे भारत में। एंड तो प्यारे से गाने भी तो होने चाहिए ना, देशभक्ति वाला वो जोश, वो जुनून हमारे अंदर है, तो शो भी तो करना चाहिए ना, दिखना भी तो चाहिए ना।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। खुशी है आपके साथ और अभी आपने सुना ये बेहतरीन सा ट्रैक अशोक भोसले और साथ में सुरेश वाडिकर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में। हम ये ना ट्रैक मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और बहुत सारे श्रोताओं का भी ये फेवरेट ट्रैक है, क्योंकि ये गाना किसी भी हम फंक्शन में जाते हैं ना, वहाँ ना चले तो लगता है कि पार्टी अधूरी है ना। कहीं भी हम फंक्शन में जाते हैं तो ये ट्रैक बजता ही बजता है, प्ले होता ही होता है और सब इस पर, ऑडियंस जितनी भी पार्टी में जाते हैं सभी डांस करते हैं।

और दोस्तों जश्न आज़ादी के लिए अमृतसर तैयारियां, मतलब आपको पता है एवरीवन कि जश्न आज़ादी का रंग अब हर तरफ दिखाई देने लगा है। एंड 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले अमृतसर में तैयारियां जोरों पर हैं। एंड गुरु नानक स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े शानदार प्रस्तुतियां दी। रिहर्सल में ही आज़ादी के जश्न की एक खूबसूरत झलक देखने को मिली, जहां तिरंगे के रंग देशभक्ति का जोश और युवाओं का उत्साह पूरे माहौल को खास बना रहा था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज़ादी का पर्व आने वाला है और देशभक्ति का रंग चढ़ने वाला है। जय हिंद, जय भारत। और एवरीवन, वक्त अभी

मैं आपको बता देती हूँ राइट नाउ समय हुआ है 11:11 और यहाँ पर आपके खूबसूरत मैसेज भी आ गए हैं बैक टू बैक, उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है गौरव टेलर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से। खुशी जी जय श्री राम, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। और ये कहते हैं कि आज का मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद आपका सर।

और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रणवीर सिंह जी का मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको और एफएम के सभी मुरादाबाद, एफएम मुरादाबाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। एंड इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें लिखी हैं कि सर झुकता है तिरंगे के आगे, सर झुकता है तिरंगे के आगे, दिल रहता है हिंदुस्तान के साथ, कदम कदम पर बुलंदियों ने लिख दी है अमर कहानियां, इस देश की बलिदानियों ने लिख दी है अमर कहानियां, देश की बॉर्डर फिल्म का एक ट्रैक हमें सुनना है मैम। बिल्कुल सुनवाएंगे सर। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, आरजे जी आपको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। इन्होंने भी बहुत प्यारी सा थॉट लिखा है, बड़ी प्यारी सी लाइनें लिखी हैं कि मेरी देश की धरती उपकार। एंड इन्होंने लिखा है, ये अपना मैसेज हमें पहुँचाते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी परवलीश जी आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, वंडरफुल सॉन्ग सिलेक्शन आरजे खुशी जी, थैंक यू सो मच। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं लदावली से। अब देशभक्ति का रंग हर तरफ छाया है, तो एक प्यारा सा ट्रैक सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे अगर फिर से कनेक्ट होते हैं। फ्रॉम द मूवी फना से बहुत प्यारा ट्रैक देश रंगीला, हर तरफ देशभक्ति का रंग सब पर चढ़ा हुआ है और चारों तरफ खूबसूरत माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे और बच्चे भी जोरों शोरों से फुल तैयारी कर तैयार हैं।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: Hey, you're tuned into FM Murababa 89.6 FM.

सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।
1: मेरा गांव मेरी धरोहर है,
2: मेरा गांव मेरी धरोहर। पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोकगीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अभी समय हुआ है 11:29 और आज 14 अगस्त है। एक ऐसी तारीख जो हमें आ रही इतिहास में सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि दर्द, संघर्ष, बिछड़ने और इंसानियत की परीक्षा की कहानी समेटे हुए है। 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के साथ लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर अनजान जगहों की ओर पलायन करना पड़ा। परिवार बिछड़े, रिश्ते टूटे और असंख्य लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज विभाजन स्मृति दिवस पर हम उन सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने उस कठिन दौरान में अपनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा। लेकिन इतिहास हमें सिर्फ दर्द याद करने के लिए नहीं बल्कि उसे सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। दोस्तों, आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि जाति, धर्म और भाषा से ऊपर आपसी प्रेम, भाईचारे और इंसानियत को मजबूत करेंगे, क्योंकि देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं में नहीं बल्कि उसके लोगों के दिलों में बसे एकता और विश्वास में होती है। विभाजन की पीड़ा को नमन, उस दौर के हर पीड़ित को श्रद्धांजलि और एक मजबूत, शांतिपूर्ण, एकजुट भारत को सलाम। और आप सुन रहे हैं एवरीवन एफएम मुरादाबाद 80।

दोस्तों यहाँ पर आपके भी संदेश आ रहे हैं बैक टू बैक, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये गुड मॉर्निंग हमें विश करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, मेरा नाम, इन्होंने इरम जी का मैसेज हमारे पास आया है, और आज की सुबह ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाती है, एक बारिश का गाना सुनना चाहती है, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आपका शो हम सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू। आपको पसंद आता है उसके लिए शुक्रिया। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, ऐसा देश है मेरा, अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत से गीत है, तो सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। आप कहीं मत जाइए एवरीवन, अपने संदेश हमें पहुंचाएगा, बने रहिए हमारे साथ। यह है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी।

0: इस इंडिपेंडेंस डे देशभक्ति के जज्बे को बनाइए और भी खास। हिंदी न्यूज 9 FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मूवी शो। आइए साथ मिलकर मनाएं आजादी का जश्न देशभक्ति और मनोरंजन के साथ। पावर्ड बाय ब्रजलाल कृष्णलाल ज्वेलर्स, सपोर्टिंग बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, कॉस्मोस हॉस्पिटल, भव्या हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन, डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एवं क्रस्ट हॉस्पिटल। इस इंडिपेंडेंस डे जुड़िए इस खास पहल से और महसूस कीजिए देशभक्ति का जुनून। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल इन इनिशिएटिव बाय हिंदी न्यूज 9 एंड FM मुरादाबाद 89.6।
1: मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है मुरादाबाद 89.6 पर। आज ये खुशी है आपके साथ और एवरीवन, वक्त हुआ है अभी 11:44।
2: सारा दिन यूं ही गलना, जब मैं तेरे कोल न होवा।
1: और अभी आपके पास एक गोल्डन चांस, जी हाँ, आप जीत सकते हैं मूवी टिकट। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा आपको काम करना है। और वो छोटा सा क्या काम है? बहुत सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ आज की सुबह। जो सबसे पहले राइट आंसर देगा वो बनेगा आज का हमारे शो का लकी विनर एंड उनको मिलेगा मूवी टिकट कल देखने का मौका। जी हाँ, तो बहुत सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आज की सुबह, तो आप सब तैयार है ना? तो चलिए दोस्तों, आपसे मालूम कर ही लेते हैं। आज का हमारा सवाल है कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था? जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था? 1 साल। ऑप्शन चलो मैं आपको दे देती हूँ। ऑप्शन ए 1 साल 6 महीने, ऑप्शन बी 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन सी 3 साल 5 महीने, ऑप्शन डी 4 साल। अब आप सही जवाब हमें पहुंचाइएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था? इसका राइट आंसर हमें पहुंचाइएगा फटाफट से। मोबाइल नंबर है 9837896896। जो सबसे पहले

0: ले देगा राइट आंसर, उसको मिलने वाला है आज मूवी टिकट। और अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया, तो एड ब्रेक की बात लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद खुशी लौटकर आने वाली है। और जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब देने के लिए आप सब तैयार हैं, फटाफट से मैसेज भी कर रहे हैं। अरे वाह क्या बात है। देखते हैं आज कौन बनने वाले हमारे लकी लिसनर्स जो जीतने वाले मूवी टिकट।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

मेरा गांव मेरी धरोहर पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोक गीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोक गीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।

0: खबरों से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।

इस इंडिपेंडेंस डे देशभक्ति के जज्बे को बनाइए और भी खास। हिंदी न्यूज 9 FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मूवी शो। आइए साथ मिलकर मनाएं आजादी का जश्न देशभक्ति और मनोरंजन के साथ। पावर्ड बाय ब्रिजलाल किशनलाल ज्वेलर्स, सपोर्टिंग बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, कॉस्मोस हॉस्पिटल, भव्या हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन, डॉक्टर रघु

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। और एवरीवन, वक्त हुआ है अभी 11:57 और आज की सुबह आपकी मॉर्निंग और भी होने वाली है गोल्डन। वो कैसे, आज आपको मिलने वाले मूवी टिकट। हाँ, लेकिन लकी विनर तो एक ही होंगे। और आज की सुबह मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। सवाल मेरा ये था कि क्या आप जानते हैं दोस्तों, भारत का संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था? और मैंने ऑप्शन भी आपको दिए थे। ऑप्शन ए 1 साल 6 महीने, ऑप्शन बी 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन सी 3 साल 5 महीने और ऑप्शन डी 4 साल। और हमारे पास सबसे पहले सही जवाब हमें पहुंचाया है। बता दें कौन है आज के हमारे शो की लकी कॉलर, लकी लिसनर्स। कौन है लकी लिसनर्स, जरा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां तो हो जाए। हाँ, ऐसे कैसे अनाउंस कर दें नाम बिना क्लैपिंग के। तो ये जोरदार तालियां हैं आज के हमारे लकी लिसनर जो बने हैं, जिन्होंने जीता है मूवी टिकट। उनका नाम है सनी सैनी और इन्होंने दिया है सही जवाब आज की सुबह। गुड मॉर्निंग मैम। और राइट आंसर है 2 साल 11 महीने 18 दिन। एग्जैक्टली राइट आंसर यही है। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक की थी और संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और यहाँ पर हमारे पास बैक टू बैक बहुत सारे मैसेज भी आए हैं, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपको अभी और भी ज्यादा मौके मिलने वाले हैं। लाइक आज आप लकी जो कॉलर लकी विनर हैं, आप बन सकते हैं दिन में भी, आपके पास ये मौका है। एंड हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर के साथ जुड़ी है ललिता कश्यप जी नवीन नगर मुरादाबाद से, और ये भी सही जवाब के साथ जुड़ी हैं आज की सुबह। संदीप कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं आज की मॉर्निंग। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है। फिरोज सैफी जी ने अपना मैसेज हमें पहुंचाया है और इन्होंने भी बताया कि 2 years 11 months and 18 days राइट आंसर है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास धर्मेंद्र कश्यप जी का आया है लाइन पार कुंदनपुर से, ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया जिला मुरादाबाद से आंचल जी का, और ये भी सही जवाब के साथ जुड़ी है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है आकांक्षा सैनी जी का, आकांक्षा जी ने भी सही जवाब पहुँचाया है आज की सुबह। उसके अलावा रणवीर सिंह जेठालाल जी ने भी सही जवाब दिया है, पार्टिसिपेट किया है आज की सुबह। गीता कश्यप जी ने भी सही जवाब दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने सही जवाब पहुंचाए हैं आज की मॉर्निंग। और अब हम चलते हैं, लेकिन आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम मिलेंगे आपको सी यू सून। और

एक बार वंस अगेन आप सभी पार्टिसिपेंट्स जिसने हमारे सभी श्रोताओं ने किया उनके लिए जोरदार तालियां। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड सनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बनते हैं आज के हमारे लकी लिसनर एंड आपने जीता है मूवी टिकट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, हमारा ऑफिशियल नंबर से आपको कॉल आएगा और कैसे आप टिकट को अचीव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 के साथ और मुझे दीजिएगा अभी जाने की अनुमति। मैं मिलूंगी आपको 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, बस ऐसे ही खुश रहा कीजिए। अब खुशी को दीजिए अनुमति। बाय।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी हुई है एक नन्ही सी जान की जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, इसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श और फिर शुरुआत महीने में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इसके लिए आज हम दोनों सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। नमस्कार भैया।
1: नमस्कार आरजी खुशी, आप दोनों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज हम भी आ जाते हैं जब आप इतनी प्यार से बुला रही हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही थी, नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए।
2: हालांकि भारत में शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आई है, लेकिन यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। SRS बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत का IMR 24% 1000 जीवित जन्म है। इसका मतलब
1: सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करके ये सब मिलाकर नवजात बच्चे की जान बचा सकते हैं।
0: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ।
3: माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अनमोल होता है। ये बच्चे को निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है।
4: बिल्कुल ठीक, माँ का पहला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है, उसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्यों अनु जी?
3: बिल्कुल, जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है।
5: भाई साहब, 6 महीने का होने से पहले माँ के दूध के अलावा बाहर का कुछ भी खाएगा तो बहादुर नहीं मरियल सिंह ही बनेगा।
4: जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए।
6: अब देखो, मुन्नी 7वें महीने में आ गई है, अब मुन्नी को खाना दो, ना रोए तब भी। और हाँ, अब मुन्नी को दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाओ।
7: जी हाँ, 7वें महीने से बच्चे को मुलायम मसले हुए अनाज, दालें, सब्जियाँ और फल थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू कर दें, दिन में 3 से 4 बार, और उसे माँ का दूध पिलाना जारी रखें।
4: और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा, 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा, 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान, और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया सिंह दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चे को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकते हैं। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन कौन टीके लगते हैं, क्या ये भी उतना ही जरूरी है?
1: बिल्कुल जरूरी है जी खुशी, जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
2: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त दिए जाते हैं। इसमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की 0 खुराक शामिल है।
1: इन टीकों से बच्चों को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर ही करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
0: यानी बच्चों की मजबूती शुरुआत के लिए 2 बातें साथ साथ जरूरी हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाली टीके।
1: बिल्कुल, मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चों के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वो माँ की आवाज़ पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचाने की बात नहीं है, ये बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मकता विकास की नींव है।
0: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत हो जाती है।
2: बिल्कुल, बच्चा भले बोल नहीं सकता लेकिन वह महसूस करता है। माँ की छाती से लगाना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पिलाना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों में मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसीलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसके लिए इसे गोल्डन आवर कहते हैं।
0: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
1: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को माँ की छाती से लगाएं और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह बच्चों को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं।
2: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं है, ये बच्चे की पहली सुरक्षा है।
0: तो साफ संदेश, पहला पीला दूध फेंकना नहीं, बच्चों को देना है।
2: और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने की कोशिश करानी है। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है, बच्चा भी सीख रहा होता है। नर्स, आशा दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
1: स्तनपान में सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है, माँ का दूध नहीं आ रहा। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसीलिए माँ दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
0: बहुत सी घरों में जन्म के बाद बच्चों को शहद, गुटी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन देवी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
2: नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, जब तक डॉक्टर कोई अलग सलाह ना दे। शहद, घुट्टी, पानी या बाहर की कोई चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन।

0: है। गर्मी में पानी भी नहीं?
1: पहले 6 महीनों तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर या किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दे। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी होते हैं, इसीलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
0: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
2: हाँ, रोना भूख नहीं होता। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंड, नींद, पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पिलाना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
0: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है?
2: बिल्कुल। अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना है, सिर्फ सलाह देना काफी नहीं है, काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
1: पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है, और चूँकि देखभाल शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
0: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सिहतिया जी, ये क्या होता है और क्यों जरूरी है?
1: त्वचा से त्वचा का संपर्क का मतलब होता है कि बच्चों को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधा लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कंगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। खासकर कम वजन वाले समय से पहले बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभकारी हो सकता है।
2: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। यह केवल शरीर की गर्माहट नहीं है, यह भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए यह बहुत अच्छा है।
0: क्या पिता भी ऐसा कर सकते हैं?
1: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा का संपर्क दे सकते हैं। खास करके जब माँ को आराम चाहिए तो वह थकी हुई है, लेकिन इसका तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुला रहे, बच्चा दबे नहीं, वह आराम से सांस ले रहा हो, यह ध्यान रखना भी जरूरी है।
2: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू होती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, यह भी पिता की जिम्मेदारी है।
0: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
2: सच्चाई, पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
0: दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
1: सच्चाई ये है आरजे खुशी, पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग से सलाह ना दे।
0: तीसरी गलतफहमी है, माँ का दूध कम होता है, तुरंत ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हैं।
2: सच्चाई, पहले स्तनपान सहायता ले, माँ को दोष ना दे, स्वास्थ्य कर्मी से मदद ले।
0: चौथी गलतफहमी, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
2: सच्चाई, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी सब की भूमिका है।
0: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
1: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, बहुत सुस्त हो, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरे जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चों पर घरेलू प्रयोग नहीं करना चाहिए।
2: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
0: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
1: आरजी खुशी, ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि बच्चों का दिमाग, शरीर और भविष्य की शुरुआत देखभाल से बनती है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग, ये सब कुछ भी शामिल है।
2: हर घर 5 संकल्प ले सकते हैं। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला गाढ़ा दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध देंगे, माँ को अकेले नहीं छोड़ेंगे।
1: और एक छठा संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद आने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएं।
2: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चों को जीवन की सुरक्षित शुरुआत होती हैं।
0: बहुत स्पष्ट बात है, बच्चों के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चों की मजबूत शुरुआत होती है।
1: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में कोई दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता लें और यह सीखने की प्रक्रिया है।
2: माँ को ताना नहीं सहारा चाहिए, बच्चों को घुट्टी नहीं माँ का दूध चाहिए, परिवार को अफवाह नहीं सही जानकारी चाहिए।
0: साथियों, आज की 5 जरूरी बातें याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करवाने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चों को दें, उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथी, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है। पांचवी, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
2: और छठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाए, इंतजार ना करें।
0: इसी संदेश साथ आज का सेहत सही लाभ कई यही समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चों की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ गई।
2: पहला दूध, पहला प्यार, पहला घंटा जीवन का आधार, माँ का साथ, पिता का हाथ, बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत, सेहत सही लाभ कई।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती। गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कमजोरी, थकान या अचानक चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए? अब जांच करानी चाहिए? कब जांच करानी चाहिए? और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सेहतिया जी और टीकन देवी जी। सेहतिया जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर ये है अनीमिया है क्या?
1: देखिए आरजी रीना, सरल भाषा में कहते हैं, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ कई बच्चे की कई जरूरतों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में आयरन और फोलिक और एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर यही जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं आर्जरीना, इसका असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जितनी जल्दी पहचानना होगा उतना ही बेहतर परिणाम मां और बच्चे दोनों के लिए होगा।
0: यानी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है?
1: बिल्कुल आर्जरीना, और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हम केवल बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि कुपोषण और अनीमिया के दृष्टि चक्र भी तोड़ना है।
0: दृष्टि चक्र वह कैसे?
1: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और के शरीर में खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो वह कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुपोषण और अनीमिया एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है, इसीलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत ही जरूरी है।
0: दोस्तों, यह बात सचमुच सुनने वाली है, यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सेहतिया जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं?
1: देखिए आरजी रीना, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगे तो केवल थकान ही नहीं हो सकती, यह आयरन की कमी के लक्षण भी हो सकते।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भ अवस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं,
2: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की सीमा की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहाँ खून की जांच हुई, पता चला कि उसे अनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
0: फिर क्या सीमा ने इलाज शुरू कराया?
2: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
0: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच करवाना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
0: अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिलाओं को जांच कब कराना चाहिए?
1: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
0: ANC यानी गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच।
1: बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
0: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
1: कई बातें देखी जाती हैं आरजे, लेकिन खून की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
0: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
1: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर से हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का अनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम अनीमिया, और अगर 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर अनीमिया।
0: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
1: आर्जेरीना IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
0: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
1: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही, केवल गोलियां खाने से बात पूरी नहीं होती। घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं।
0: किस तरह का भोजन करें?
2: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खासतौर पर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
0: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
2: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले।
0: सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, यह क्या है?
1: सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता।
0: अच्छा?
1: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
0: यानी पहले जांच, फिर डॉक्टर की सलाह।
1: बिल्कुल सही आर्जेरीना, और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है। नसों के रास्ते ड्रिप लगाकर इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी होने वाले मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर की तेज तथा निगरानी में इलाज जरूरी समझें।
0: तो लोग अपने मन में इसकी मांग नहीं कर सकते?
1: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच पर आधारित होता है।
2: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
0: दोस्तों,

0: आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
1: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर करवाएं, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
2: याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC की जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदे होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
0: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो से पूछिए, क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषक, पूरक और आहार, सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर अनीमिया तथा IV और FCM की भूमिका पर। नमस्कार, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।
2: मुरादाबाद 89.6, मेरा नाम आरजी आनंद है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सेहत सही तो लाभ कहीं, और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में एनीमिया की पहचान, जांच, पोषण और IFA MMS एवं समय पर जांच और इलाज। इसके विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वुमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल फ्रॉम मुरादाबाद सिविल लाइन्स, जहाँ पर हमारे साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस सेशन में मौजूद रहेंगी। उनसे हम आज ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है का हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैं थोड़ा सा, मैं चाहूंगा एक बार आप भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में प्लीज बताएं।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जिला महिला अस्पताल में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
2: ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम, एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि गर्भ अवस्था में अनीमिया के समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांचें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार विमेन्स स्किप कर देती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
3: गर्भावस्था में एनीमिया के लिए जो जांचें हैं, उसमें सबसे जरूरी जो जांच है वो हीमोग्लोबिन की जांच होती है।
2: ठीक है मैम।
3: जिसके लिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं।
2: ऑलराइट, ठीक है मैम, ओके। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जांच।
3: बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपके शरीर में खून सही मात्रा में है या नहीं।
2: ओके, ठीक है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और रहेगा, किसी स्तर पर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य, माध्यम और गंभीर एनीमिया माना जाता है क्या इसको?
3: बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए गर्भवती महिला के केस में, कम से कम।
2: ठीक है।
3: अगर वो 11 से कम है और 9 से ज्यादा है तो वो माइल्ड एनीमिया में आता है, मतलब हल्का एनीमिया।
2: ठीक है।
3: फिर अगर वो 9 ग्राम से कम और 7 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया में आता है, मतलब कि एनीमिया थोड़ा ज्यादा है।
2: ज्यादा है।
3: और अगर 7 ग्राम से भी कम है तो वो सीवियर एनीमिया में आता है। इसका मतलब कि ये जो स्टेज है ये जानलेवा भी हो सकती है।
2: ओके।
3: इनका ट्रीटमेंट तुरंत, सब लेवल्स का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अगर 7 ग्राम से कम है तो जान का भी बहुत खतरा रहता है और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
2: ऑलराइट। अच्छा मैम, क्या केवल आयरन की गोलियां ही पर्याप्त हैं या इसके अलावा जो विशेष खान पान है, जो भोजन है, क्या उसमें भी कोई विशेष बदलाव जरूरी है?
3: भोजन तो सबसे जरूरी है, दवाइयां तो सबको नहीं मिल पाती है, सब लोग अस्पताल तक
2: नहीं पहुंच पाते हैं,
3: उन लोगों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
3: जिन भी चीजों में आयरन की मात्रा है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, बीन्स हैं जितनी,
2: हाँ जी, दालें भी, आई थिंक
3: दालें, दालों में प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि खून में आयरन भी होता है और ग्लोबुलिन भी होता है।
2: राइट।
3: हीम प्रोटीन होता है।
2: राइट।
3: प्रोटीन भी चाहिए हमको और आयरन भी चाहिए, उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो नींबू संतरा इनमें होता है वो भी जरूरत है।
2: ओके, तो मतलब ये सारी चीजों को भी डाइट में मेंटेन करना है,
3: बिल्कुल करना सारे चाहिए। और जितने सेब हैं,
2: हाँ जी, जो
3: फ्रूट्स हैं, ओके, फ्रूट्स हैं,
2: मौसमी फल को ज्यादा
3: बिल्कुल
2: शामिल करें,
3: बिल्कुल सही।
2: बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा, यदि गर्भवती महिलाएं समय पर एनीमिया का उपचार नहीं करा पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या माँ और बच्चे पर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
3: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है,
2: हाँ जी,
3: वो कम हो सकता है।
2: ओ।
3: और बच्चा गर्भावस्था के दौरान खत्म भी हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो।
2: ओके,
3: ठीक है। फिर डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं? प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है।
2: ओके।
3: और क्योंकि जितने भी प्रसव होते हैं,
2: हाँ,
3: चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी से कराएं, चाहे हम सिजेरियन ऑपरेशन से कराएं, सब में खून बहता है, सब में शरीर का खून हीमोग्लोबिन कम हो जाता है,
2: कम हो जाता है।
3: तो जो महिला के अंदर सही मात्रा में खून होगा उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस हैं। लेकिन जो महिला पहले से ही खून की कमी है, एक तो उसको खून भी ज्यादा होगा, दूसरा उसका खून डिलीवरी में निकल गया तो हार्ट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा।
2: ओह माय गॉड,
3: इसलिए जान का खतरा बढ़ जाता है,
2: बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता
3: है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हमारे देश में तो जितनी भी मातृ की मोर्टैलिटी होती है, मरती है, जितनी भी महिलाएं प्रसव में या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था में, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आज भी कुपोषण है, खून की कमी।
2: एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा चाहते जाते, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम, आपने इतना इंपॉर्टेंट समय दिया हमारे फिर मुरादाबाद पे हमारे लिसनर्स के लिए। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से बचाव के लिए आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप यहाँ से रेडियो से हमारे डिलीवर करना चाहें।
3: बिल्कुल, मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि घर में अपने खान पान का ध्यान रखें, गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही, अगर बच्चा प्लान भी कर रहे हैं,
2: हाँ
3: उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है।
2: हाँ,
3: फिर आप जब डॉक्टर से मिलें तो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारी जांचें करवाएंगे। अगर आप जल्दी चले जाते हैं, किसी डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सही स्टेज में आपके शरीर में क्या कमियां हैं वो पता लग सके और सही समय से उनका इलाज हो सके कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल पाए।
2: That's very nice, ma'am. Thank you so much. Lovely talking to you, ma'am. हमारे साथ आने के लिए guys, आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि गांव की गलियों, खेतों, घरों और लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, और आज की कहानी है कानपुर देहात की, एक ऐसा जिला जिसकी पहचान गांव की मिट्टी, खेती किसानी, मेहनत कश लोगों और बदलते ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। यहाँ की तस्वीर में परंपरा भी है और विकास की नई उम्मीद भी,
0: और यही बदलाव आज हमारी कहानी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का जोर इस बात पर है कि विकास की रफ्तार गांव तक पहुंचे और हर क्षेत्र को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: सड़क, रोजगार, स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं, यानी विकास की ऐसी तस्वीर जिसमें उत्तर प्रदेश के गांव भी नए उत्तर प्रदेश की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े।
0: यानी आज बात होगी विकास की कहानी आम लोगों की जुबानी।
1: तो चलिए चलते हैं कानपुर देहात के उस ग्रामीण परिवेश की ओर जहां बदलाव को महसूस किया जा सकता है, और सुनते हैं वहां के लोगों की अपनी कहानी।
0: उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि विकास की योजनाएं कागजों तक सीमित ना रहें, कागजों तक सीमित ना रहे बल्कि उनका लाभ गांव, घर, परिवार तक पहुंचे। सड़क हो या रोजगार हो या स्वरोजगार, हर क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी मिले।
1: और यही सबसे अच्छी बात है कि जब किसी योजना का लाभ सीधे किसी परिवार तक पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उससे पूरा परिवार मजबूत होता है और आत्मनिर्भरता की राह आसान होती है।
0: तो अब सुनते हैं उस व्यक्ति की आवाज जिसने खुद इस बदलाव को महसूस किया है।
2: श्याम सुंदर कमल, ग्राम बखरिया, झारखंड सिवली से रहने वाला हूँ। मैं कानपुर में मिस्त्री टाइल पत्थर का काम करता था। अटेंडम एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया, बुखार में बच्चे अच्छे सब घबरा गए मेरे, तो उन्होंने मुझे लाद के डॉक्टर के यहाँ ले गए। तो डॉक्टर ने ये बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, तो हम हृदय रोग संस्थान में एडमिट हो गए। वहाँ करीब जहाँ पे डॉक्टर ने जांच की तो उसमें उन्होंने बताया कि अटैक की बीमारी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम खुद नहीं तो कम से कम 3-4 लाख रुपया लगेगा। हम दो तीन में पड़े रहे वहाँ पे, कुछ इलाज चलता रहा, जो घर का था सब खत्म हो गया, लाज गल्ला जो भेजा वो भी से बेच दिया। इसके बाद में मेरे पिताजी एक दिन देखने गए तो उन्होंने मुझे कागज दिखाया, तो वो कागज मैंने डॉक्टर को दिखाया।

0: यार डॉक्टर ने कहा ये तो आयुष्मान कार्ड वाला है, इससे आपका इलाज हो सकता है। तो उसी से मेरा फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, फेस में मशीन पड़ी, तब से आज तक मेरा वहीं से इलाज भी चल रहा है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो उन्होंने मेरी वक्त पे बुरे वक्त पे उन्होंने साथ दिया मेरा, मैं उनका दिल से आभारी हूँ।
1: सुना आपने, यही तो विकास की असली तस्वीर है, जब सरकारी प्रयास लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं तो योजनाओं का उद्देश्य भी सार्थक होता है।
2: और उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग हर क्षेत्र तक पहुंचे, गांव हो या शहर, किसान हो या छोटा कारोबारी, हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
2: लेकिन हरी ये बताइए, किसी योजना की सफलता को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: वो तो लाभार्थियों से पूछिए।
2: बिल्कुल सही, तो चलिए एक और लाभार्थी से जानते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया और सरकारी मदद ने उनके लिए किस तरह की नई संभावनाएं खोली।
3: मेरा नाम वंदना पाल है, मैं ग्राम तातमो खबरा की निवासी हूँ। मेरी एजुकेशन एमए है। मेरी शादी 2016 में हुई थी। 16 में शादी होने के बाद हम घर में ही रहते थे, जैसे घर का काम करते थे और हमें बाहर आना जाना नहीं होता था। 2022 में हमारे यहाँ ब्लॉक से कुछ दीदियाँ आईं जिन्होंने हमें समूह के बारे में जानकारी दी। हमने भी अपना समूह में जुड़ने का निर्णय ले लिया, जिसमें हम अध्यक्ष पद पे थे। मेरे समूह का नाम सागर महिला स्वयं सहायता समूह है। और क्या कहते हैं, 2 महीने बाद जब हमें समूह में जुड़ने के बाद 2 महीने बाद पता चला कि ब्लॉक में कुछ वैकेंसियां निकली हैं, जैसे समूह सखी और बैंक सखी, ये सब निकली थी, जिसमें हमने बैंक सखी के पद पे फॉर्म डाला था, जिसमें हमारा 60 दिन की ट्रेनिंग आर शेट्टी अकबरपुर में हुई थी। उसके बाद हमको बैंक में 2022 अगस्त में हमको ज्वाइनिंग मिल गई थी। उसके बाद हम बैंक में आना जाना शुरू किया। वहाँ पे हम बैंक में रह के समूह की दीदियाँ, जैसे नए पंचायतों में खाते खुलते थे, बनते थे, उसमें हम उनके खाते खुलवाते थे। जब 6 महीने पूरे हो जाते थे उनका लोन पास करवाते हैं। ऐसे चलते चलते हम ब्लॉक में एक दिन गए तो हमें वहाँ पे पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के बारे में पता चला, जिसमें हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारा वो लोन भी पास हो गया और हमें 5 लाख का लोन मिला, जिसमें हमने किराने की दुकान की। ये पैसा हमको मतलब हाथ में नहीं मिला, इसके लिए जो हम सामान लाए उसके लिए मिला था। हम मतलब समूह में जुड़ के हमने काफ़ी कुछ किया। उसके पहले तो हम गरीब में रहते थे, अब हम भी अपना कुछ अपना खर्च निकाल सकते हैं अपने पैरों पे खड़े होके। हम तो सबसे यही कहते हैं सभी दीदियों से कि समूह में जुड़िए और समूह से लाभ उठाइए। मुख्यमंत्री युवा उद्यम के बारे में अगर हम भी नहीं जान पाते तो हम भी घर पे होते और बस वही थोड़ा समूह का काम करते होते। जब हमको इसके बारे में जानकारी मिली तो हमने ये अपना लोन करवाया और हम इसमें आगे बढ़े। हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी योजना ये शुरू की है, जिससे हम लोगों को, हम गृहिणियों को भी इसमें आगे बढ़ने के लिए लाभ मिल सकता है। जब ये हमारे यहाँ मेरे पास ये किराने की दुकान नहीं थी तो मेरे घर का खर्च मेरे पति ही चलाते थे, अब हम उनका हाथ बटा सकते हैं और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और हमारा जीवन कुशल पूर्वक है और शांति से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
1: वाह, इनकी बातों में सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि आगे बढ़ने का भरोसा भी सुनाई देता है।
2: और यही भरोसा उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा की ताकत है। सरकार की योजनाएं तभी प्रभावी बनती हैं जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और वो लाभ उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।
1: अब इस पूरे विकास कार्य से जुड़े अधिकारी से जानते हैं कि सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ रही है।
4: मैं विधान जायसवाल और मैं इस जनपद कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ पिछले लगभग 6 महीने से।
1: सबसे पहले सर, श्रोताओं की ओर से जानना चाहेंगे कि जनपद कानपुर देहात में वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी प्रभावी योजनाएं संचालित हो रही है।
4: देखिए, शासन की विभिन्न योजनाएं हमारे जनपद कानपुर देहात में भी संचालित हैं और मुझे खुशी है कि विभिन्न जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं में लोगों को लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से हम देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगजन पेंशन, गरीब बच्चियों के जिनकी शादी नहीं हो जाती उनके लिए हमारे समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, शादी अनुदान योजना जिसमें उनको कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिसमें किसी अनटाइमली डेथ पे जो है कुछ सरकार जो है मदद करती है, इसी तरह पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है पूर्व दशमोत्तर, किसानों के लिए उनके सम्मान राशि के रूप में भारत सरकार के योजना के अंतर्गत किसान सम्मान निधि देते हैं, फसलों के लिए अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दैवीय आपदा राहत योजना, इसी तरह DBT के माध्यम से अगर पशुओं को भी आप रख रहे हैं तो उसमें भी तमाम योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत जो है लाभ पहुंचा रहे हैं। हर घर में नल हो, जल हो, उसके लिए हमारी ग्रामीण जो हमारी पाइपलाइन सप्लाई है उसके अंतर्गत है। इसके अलावा भी हमारी एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो पहले आप लोग जिसको नरेगा के नाम से जानते होंगे, वो भी जो है BBG राम जी के नाम से और भी बेहतर ढंग से जनपद में संचालित कराई जा रही है।
1: जो भी योजनाएं आपने बताई इनका जो हमारे खासकर ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको प्रत्यक्ष कैसे लाभ मिल पा रहा है?
4: हमारी योजनाएं जो जमीनी स्तर पे जब लागू होती हैं उसका सीधा सीधा इसमें जो प्रभाव है और उसका लाभ है उस गरीब व्यक्तियों को मिलता है जिसका असर जो है ग्रामीण जीवन पे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। आप देखेंगे हमारे जो भी गांव हैं, गांव में गरीब लोग रहते हैं उनके पास यदि उनकी खुद की ज़मीन है तो उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी भी उनकी पात्रता हो उनके अंतर्गत उनको पक्का मकान हम बना रहे हैं। लाखों पक्के मकान हम लोगों ने बना लिया है अभी तक और आगे भी जैसे जैसे इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते जाते हैं वैसे वैसे इनको हम नए पक्के मकान बनाते हैं। इसी तरीके से BBG राम जी योजना के अंतर्गत 125 दिन का जो पहले नरेगा के अंतर्गत 100 दिन था उसको सरकार ने 125 दिन कर दिया, जो मजदूरी है वो भी बढ़ा के 300 रुपये के करीब कर दी है। तो उस सारी चीज़ें जो है रूरल जो हमारी इकोनॉमी है, रूरल जो हमारी लोग हैं वहाँ पर रहते हैं उनको उनकी आय और उनके जीवन को बेहतर ढंग से और आगे बढ़ाने के लिए ही लागू की जा रही हैं।
1: सर इसी के साथ क्या कोई ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार की किसी योजना का लाभ लिया हो और वो आज आगे सकारात्मक बढ़ रहा हो?
4: ऐसे तो आप देखेंगे तो कानपुर देहात में अनगिनत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे
1: जी।
4: सरकार हमारी जो है और जो हमारे विभाग हैं जिले स्तर पे उनमें आप देखेंगे हम निराश्रित जैसे अगर कोई वृद्ध हो गया गांव में तो उसके लिए भी हम पेंशन की व्यवस्था करते हैं, विधवा है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करते हैं। एक बहुत ही अच्छी हमारी जो योजना है भारत सरकार के उसके योजना के क्रम में राज्य सरकार ने उसको लॉन्च कर रखा है, पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, वह है हमारी स्व सहायता समूह के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी महिलाएँ हैं उनको सशक्त किया जाना। तो तमाम हमारे समूह बनते हैं और उस समूह की महिलाएं जो सरकार भी स्टार्टअप फंड और फिर अन्य भी बैंक के माध्यम से फंड के थ्रू जो है उनको मदद करती है और उसमें बहुत सारी हमारी समूह की महिलाएं दीदियां जो है उसमें जुड़ के समूह बना के आत्मनिर्भर हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में जैसे अगर आपने जैसा पूछा कि अभी किसी का, तो मुझे अभी याद आ रहा है कि अभी हम लोगों ने एक यहाँ पे कार्यशाला भी कराई थी हमारी एक रंजना जय माँ दुर्गे स्व सहायता समूह, उसमें उन्होंने जो है एक ग्रेडी से पहले वो कुछ नहीं करती थी जैसे सामान्य दिनचर्या होती है एक महिला की ग्रामीण क्षेत्र में घर के काम, और उन्होंने एक समूह का गठन कराया, समूह में महिलाओं को जोड़ा और वो समूह आज एक ग्रेडी से हट के एक उद्यमशील एक एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंतर्गत जो खुद लोगों को रोजगार देने वाली वो बन चुकी हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो विभिन्न हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं ऑफिसर्स अन्य जगहों पे जो स्टेशनरी इत्यादि की है वो जेम पोर्टल जो भारत सरकार ने बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार के क्रम में जिससे सामग्री खरीदने की बाध्यता है उसके बिना हम सीधे किसी से खरीद नहीं सकते वो वहाँ पे भी पंजीकृत हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी है आज उनकी मासिक आमदनी जो पहले कुछ नहीं थी वो जो है 20,000 से लेके 25,000 तक वो प्रतिमा जो है अपना अर्न कर रही है।
1: इसी के साथ सर ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति पात्र है किसी भी योजना का और वो लाभ नहीं ले पा रहा है तो उसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए?
4: देखिए, हमारे सरकार और शासन के विभिन्न माध्यम हैं, सूचना विभाग है, हमारे अखबार हैं, आपका रेडियो है, इनके माध्यम से हम लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जागरूकता के माध्यम से चलाने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जून माह में एक वृहद जो है एक जन जागरूकता शिविर लगभग 15 दिन का चलाया था, ब्लॉकों में और मुख्यालय स्तर पे जगह जगह कई कई दिन तक कैंप लगाए थे। इसके अलावा भी हमारे जो पंचायत भवन हैं जो हर गांव में हैं वहां पे भी विभिन्न हमारे शासकीय जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके योजनाओं के पात्रता उनके लाभ के बारे में वहाँ पे हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करा रखा है। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे कार्मिक हैं, सचिव हैं या अन्य विभागों के जो फील्ड स्तरीय कार्मिक हैं वो भी जगह जगह जाके लोगों को इसके बारे में जागरूकता करके लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: सर इसी के साथ जानना चाहते हैं कि जो हमारी विकास की योजनाएं हैं इनका प्रभावी क्रियान्वयन और उसमें जो पारदर्शिता होती है वो सुनिश्चित करने के लिए जो हमारा जिला प्रशासन है वो क्या कदम उठाता है?
4: देखिए, अगर कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं होती है तो निश्चित तौर से ये उस योजना को कहीं ना कहीं वो एक कमजोर करती है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जनपद में बहुत ही स्पष्ट निर्देश और क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए योजनाओं का हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो भी लाभार्थी होंगे उनका पहले जो उनकी पात्रता होगी उसके आधार पर उनकी जाँच हो कि वास्तव में उसके लिए पात्र हैं। ऐसा तो नहीं कोई किसी वास्तविक कोई लाभार्थी का हक छीन के किसी अपात्र व्यक्ति को मिल रहा है जो इसके पास ऑलरेडी मकान है उसको हम मकान दे रहे हैं। तो इसलिए फील्ड में सरकार ने भी इसके लिए जो ऐप बना रखा है, ऑलरेडी एक ऐप बना रखा है, उसमें फील्ड पे जाके जियो टैगिंग होती है, फिर उसको देखी फोटो खींची जाती है कि हाँ वो कहाँ पे है, आवास है नहीं है, फिर उसके बाद उसको आगे हम ले जाके उसको शामिल करते हैं। इसी तरीके से अन्य भी जो योजनाएं हैं DBT के माध्यम से सीधे उसके कहीं बीच में बिचौलियों की जरूरत ही नहीं है, सीधे खाते में पैसा उनके जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो शिकायत भी मिलती है तो शिकायतों को भी हम लोग निराकरण कराते हैं, अगर कोई लापरवाही बरती जाती है किसी के स्तर पर तो उनको दंडित करने का भी काम करते हैं।
1: सर इसी के साथ अंत में जनपद कानपुर देहात के जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो साथी हैं आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: इनके लिए मेरा यही एक संदेश है कि आप सरकार की योजनाओं से जुड़ के इसका लाभ लीजिए। आप अगर अच्छा आपको खेती करने का मन हो तो हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और इसके अलावा भी विभिन्न सरकारी अनुदान हैं उनके माध्यम से आप अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। आप अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो हमारे यहाँ CM युवा जैसी तमाम स्कीम्स हैं जिसमें आप हम फैसिलिटेट करेंगे और आप अपना कोई भी उद्यम उसमें अपना सकते हैं। इसी तरह समाज कल्याण की विभिन्न योजनाएं हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया आप आगे आइए, जो भी हमारा फील्ड ऑफिस है या कहीं भी आप जिला अधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, हमारे मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, किसी भी योजना के बारे में आपको जानकारी शत प्रतिशत मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ, प्रशासन से जुड़ें, सरकार से अधिक अधिक जो योजनाएँ हैं उनका लाभ आप तक पहुँचे। किसी भी तरीके से किसी मिडिल मैन बिचौलिए या कोई इस तरह से कहे कि हम आपका काम करा देंगे उसके प्रभाव में मत आए। सरकारी जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे कंट्रोल रूम नंबर हमारे यहाँ चलता है, जिलाधिकारी प्रतिदिन जनता दर्शन में बैठ के लोगों को सुनते हैं, मेरे स्तर पे भी सुनवाई होती है, तो ब्लॉकों में, तहसीलों में कहीं भी आप जा सकते हैं किसी अपनी समस्या का निराकरण कराने के लिए। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं और जनपद कानपुर देहात में हम आपके साथ मिलकर ही इसके विकास को आगे बढ़ाएंगे, मेरी यही आप सभी के लिए संदेश है।
1: सर बहुत
5: मेरा गांव मेरी धरोहर है,
6: मेरा गांव मेरी धरोहर पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोक गीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपने फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।

0: चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे और प्रोग्राम है आपका फेवरेट। जी हाँ दोस्तों, आप बेसब्री से इंतजार करते हैं इस प्रोग्राम का। एक बार फिर से ये लीजिए, अब आपके इंतजार की प्रतीक्षा खत्म करते हैं। मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा साथ दे रहे हैं हमारे प्यारे से दोस्त अखिल जी। कैसे हालचाल है सर आपके?
1: बढ़िया आनंद जी, बढ़िया। आपके कैसे हालचाल है?
0: मेरे हालचाल बहुत ही अच्छे हैं अखिल जी, आप बताइएगा आपके हालचाल कैसे हैं और गर्मियों में कैसी जा रही है आपकी दिन और रात?
1: गर्मियों में दिन में पसीना,
0: हाँ, रात में मच्छरों ने

0: love you. Come, honey, let me give my love to you.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: करो।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। मैं और अखिल, प्रोग्राम है सोच बदलो। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। भैया बजाते रहो या गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो या बजाते रहो, बात एक ही, फिलहाल हम बजा रहे हैं गाना।

0: और इस बेहतरीन गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं मैं और अखिल जी आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। साथियों, आज का हमारा टॉपिक कोई स्पेशल नहीं है, बस हमने कुछ चीजों को उठाया है, कुछ चीजों को हम चुनकर लेकर आए हैं जिसपे हमें अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो अहम और कड़क वाला मुद्दा बना हुआ है वो है आज के टाइम में सोशल मीडिया। क्यों अखिल जी? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें ना जिसकी भागदौड़ में छोटे से लेकर बड़े तक और बड़े से लेकर बुजुर्ग तक भी शामिल है। हर किसी को लग रहा है कि मैं फेमस हो जाऊं, हर किसी को लग रहा है मेरे अच्छे व्यूज आ जाए। और मजे की तो यह है दोस्तों, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी फोटोज डालते होंगे ये उम्मीद करके कि शाम तक तो 200 लाइक आ ही जाएंगे और उस पे 2 लाइक भी ना आए तो आपका मन बड़ा उदास हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं आपको बोलूं तो मैं भी कभी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी डालता हूं तो मुझे भी लगता है यार शाम तक 500 लाइक तो आ जाएंगे, और जब 5 भी नहीं आती तो थोड़ा सा मन उदास होता है। लेकिन फिर वहीं पे हमें अपने मन को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। टाइम पे क्या करना है भाई? क्या हम 500 लाइक या 5 लाइक पे अपने आप को थोड़ी रख रहे हैं भाई?
1: बिल्कुल सही बात कही। और हमें सोशल मीडिया से अपने आप को कंपैरिजन करना है क्यों है?
0: एब्सोल्युटली अखिल भाई, बिल्कुल मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है हमारी खुद की लाइफ, हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन और हमारी फैमिली। अगर फैमिली खुश है, हम खुश हैं तो सब बढ़िया है। तो गाइज यहाँ पर भी सोच बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे अखिल जी ने दुबई में जाके एक बढ़िया से फूड की फोटो डाली तो मेरे को ये लगे भैया मैंने नहीं डाली तो मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं कहाँ बैठा हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। अखिल भाई की अपनी लाइफ है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है।
1: तुमने दुबई बोल के ना कुछ पुराने
0: मेमोरी याद दिला दी। वैसे मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, जो महान इंसान है, ये दुबई भी घूम के आ चुके हैं और दुबई में इन्होंने अरीना मरीना सब देखा है, एलेन और पता नहीं अबू धाबी कहाँ कहाँ घूम के आए हुए हैं भाई।
1: दुबई तो अपने में बहुत ही अच्छी जगह है।
0: और लेकिन यार आज की डेट में पता है सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है अखिल भाई?
1: क्या है
0: यार? मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम जो है ना हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे आ गया है जैसे मतलब बिना टमाटर की सब्जी नहीं बनती, वैसे इंस्टाग्राम से जब तक खोलो ना दिन की शुरुआत नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इंस्टाग्राम जो हमारी जिंदगी में आके मतलब इसने तहलका मचाया ना।
1: एक बात बोलूंगा तुमसे कि इंस्टाग्राम में देख के ना कभी भी अपने आप को ना अनसक्सेसफुल मत
0: यार।
1: पता
0: क्यों यार, भी एक मेरा फ्रेंड है, रिसेंटली उसने पता नहीं अनाप शनाप डाला और उसके इतने व्यूज आ गए, इतना वायरल हो गया वो बंदा। अभी किसी और की बात क्यों करे, कॉकरेज की बात कर लेते हैं भाई। कॉकरेज भाई को ले लो, इतने वायरल हो गए यार। तो मतलब कभी कभी लगता है यार फिर हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से, तो वो स्ट्रेस अपने आप ही आ जाता है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं?
1: मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो अगर हम किसी को देख के अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत
0: है। वो मतलब हमें सोच बदलनी चाहिए। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की प्रायोरिटीज अलग है, हर किसी का डिजायर अलग है। तो जरूरी नहीं है जो अखिल भाई की लाइफ में चल रहा हो मेरी लाइफ में भी चल रहा हो।
1: और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे ना लोग अपनी हाईलाइट ही दिखाते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है पूरी कहानी वो किसी को नहीं पता।
0: पॉइंट तो है। और कभी कभी तो ऐसा होता है लोग सिर्फ दिखाने के लिए ही चीजें कर देते हैं भाई। तो दोस्तों आपको अपनी जो है ना सोच को एकदम सही रखना है। जो आप देख रहे हो जरूरी नहीं है वो सच हो। आज भी आप YouTube पे एक इन्फॉर्मेशन डालोगे उसके इतने इन्फॉर्मेशन आएंगे आपको समझ नहीं आएगा सही क्या है और रॉन्ग क्या है। तो हमें सही डायरेक्शन में चलना है। और अभी एक और डायरेक्शन है जहां हमें जाना चाहिए मुझे और अखिल भाई को, वो है एक म्यूजिकल ब्रेक, म्यूजिकल डायरेक्शन, जहां जाएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स और रिलीफ दोनों मिलेंगे, हमारी जुबान को भी, हमारे गले को भी, और आपके कानों को भी मिलेगा सुकून। तो एक छोटा सा गाना, उसके बाद वापस आते हैं मैं और अखिल जी। हाँ, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये इंस्टाग्राम जितना प्यारा है ना उतना टेंशन का कारण भी बन गया आजकल की स्पेशली जेंजी का। कभी कभी तो मेरे अखिल भाई को भी टेंशन हो जाती है कि यार सुबह वीडियो डाली थी शाम तक आई क्यों नहीं, कल जोक बनाया था 2 महीने हो गए अभी तक आया क्यों नहीं। तो इनको भी बहुत टेंशन हो जाती है।
1: इसके लिए तो मैं जरा आनंद को अकेले में पकड़ूंगा।
0: और फिर ये अकेले में पकड़ने गलत मतलब मत समझिएगा श्रोताओं, फिर बाद में कहते हैं बच रहा है तू मेरा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं, फिर मिलते हैं।

0: ये गाना सुन के तो मैं अपनी चेयर से गिरने वाला था। अखिल भाई ने पकड़ लिया कि बेटा रुक जा, इतना डांस मत कर। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाना बहुत ही मजेदार था ये। और इस गाने के बाद इसी बात पे आपका वेलकम कर लेते हैं। जी आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद एंड अखिल के साथ। सो अखिल जी, आप कुछ अभी माइक के पीछे मुझे चंद लाइनें सुना रहे थे, जरा हमारे श्रोताओं के सामने पेश करें।
1: मैं बहुत ही सिंपल और ये कहना चाह रहा था, हर चमकती चीज जो होती है वो सोना नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: लेकिन ये जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये कौन सी सोने की बात चल रही है? जो रात को नींद पूरी नहीं हुई वो, या फिर आजकल जो महंगा हो गया है वो? थोड़ा सा विस्तार से बता दें। मैं थोड़ा कंफ्यूज
1: तुम्हारे पास कितना सोना आज बता दो लोगों को।
0: मेरे पास सिर्फ वीकेंड पे ही सोना होता है, सैटरडे एंड संडे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये दो दिन ही होते हैं। सैटरडे रात को जागता हूँ, संडे को सोना करता हूँ, और उसके बाद भी हो नहीं पाता है क्योंकि भाई इतना काम पड़ा होता है ना वीकेंड पे, वो भी कम्प्लीट करना होता है।
1: जो तुम्हारा सोना है ना, वो एक्चुअल में जो दूसरा सोना है उससे ज्यादा कीमती है।
0: करेक्ट यार। और अगर वो सोना कम्प्लीट नहीं है आपका, तो फिर सारे सोने बेकार है, सब अनसक्सेसफुल है। करेक्ट, क्योंकि आपकी हेल्थ भी उसी से जुड़ी है।
1: बिल्कुल सही है। हाँ। वो असली हेल्थ ही आपकी सोना है ना।
0: और अगर आप टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, तो आपके चेहरे पे जो सोने जैसा निखार आएगा ना। हाँ। भाई साहब, हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। करेक्ट। चलो जी, ट्रैक से नहीं भटकेंगे, सोच बदलो में हम थोड़ा सा फन और एक्टिविटीज ऐसे करते रहते हैं। लेकिन अभी अखिल जी, आपने जो वो चार लाइनें कही थी, वो लाइनें मैं जरा आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा। हाँ, हर चमकती चीज
1: सोना नहीं होती,
0: सोना नहीं होती,
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: बिल्कुल। इस बात में मैं भी कहना चाहूंगा, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है श्रोताओं। तो जो ये कंपैरिजन, इसको अपनी लाइफ से हटा देंगे तो कितना बढ़िया होगा अखिल जी,
1: है ना?
0: लेकिन मतलब मुझे लगता है कि हम इंसानों की आदत है, फितरत है, हम ये हटा ही नहीं सकते हैं।
1: हाँ।
0: ये कंपैरिजन करने वाली आदत। वेल, आप आगे क्या कहना चाह रहे
1: हैं? मैं तो ये कहूंगा कि अपने को ना किसी और की कहानी से मत नापिए।
0: हाँ।
1: आपकी जो अपनी जिंदगी है ना, उसकी टाइमिंग अलग है,
0: टाइमिंग अलग है यार, हर किसी की लाइफ के पैरामीटर सेट है,
1: एक अलग ही टाइमलाइन चल रही है, तो वो अच्छी ही चल रही है। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप उसे कंपैरिजन में ही निकाल दें या गांव दे।
0: अगर सोशल मीडिया आपका इनर पीस खराब कर रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही बात। और एक थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स भी करवाएं, इतना सारा डिटॉक्स चल रहा है।
0: डिजिटल डिटॉक्स के बारे में थोड़ा बताएं।
1: थोड़ा सा एक बढ़िया सा गाना लगा दीजिए, वही डिजिटल डिटॉक्स है।
0: हाँ, मैं गाना जरूर लगाऊंगा, और बहुत जल्दी जल्दी हम गाने सुनवा रहे हैं, तो श्रोता हमें सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया है, सारे गाने सुना के जाएंगे क्या?
1: हम थोड़ी स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं,
0: थोड़ा मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि लाइफ में ना एक चीज और है अखिल जी, जिसपे हमें ना थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड को जो है सेट करने की जरूरत है, और थोड़ी सी थॉट्स और अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। वो है फेलियर। हर किसी की लाइफ में ये फेस आता है, मुझे ऐसा लगता है, छोटे बड़े बच्चे हर किसी के जीवन में आता है ना? तो लोग इतना फेलियर शब्द से क्यों डरते हैं, इतना अनकॉन्फिडेंट अनकॉन्शियस क्यों फील करते हैं?
1: मेरे हिसाब से ना, मुझे क्या लगता है, क्योंकि जो सोसाइटी है ना,
0: हाँ,
1: वो सिर्फ आपकी सक्सेस ही सेलिब्रेट करती है।
0: गॉट इट, 100% अग्री विद यू।
1: और हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की बहुत ही लंबी कहानी होती है।
0: करेक्ट।
1: हमें तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो लोग डर रहे हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। जब तक फेलियर्स से आपका सामने नहीं होगा, तो सक्सेस का वो मजा भी आप नहीं ले पाएंगे।
0: इनफैक्ट, जब आप फेल होते हो ना अपनी लाइफ में दोस्तों, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप फेल हो रहे होते हो, तो आप ना उस वक्त बहुत कुछ सीख रहे होते हो। इतना आप सक्सेस में जब सेलिब्रेट करोगे, तब नहीं सीख पाओगे, इतना फेलियर वाले पीरियड में सीख पाओगे। बिकॉज वो जो फेस होता है ना, वो आपको वो सारी चीजें सिखाता है, वो चेहरों से रूबरू कराता है, जो एक्चुअली आप कभी आप उनको मिल भी नहीं पाओगे।
1: एक बार बताओ आनंद,
0: हाँ,
1: में फेल हुए, बिजनेस नहीं चला या रिलेशनशिप टूट गया, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई क्या?
0: नहीं यार, ये एग्जाम, रिलेशनशिप, बिजनेस, ये तो लाइफ का पार्ट है। अगर इन सब चीजों पे जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता यार कि हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर ना हमारी डायरेक्शन को बदलता है ना?
1: बिल्कुल सही, डेस्टिनी नहीं बदल सकता वो।
0: करेक्ट। तो वही है ना, आपकी अगर डेस्टिनी स्ट्रांग है, आपका आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आप उस पर फोकस्ड है, तो आई एम श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना? पर अगर लाइफ में आपको थोड़े से डाउनफॉल मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा सा वो फेस आ रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि यार अब मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फुली कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहिए, क्योंकि आपको पता है ना आप कहां पर सही है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, और आपको पता है आपकी मंजिल कहां है, तो फिर बस आपको तो भैया अच्छी चीज के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आगे निकलना है, और वो कहना है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: क्या बात
0: है ना,
1: क्या
0: इस मोटिवेशन को अपने अंदर लेकर आओ और अपनी सोच को बदलो, देखो जिंदगी कितने प्यारे रिजल्ट देगी। कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन नहीं भर दिया आज हमने लोगों में?
1: हाँ जी, ऐसा मोटिवेशन दे दिया, कल आ जाएंगे फोन के भाई साहब आ रहे हैं, हम भी एक आरजे बनने वाले हैं। आनंद,
0: कोई दिक्कत नहीं है जी, चेयर बिल्कुल खाली है, अखिल भाई को थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ा करेंगे, आपको अंदर बिठाएंगे और आपको यहाँ बिठाएंगे, टेंशन मत लो आप। फिलहाल अखिल भाई ने गाने की बात करी थी, तो गाना जो है आ गया है निकल के बाहर, और ये गाना बहुत अच्छा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपने सुना है गाना?
1: सुना।
0: कयामत से कयामत फिल्म थी आमिर खान साहब की, और ये गाना भाई साहब आज भी मजेदार लगता है मुझे।
1: और गाना गाने के बाद आमिर खान की तो मैं बात कहूंगा, आज क्या नाम कर रखा है
0: आमिर खान साहब ने, अरे गजब। और ये उदित साहब का भी कमाल है, उदित नारायण जी ने जब ये गाना गाए थे तो भाई साहब उनकी भी रातों रात पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, उदित साहब की आवाज है ना।
1: देखा एकदम आपका जो थे जितने भी फेलियर्स थे सभी एक उस गाने से सक्सेस।
0: एब्सोल्युटली यार, और आमिर खान की भी फर्स्ट मूवी थी क्यामत से क्यामत तक मूवी है, इसमें आमिर खान साहब को अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से देखना, उनका जो फेस है एकदम यंगर वाला, क्या लग रहे हैं भाई। एक काम करेंगे, अगर हम इन्हीं पे बातें करेंगे तो पूरा स्टोरी निकल जाएगा, गाना नहीं सुन पाओगे, तो पहले गाना सुनो उसके बाद लौट कर आते हैं।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्टिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और ये गाना भी आपने सुना कयामत से कयामत मूवी का, और बहुत ही कमाल की फिल्म थी और बहुत ही फैंटास्टिक लगे मुझे तो आमिर खान। और इसमें एक गाना है, मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर। अभी तक वो चेहरा मुझे तो नजर नहीं आया, लेकिन अखिल जी क्या कहना चाहते हैं, प्लीज टेल अस यार।
1: मैं एक्चुअली क्या है ना, अभी
0: हम बात कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
1: मगर आमिर खान साहब ने एज अ चाइल्ड एक्टर भी काम किया है। एक मूवी थी यादों की बारात करके,
0: हाँ।
1: और उन्हीं के अंकल हैं, डायरेक्टर थे जो उस मूवी के थे, नसीर साहब थे। तो मतलब बचपन से ही इज लाइक इन एक्टिव, और इतना कहते हैं ना कि बचपन खून में है, तो वो खून वाली ही चीजें थी कि हाँ भाई खून में है एक्टिंग, और इतना अच्छा आज के समय में ऐसा नाम।
0: मेरी तो आमिर खान साहब से बात भी हुई है, एक्चुअली एक रेडियो स्टेशन का नाम तो नहीं लूंगा, तो आमिर खान साहब मुंबई के एक स्टूडियो में थे और मैं अपने घर से खड़ा फोन लगा रहा था। लाल सिंह चड्ढा इनकी मूवी आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो उसके प्रमोशन के लिए आए थे। तो इन्होंने बोला था जो सबसे क्रिएटिव लाइन सुनाएगा मैं उससे लाइव बात करूंगा। तो मैं बस जस्ट रैंडमली मैंने फोन लगाया एक स्टेशन में, और वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो। तो आमिर खान साहब ने बोला हाँ कौन बोल रहे हो, मैंने कहा आनंद। तो कह रहे मैंने कहा मैं आमिर खान से बात करो, आमिर खान ने बोला यस बेटा मैं आई एम आमिर, टेल मी आनंद कहां से हो। मैंने बताया और मेरे को आरजे बनना है, आई एम वेरी पैशनेट ये वो। तो आमिर ने बोला ठीक है मैं यहाँ के डायरेक्टर से बात करता हूँ, जो वहां का प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी थे, कि और तुम्हें कुछ एक चांस दिलाते हैं। बट स्टेशन मुंबई में था तो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर आमिर खान साहब ने बोला एक राइमिंग बनानी है लाल सिंह चड्ढा की मूवी के ऊपर। तो फिर मैंने बना दिया, मुझे बड़ा मजा आया भाई जब मैंने बनाया, तो ताली वाली सब बजाई, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है अखिल भाई। वो लाइन थी कि जाना था मुझे बस के अड्डा, मुझे आज भी याद है, जाना था मुझे बस के अड्डा, लेकिन जैसे रेडियो खोला तो नजर आ गया लाल सिंह चड्ढा। इतनी तालियां बजाई आमिर खान, मतलब आमिर खान इज वेरी हैप्पी कि हाँ यार बंदे ने कुछ तो क्रिएट। एक दो लाइन और बोली थी, वो शायद मेरे पास, मुझे ध्यान नहीं है, वो मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है। और जब मैंने आमिर खान साहब से बात करी तो उस दिन पूरा दिन मुझे नींद ही नहीं आई भाई, लगा ही नहीं कि मैं कहां बैठा और कहां आमिर खान साहब से, मतलब जिनको पिक्चर में देख रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत गोल्डन चांस।
1: हमारे साथ ये वाला वाक्य हो गया कि पापा कहते हैं
0: बड़ा नाम करेगा। हाँ बट मम्मी को बहुत खुशी हुआ था, मेरी मम्मी को मतलब फेवरेट है आमिर खान। और फिर एक बार मेरी अक्षय कुमार साहब से भी हुई है यार ऐसी, तो दूसरे स्टेशन के, मतलब मैं शुरू से इतना ज्यादा एक्टिव रहा हूँ चीजों में, तो आई फील कि यार हाँ ठीक है रेडियो पे अगर हम, और रेडियो में भी मेरा आने का मतलब ये नहीं कि सेलिब्रिटी से ही मिलना है, मतलब एक रियल कनेक्शन बनता है। जैसे मेरी बात उनसे हुई मैं खुश हुआ, ऐसी हमारे तमाम लिसनर जो हमसे बात करते हैं उन्हें खुशी मिलती है, तो ये एक अलग ही यू नो हैप्पीनेस होती है। और ये अखिल जी जो बैठे ना ये भी बहुत कमाल धमाल करके आ चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली में, और ये एक बहुत अच्छे स्टेशन में साउंड इंजीनियर जो भी है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता इनका प्रोफेशन क्या रहा है, बट इन्होंने अच्छा किया है।
1: मैं बताना चाहूंगा आमिर खान साहब को मैंने भी बहुत नजदीक से देखा है, बात भी हुई है। उनकी एक मूवी की शूटिंग हुई थी जब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था,
0: तो दुबई
1: नहीं गुड़गांव में, किंगडम ऑफ ड्रीम्स।
0: अच्छा ओके।
1: तो वहाँ पे ना इनकी शूटिंग थी पीके मूवी की,
0: पीके ओके, आमिर खान और अनुष्का।
1: हाँ अनुष्का शर्मा, और दोनों ही आए थे उस गाने को शूट करने के लिए, दोनों ही लोग आए थे। तो मेरी मतलब आमिर खान साहब का

0: हमें सिखाएगा। अच्छा हमें बता दिया है। I'm sure आपने देखो ना, और ये मूवी की शूटिंग के दौरान ही मैंने इनके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि इन्होंने इस मूवी में जो डायलॉग बोले ना, अच्छा हमें सिखा दिया है, ये वाला करने के लिए उन्होंने 105 चबाए थे भाई, ये वाले शॉट के लिए आमिर खान साहब ने, वो पान खाते हो और तब ये वाला वायरल होता, तो इस मूवी के लिए उन्होंने 100 पान को खाया यार। एक एक्टर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है सोचो आप।
1: बिल्कुल सही।
0: और दोस्तों इसे एक्टर को नहीं, एक रेडियो जॉकी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं और ट्रैक पे हम लोग आ गए तो हमें वापस अपने ट्रैक पे जाना है। सो वेल, ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिसनर्स के काम की, भाई हर किसी को हर चीज नहीं पता होती है, रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा था सोशल मीडिया पे, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अखिल जी आप फेलियर के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे।
1: मैं तो कहूंगा यही
0: जी भैया,
1: गिरकर उठना सीख लिया हमने, अब मुश्किलों से डर नहीं लगता।
0: वाह,
1: क्योंकि सपने शहर देखकर नहीं हौसले देखकर पूरे होते हैं आनंद।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, और हौसले अगर आपके मजबूत है ना तो फिर आपको कोई नहीं पर सकता, कोई नहीं हरा सकता। करेक्ट, तो बस अपने इरादों को मजबूत रखिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, और जिंदगी में कुछ बढ़िया करने के लिए ना कुछ बढ़िया सोचना जरूरी है। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। आप भी अच्छा सोचिए, ऑफकोर्स आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। और आज के छोटे छोटे टॉपिक्स हमारा सिर्फ यही मतलब था, यही मुद्दा था बताने का, कि इन सब की वजह से ना हम बहुत भटकते हैं अपनी लाइफ में। सोशल मीडिया हो गया, स्ट्रेस हो गया, फेलियर हो गया, ये सब चीजों के पीछे हम इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हम अच्छी चीजों को ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि भाई यही सब चीजें जो हमें दबा रही हैं, और इन्हीं चक्कर में हम आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो थोड़ा सा सोच को बदलिए, सोच बदलोगे तो आपके इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो आपकी सफलता आपके सामने खड़ी होगी, है ना भैया। और मुझे लगता है अगर आप सही दिशा में प्रयत्न करोगे, सही दिशा में प्रयास करोगे, तो आपको एक ना एक दिन सफलता डेफिनेटली मिलेगी।
1: आनंद कभी अब तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अपने आसपास वालों को बदल दूं?
0: यार आसपास वालों को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को जरूर बदल लूंगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं भाई। बट हम सही काम करेंगे तो डेफिनेटली बदल सकते हैं यार,
1: बिल्कुल,
0: है ना। एक इंसान की सोच सब कुछ बदल सकती है, तो बस वही चीज है। बाकी अभी मैं और अखिल जी लेते हैं इजाजत, बहुत सारी ज्ञान और काम की बातें भी हो गई और फिल्मी शिल्मी वाली बातें भी हो गई, एंड जल्दी गुफ्तगू करने के लिए फिर किसी और मोड़ पर नए एपिसोड के जरिए आपसे रूबरू होंगे मैं और अखिल जी। तो अखिल जी जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ बिल्कुल आनंद, बस एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा मैं कि अगर खुद पर भरोसा हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी बन जाती है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कह दिया अखिल जी, और बहुत ही बड़ी बात ही है मुरादाबाद के युवाओं के लिए। बस यही एक प्यारा सा मेरी तरफ से भी संदेश रहेगा कि दोस्तों जिंदगी में ये मत सोचिए कि हर चीज परफेक्ट होगी, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। जब आप अपनी लाइफ में शुरुआत करते हो ना, वही सबसे पहला और सबसे बेहतरीन कदम होता है।
1: अपने साथ स्माइल रखनी है बस हमेशा।
0: करेक्ट, अपनी स्माइल के साथ आगे बढ़िए, नो स्ट्रेस नो टेंशन, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल हम भी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक अच्छे से गाने की तरफ प्रस्थान करेंगे, और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ढेर सारा पानी पीते रहिए, गर्मियां बहुत हैं। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए, और थोड़े से कूलर शूलर भी चला लीजिए।
1: कूलर तो पूरा ही चला,
0: मतलब हाँ भाई यार पूरा ही चला लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, बाय कर दीजिए आप भी,
1: बाय बाय। रेडियो बजाते रहो,
0: गुनगुनाते रहो, और सुनते रहो आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय
1: बाय।

0: विजिट करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ सुजाता स्मार्ट एनजीओ से, और मैं हूँ इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर RCHUP। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
4: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
3: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
4: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
3: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
4: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी ANM बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए, डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ OPV की वैक्सीन भी पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने JE का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल IPV लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग DPT की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजस रूबेला का बूस्टर डोज और JE की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो DPT वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
3: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को।
4: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया, जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है, डिप्थीरिया से बचाव होता है और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
3: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
4: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया और आसान तरीके से ऐसे समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है और उस खून जितना ही बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
3: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
4: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
3: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
4: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉइज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
3: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
4: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है, 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहां भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांतियां हैं तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
3: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या
0: में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के सेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
6: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
7: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
5: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
8: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1,00,000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में 2,500 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी समेत कई जगहों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
5: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
9: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
10: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य के CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
5: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
11: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, इसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
5: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
12: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई हैं और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंग नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
5: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: करे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: तो दोस्तों, इस याहू के अंदाज को सुनने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज हम बात किसकी करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त आरती कौर और आप जुड़े हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर, सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, 14 अगस्त का जो ये दिन है, ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा पन्ना है जब हमने उस सितारे को खो दिया था जिसने बॉलीवुड को डांस करना सिखाया। जी हाँ, आज बात करेंगे उसी अदाकार की जिनके आते ही पर्दे पर बिजली सी कौंध जाती थी, जिनकी
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। और देखिए, मैं कहीं नहीं आती हूं महिला मंच शो में, मेरे साथ आरजे खुशी भी आती है। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। तो इस महिला मंच शो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ना भी कहना जरूरी होता है। अक्सर हम यही करते हैं ना कि हम दूसरे को खुशियों के लिए हमेशा जब भी वो कुछ काम बोलता है हम हाँ कर देते हैं। लेकिन देखिए, हाँ करना भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी ना आपको जब लगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, वहाँ पर मुझे ना बोलना है, तो वहाँ पर ना बोलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो ज्यादा अच्छे आप बनोगे ना, तो उतने अच्छे तरीके से चक्की में पीसे भी जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा भी बनना जरूरी नहीं है, उनके साथ अच्छे रहिए जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो आप जब भी बोलते हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं। उनके लिए तो भैया देखिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, उनके साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। और कभी कभी हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को दुखी कर बैठते हैं। किसी ने मदद मांगी, हमने हाँ कह दी। किसी ने अपना काम हमारे ऊपर डाल दिया, हमने कहा कोई बात नहीं कर लेंगे। मन नहीं था फिर भी किसी की बात मान ली, थक गए थे फिर भी किसी के लिए समय निकाल लिया। और जब अपने लिए कुछ करने की बारी आई तो हम खुद से ही कह देते हैं अभी नहीं बाद में। लेकिन श्रोताओं, आज के इस महिला मंच शो में आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारी प्यारी बहनें हैं, सो देखिए काम करना जरूरी है हर किसी के लिए। जब भी कोई काम बोले आप करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना खुद के लिए टाइम निकालिए और कभी कभी ना बोलना भी सीखिए। क्योंकि अक्सर लड़कियां महिलाएं होती हैं, वो ना नहीं बोलती है, हमेशा काम के लिए तैनात रहती है, जिसने बोला काम करो तो कर देती है। लेकिन कभी कभी आपको अपने लिए डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है।
1: साथियों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और क्या हर बार हाँ कहना हमें अच्छा इंसान बनाता है, या फिर कभी कभी अपने लिए ना कहना भी जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, हर हाँ रिश्ता नहीं बचाती और हर ना रिश्ता नहीं तोड़ती। कभी कभी एक छोटा सा ना आपको खुद से दोबारा जोड़ देता है। तो आज बात करेंगे दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को पीछे छोड़ देने की। बात करेंगे अपनी सीमाओं की, अपने मान की, और अपने लिए ना कहना सीखने की। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला मंच, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे खुशी। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, हर किसी को खुश करने से पहले एक बार खुद से भी पूछेंगे, क्या खुशी, क्या तू खुश है? एंड एक बार आपका जो भी नाम है, आप खुद से पूछिएगा कि क्या आप खुद से खुश हैं? आखिर ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, ना सिर्फ दो अक्षर का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे बोलना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है सामने वाला बुरा ना मान जाए, उसे लगेगा कि हम स्वार्थी हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो शायद रिश्ता खराब हो जाएगा। और डर में हम अपनी इच्छा के खिलाफ बार बार हाँ कहते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूसरों की हर उम्मीद पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप भी थक सकते हैं, आपका भी मन नहीं हो सकता है, आपके पास भी समय कम हो सकता है, और ये सब बिल्कुल सामान्य है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एवरीवन, आप आखिरी बार कब सिर्फ इसलिए हाँ बोले थे क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला बुरा ना मान जाए? और अगर आप उस समय ना कह देते तो क्या होता? मुझे अपने संदेश जरूर भेजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896।
0: तो देखिए श्रोताओं, अब हम बात करेंगे अच्छा इंसान बनने की गलत परिभाषा। हमारे मन में बचपन से ही एक बात बैठा दी जाती है, अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात, अच्छी बेटी वही है जो सबके काम आए, अच्छी पत्नी वही है जो सबको खुश रखे, अच्छा दोस्त वही है जो हर समय उपलब्ध रहे। लेकिन क्या ये सच है? अगर आप हर किसी के लिए मौजूद है लेकिन खुद के लिए कभी कोई मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में संतुलन लाने की जरूरत है। अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहे। अच्छा इंसान होना और खुद को भूल जाना दो अलग बात। और घर वाले तो अक्सर हमें सिखाते हैं कि हमेशा एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के लिए खड़े रहो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप उनके साथ खड़े रहो, उनको साथ दो जो आपके साथ, जैसे आप किसी के लिए एक बात पर खड़े हो जाते हो, बोलते हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम करूंगी, तो जो बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, सामने वाला भी आपको वैसा रिप्लाई दे और आपके साथ वैसा ही रहे, तो बिल्कुल आप भी उनके साथ वैसा ही रहे, वैसा ही व्यवहार करें जैसा सामने वाला करता है। और कभी कभी हर विमनिया को ना भी कर देना चाहिए। शाम होते ही सुबह से लेकर शाम तक किचन में लगी रहती है, भाई कुछ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन कभी अपने पसंद के कुछ नहीं बनाती है। तो कभी कभी ना करके ये बोला करिए कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, बाहर एंजॉय करके आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी जिंदगी जीने का मौका मिले, बाहर घूमने का मौका मिले। और बाहर घूमने का ये सबसे आसान तरीका है कि शाम के खाने के लिए ना कर दो, आज खाना नहीं, आज बाहर खा के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं, तो देखिए आपको भी टाइम मिलेगा और अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगी और बाहर के नजारे हैं, जो बाहर की देश दुनिया है, आप उसको भी एंजॉय कर पाएंगी, क्योंकि चार दीवारी में रहना और भाई थोड़ी सी घुटन भी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, तो उससे थोड़ा बाहर निकलिए, ताजगी हवा लीजिए और अपने जीवन को एंजॉय करिए। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पे श्रोता एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ, एक बहुत ही शानदार गाना आप सभी के लिए है, तो इस गाने को एंजॉय करिए।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं महिला मंच शो। मेरे साथ आरजे खुशी भी है। सो अब मैं बात करने वाली हूँ, ना स्वार्थ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अपने लिए ना कहना स्वार्थ, लेकिन नहीं। अगर कोई आपसे कहता है आज मेरे साथ बाहर चलो और आपका मन नहीं है, तो आप प्यार से कह सकते हैं आज मेरा मन थोड़ा आराम करने का है। हर किसी और दिल मिलते हैं, इसमें स्वार्थ कहाँ है। अगर कोई आपसे ऐसा काम करने को कहता है जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप कह सकते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है कि बाद में करूँगी या फिर कर दूंगा। क्योंकि देखिए, जब आपका मन ना हो ना कोई काम करने के लिए और आप उसको जबरदस्ती करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो काम आप बेटर कर ही नहीं पाएंगे। आप बोल सकते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपका जो काम है वो कर दूंगी। शायद आप और बेटर उस टाइम कर पाए। और जब मन नहीं होता किसी काम को करने के लिए, तो आपका वो सारा काम गलत ही होता जाता है। आप उसको खुद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो कहीं और रहता है। बॉडी थकान हो चुकी होती है, तो वो आपसे आराम मांगती है, तो उसको आराम दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप उस काम को कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं खुशी से जानना चाहूंगी, कहाँ हो भैया तुम? बातें सुन रही है भैया, लड़के चुप चुप के। अरे बोलो भाई, तुम भी कुछ?
1: हाँ, मैं आपकी बातें सुन रही थी। बहुत ही अच्छे से आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करती हूँ, पहले आपको सुन लेती हूँ। और दोस्तों, मैं भी आपसे कुछ एक छोटा सा संवाद शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको ना कहने के बाद अपराध बोध होता है? मतलब आपने किसी को मना तो कर दिया, लेकिन बाद में मन में बार बार चलता रहता है शायद मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी। ये मेरे साथ होती ना, मैं
0: हाँ, मेरे साथ भी होता है।
1: मुझे लगता है कि यार मैंने क्यों ना बोल दिया, मुझे हाँ बोलना
0: चाहिए। और वो मुझे लगता है कि वो पूरा दिन हमारे दिमाग में घूमता रहता है।
1: हाँ।
0: सामने भी जब जाते हैं ना उसके पास, तो मैंने कहा यार क्या सोच रहा होगा ये, क्या सोच रही होगी।
1: सेम सिचुएशन होती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, आज का हमारा महिला मंच बहुत खास है आपके लिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है मीरा की। मीरा एक बहुत ही होनहार लड़की थी। घर में सबकी मदद करना, दोस्तों के काम आना, ऑफिस में दोस्तों का काम कर देना, मीरा के लिए सब सामान्य था। उसकी एक आदत थी, वह किसी को ना ही नहीं कह पाती थी। ऑफिस में कोई कहता मीरा मेरा ये काम कर दो, वह कहती हाँ। दोस्त फोन पर कहते मीरा मेरे साथ बाजार चलूंगी, मीरा बोलती हाँ चलूंगी। घर में कोई कहता आज ये काम तुम कर देना, मीरा कहती हाँ मैं कर दूंगी। धीरे धीरे मीरा थकने लगी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। एक दिन वह बहुत थकी हुई घर लौट कर आई। उस दिन उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? मीरा ने कहा कुछ नहीं माँ। माँ ने मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं नहीं बहुत कुछ है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा माँ मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए बर्या

कि तुम क्या चाहती हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन ऑफिस में एक साथी ने फिर अपना काम मीरा को देते हुए कहा, मीरा ये भी काम कर देना मीरा प्लीज। मीरा कुछ सेकंड चुप। पहली बार उसने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिएगा, आज मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। बस इतना ही कहा सामने वाला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुनिया खत्म नहीं हुई, बड़ा रिश्ता नहीं टूटा, ऑफिस बंद नहीं हुआ। मीरा को बस पहली बार महसूस हुआ, अरे मैं मना कर सकती हूँ। उस दिन के बाद मीरा ने हर बात पर ना कहना शुरू नहीं किया। जहाँ सच में जरूरत है वहाँ मदद करो, लेकिन जहाँ आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा हो वहाँ अपनी सीमा तय करो। और दोस्तों, मीरा की जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव तब आया जब उसने दूसरों को खुश करने से पहले खुद को भी इम्पोर्टेंस दी, खुद को भी महत्व देना शुरू किया। तो दोस्तों, अभी मिलते हैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। लौट कर आते हैं हम आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है महिला मंच, जहां पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। अक्सर क्या होता है ना, हमारी जो मेल्स होती है ना, जैसे रीना ने भी आपको बताया दोस्तों कि वो कभी लड़कियां भी ना बोलती ही नहीं है, हमेशा हर काम के लिए हाँ ठीक है मैं कर दूंगी। और मीरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आगे क्या हुआ है सब आपको बताऊंगी अभी एक प्यारे से गाने के साथ।

क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। अपने तो अपने होते हैं, सच में अपने तो अपने ही होते हैं। फिलहाल इस महिला मंच में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जो बात है वो शुरू यानी कि जारी रखते हैं। रिश्तों में ना क्यों जरूरी है, अब एक बहुत जरूरी बात। कई लोग सोचते हैं कि ना कहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन जो रिश्ता आपके एक सम्मानजनक ना होकर स्वीकार ना कर सकता, उस रिश्ते में कभी ना कभी संतुलन की जरूरत है। सच्चे रिश्ते में आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आज मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मैं इस तरह बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए और सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करे। यही स्वस्थ रिश्ता होता है, क्योंकि जो आपकी बात समझे, जो आपका अहमियत करे, मुझे लगता है कि वो रिश्ता सबसे बेस्ट होता है। और रिश्ता वो नहीं कि जो आपने हाँ कहा वो टूट गया और उसने अगले ने सोचा कि यार इसका तो यही काम है, ये ना कर देती, इसे बोलना ही बेकार है, आज के बाद मैं इसे कुछ काम बोलूंगा ही, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। मुझे ये लगता है वहाँ पर आपको ना करना बहुत जरूरी। जो इंसान आपको समझता है, जिस रिश्ते में आपको समझा जाता है, सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, वो आपको समझेगा, वहाँ पर आपकी बातें अच्छे से सुनी भी जाएगी, तो वो रिश्ता हमारे लिए बेस्ट होता है। ना कि ना कहा और टूट गया, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है। सो महिलाओं के लिए यानी कि खास बात क्या है, जो आजकल की हमारी प्यारी विमेन है उनके लिए खास बात क्या है, और आज की ये बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो घर में सबकी जरूरत समझती हैं, सबके खाने का ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं, सास ससुर का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कहती हैं मेरे लिए क्या। याद रखिए, आप घर की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आपकी अपनी पसंद है, आपका अपना समय है, आपके अपने सपने हैं, घर वालों की देखभाल कीजिए, लेकिन खुद की देखभाल भी उतनी जरूरी है। अक्सर महिलाएं इस चीज को अवॉइड करती है, उनको अगर थोड़ी तबीयत भी खराब होती है ना तो बस एक ही बात कहती है, यार ठीक है दवाई लेके ठीक हो जाएगा, क्या ही जरूरत है, वो दवाई लेके दो एक दिन के लिए ठीक भी हो जाता, फिर से उनके साथ यही होता है। तो मुझे लगता है कि खुद के लिए कदम बढ़ाइए, आप अगर आप स्वस्थ रहेंगी ना तभी आप परिवार वालों को भी खुश रख पाएंगी। अगर आप

0: पड़ेगा। अगर आप उनको ना कहना नहीं सिखाते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम बच्चों को अक्सर कहते हैं बड़ों की बात मानो, लेकिन हमें उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई उन्हें ऐसी बात के लिए मजबूर करे जिसे वो असहज महसूस करे तो वो साफ शब्दों में ना कह सके और किसी भरोसेमंद बड़े को बता सके। ना कहना सिर्फ व्यक्तित्व की बात नहीं, कई बार ये अपने सुरक्षा सम्मान की बात भी होती है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ अच्छा बच्चा बनो मत सिखाइए, ये भी सिखाइए अपनी बात कहना भी जरूरी है। क्योंकि अक्सर जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि हाँ बोलो हाँ बोलो, तो कभी कभी एक ऐसा अनजान व्यक्ति भी सामने आ जाता है जिसको नहीं जानता है बच्चा, और फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, वो ले लेता है और हमें नहीं पता उसमें क्या मिलावट है क्या नहीं मिलावट है और बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि रास्ते में अकेले भी आते हैं, तो ऐसी जगह पर यानी कि बच्चों को ना कहना भी सिखाना चाहिए कि जो अनजान व्यक्ति है जिसको नहीं जानते हैं उनको आप ना बोलो। अगर उनके साथ भी अगर आप बोलते हो तो आजकल आप सभी को पता है कि कितना स्कैम चला हुआ है, बच्चे के साथ भी धोखाधड़ी होती है, तो बच्चों को ना कहना सिखाइए और उन्हें ये भी सिखाइए कि जो अब आपके साथ अनजान व्यक्ति आता है तो उसे कम बात करें। और साथ ही साथ कोई अजनबी व्यक्ति आपके बच्चों को खाने के लिए कुछ दे रहा है और उसे कह रहा है कि बेटा चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, वैन में छोड़ देता हूँ, तुम पैदल चल रहे हो धूप में ना, तो वहाँ पर बच्चों को सिखाइए कि वहाँ पर आपको ना बोले। और सबसे बड़ी बात, बच्चे बाहर जाते हैं और बच्चे लालच में भी आ जाते हैं, बच्चे होते दिल के सच्चे, वो उनको लालच मिल जाता है कि चलो मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ कुरकुरे देता हूँ तो ले लो और खा लो और मेरे साथ चलो, तो बच्चे चल भी देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सावधान करिए, जो घर वाले दे रहे वो खाओ लेकिन जब आपको बाहर दिया जा रहा है तो मत खाओ। और कोई भी कहता है कि दो कदम पर मेरे साथ चलो तो वो भी आपको ना कहना है, वहाँ पर बच्चों को सिखाइए, ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत जरूरी।
1: क्या बात है रीना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है, कोई अजनबी पर्सन उनको मिल रहा है तो उनसे कोई चीज ना ले और उनके साथ कहीं भी ना जाए, क्योंकि बच्चों को सुनना बहुत जरूरी होता है, बच्चे बड़े मासूम होते हैं। और बच्चों को ना ये भी बताइए आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपने घर का एड्रेस, पूरा डिटेल्स में पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीजें बच्चों को याद करवाइए ताकि बच्चा कभी ऐसे सिचुएशन में अगर हो फंस जाए, कभी ऐसी कंडीशन मैं तो कहूँ कि ना आए लेकिन कभी ऐसा हो तो बच्चों को अगर सारी चीजें याद रहे तो वो अपनी फैमिली को कॉन्टेक्ट कर सकता है एंड अपने सही अपने डायरेक्शन पर वो पहुँच सकता है।
0: और साथ ही साथ बच्चों को ये भी सिखाइए बैड टच और गुड टच।
1: हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत मोस्ट था क्योंकि चलो हमने बहुत सारे बच्चों के ऊपर बातें की है और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम थोड़ा सा ना फन भी करने वाले हैं, थोड़ी सी मस्ती भी करने वाले हैं, थोड़ा फन एक्टिविटीज हो जाए ना एवरीवन। तो चलो रीना मैं तुम्हारे साथ एक मजेदार गेम खेलती हूँ, ठीक है? चलो रीना हम ना एक मजेदार गेम खेलते हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दूंगी जिसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है,
0: ठीक है?
1: और वो भी प्यार से, ठीक है? तो पहला सवाल मेरा ये है, आप बहुत थकी हुई हो और दोस्त आपसे कहें कि चलो आज पार्टी करते हैं, तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: अगर वो मेरे खास होंगे तो हाँ, अदरवाइज ना।
1: चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास पहले से ही बहुत काम है और कोई अपना आपको भी अपना काम दे दे तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: ना।
1: चलो तीसरा सवाल, कोई आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा लेकिन आप सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए चुपचाप हैं, क्या यहाँ हमेशा हाँ सोचेंगी या आपने जवाब ना? ओके, इन्होंने सवाल से पहले ही जवाब दे दिया।
0: तुम क्या कहना चाह रही हो?
1: ठीक है,
0: आगे पूछो।
1: अरे वाह क्या बात है, रीना तो हर सवाल का राइट आंसर दे दिया है, राइट आंसर दिया है, और ये तो हमारे आज महिला मंच की बन गई है क्वीन, तो उनके लिए जोरदार तालियां। बड़ी खुशी होती है ना जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है।
0: हाँ।
1: ना कैसे कहें ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है दोस्तों? अब सबसे जरूरी बात, अगर ना कहना है तो कैसे कहें, क्योंकि ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को अपमानित करें, आप प्यार से कह सकते हैं मुझे माफ कीजिएगा मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगी, या मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन इस बार मेरे लिए संभव नहीं है।
0: मतलब वही बात है ना, मुस्कुरा कर कहनी है, गुस्से में नहीं कहनी।
1: हाँ सिचुएशंस, और अभी मुझे थोड़ा अपने लिए समय चाहिए बस। तो चलिए एवरीवन मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में नई बातों के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा हमें जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए और सभी अपना ख्याल रखिए।

0: मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका, द हाउस ऑफ राधिका। एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अगर

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, मैं आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर हूँ, आपकी दोस्त आरजे खुशी, हेलो फरमाइश, जहाँ पर हम करेंगे ढेर सारी बातें, बहुत सारा फन एंड सुनेंगे आपके पसंद के गाने। तो आप अगर सुनना चाहते हैं अपना फेवरेट कोई भी ट्रैक जो आपका दिल चाहता है, तो उसके लिए आप जल्दी से हमें कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत अच्छा है, आप कैसे हैं मैडम?
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं, बताइएगा अपने बारे में और अपना नाम भी बताइए।
1: मैं कश्मीर सोनम मरग से, आप इंग्लिश होता लेकिन फॉर्मेट रहना।
0: जी बताइएगा, कश्मीर का मौसम कैसा है सर?
1: बस ऐसा ही क्लाउड है मौसम, कभी धूप कभी बादल, ऐसा ऐसा रहता है यहाँ।
0: अच्छा अच्छा, ओके। बारिश वगैरह नहीं हुई है वहाँ पर?
1: होता रहता है, कभी दिन में आता है दो बार बारिश, एक घंटे दो घंटे, तो फिर रुकता है, फिर गर्मी हो जाता है।
0: ओके, बारिश होती है फिर ब्रेक लेती है फिर धूप आ जाती है।
1: जी ऐसा ही मौसम है, अभी भी कभी धूप आता है कभी बारिश पड़ता है।
0: ओके, तो बताइए सर, आज आपने कार्यक्रम में हमें कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: का नाम है परदेश।
0: हाँ जी,
1: माई लव इंडिया।
0: ओह वाओ, बहुत प्यारा ट्रैक आप सुनना चाहते हैं।
1: हाँ जी।
0: और कुछ कहना चाहते हैं आप कल स्वतंत्रता दिवस है?
1: बस उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
0: ओके ठीक है सर, धन्यवाद आपने कॉल किया। सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको।
1: धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो एवरीवन, चलिए सुन लेते हैं आई लव माय इंडिया, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक। उसके बाद करेंगे आपसे बातचीत। आप भी मुझे जल्दी से कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 9.6 पर। आरजी खुशी है आपके साथ और बाहर का मौसम सच में बहुत ही खूबसूरत है। एंड कई शहरों में आज बारिश हो रही है। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा ट्रैक चुपकी चुपकी मूवी से, चुप चुप के एंड सोनू निगम जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। और दोस्तों, आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। इस नंबर पे कॉल लगाइए और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाइए। और साथियों, हम आपको समय भी बता देते हैं। वक्त हुआ है अभी 3:21 राइट नाउ। और जब तक आप हमें कॉल करते हैं तब तक हम आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना। क्योंकि इस समय अभी आप अगर गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हो ना, तो होले होले ड्राइव कीजिएगा एंड केयरफुली गाड़ी चलाइए और ये गाना सुनते जाइए। फ्रॉम द मूवी गदर 2 से, मैं निकला गाड़ी लेके तो से गाड़ी लेकर चलो, लेकिन ध्यान रखते हुए, ठीक है, सुरक्षित गाड़ी चलाइएगा और ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: सेलिब्रेशन कोई भी हो, वेन्यू होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
1: ड्रीम वेडिंग, ग्रैंड कॉर्पोरेट इवेंट या मेमोरेबल बर्थडे, वेलकम टू देवशाह जंगल रिजॉर्ट, जिम कॉर्बेट, रामनगर, नैनीताल।
0: जहां नेचर की खूबसूरती मिले वर्ल्ड क्लास लग्जरी के साथ, प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट, 120 प्लस रूम्स एंड स्पा।
1: देवशाह जंगल रिजॉर्ट, वेयर नेचर मीट्स लग्जरी। फॉर मोर डिटेल्स कॉल ऑन व्हाट्सएप ऑन 9258253082।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर, नियर चड्डा सिनेमा।
5: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून आप सभी का। वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ और आप भी बहुत ज्यादा खुश हैं आज। क्या रीजन है बताइए। ओहो हो, मौसम सुहाना है इसलिए हैप्पी है कि परसों बहुत ज्यादा गर्मी थी, राइट ना? और जब मौसम सुहाना क्यों ना हो एवरीवन, सावन का इतना पावन महीना जो है। और देखिए वक्त अभी हुआ है 3:28 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और अभी आपने एक शानदार सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी गदर 2 से, मैं निकला गड्डी लेके। देखिए ऐसे तो गड्डी लेके कितने भी नहीं जा रहे हैं, हम अभी बैठे हैं स्टूडियो में। एंड अगर आप गड्डी लेकर जा रहे हो ना, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आराम नाल गड्डी चलाओ तुसी, ठीक है? और सीट बेल्ट जरूर बांध दीजिएगा और चेहरे की मुस्कुराहट को बिल्कुल भी कम मत होने दीजिए। तो चलिए अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं अभी। हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ रुद्रपुर से।
0: उमा शंकर जी बात कर रहे हैं रुद्रपुर से, बताइएगा सर कैसे हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया, बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई आज।
0: अच्छा आज बहुत ज्यादा बारिश हुई है, अभी कैसा मौसम है वहाँ का?
1: बहुत बहुत बारिश हुई, अभी तो फिलहाल है लेकिन बादल लगा हुआ है।
0: अच्छा बादल है, अभी बारिश नहीं है। तो बताएगा आज आपने कॉल किया है सर, एंड क्या सुनना चाहते हैं आज आप, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मेरे फरमाइश है बर्थडे स्पेशल।
0: ओके तो आज किन का बर्थडे है बताइए हमें।
1: हमारी लड़की अवंतिका सिंह का बर्थडे आज है।
0: अच्छा आज आपकी डॉटर अवंतिका का बर्थडे है
1: जी।
0: अरे वाह, हमारी तरफ से अवंतिका को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो कोई गाना आपने डिसाइड किया या फिर हम अपनी तरफ से प्ले करें?
1: आप सुनवाएंगे अपनी तरफ से।
0: ओके तो ठीक है, हम अवंतिका को अपनी तरफ से एक प्यारा सा बर्थडे स्पेशल सॉन्ग डेडिकेट करते हैं। आपने हमें कॉल किया उसके लिए थैंक यू सर। आपको भी नमस्कार। तो चलिए एवरीवन, अवंतिका को हम डेडिकेट करते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक और लौट कर आते हैं। तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गन गनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस खुशी अभी वापस आती है इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का आरजी खुशी स्वागत करती है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये शानदार सा गाना पति स्पेशल सॉन्ग। फ्रॉम द मूवी दूर की आवाज जो 1964 में आई थी। और अभी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: हाँ जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आपको भी नमस्कार। अपना नाम बताइएगा।
1: जी मैं रईस अहमद बोल रहा हूँ, लालू वाला से।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, बारिश का।
0: जी जी जी, बारिश हो रही है अभी।
1: हाँ बारिश हो रही है।
0: जी जी, तो बताइए सर आज क्या सुनेंगे आप?
1: आज गाना है हातिम भाई फिल्म का, मेरे मालिक है, मेरे दाता है, मेरे परवरदिगार।
0: ओके ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवा देते हैं। हाँ जी बोलिएगा।
1: ठीक। और ये हमारे बच्चे हैं कुछ, अब्दुल कादिर है, नाजिर है।
0: ओके।
1: और फैजान है, रियान है।
0: ठीक है सर, आपके परिवार के साथ सुनवाते हैं शानदार से गाना।
1: ठीक है जी, ठीक है।
0: तो चलिए सुन लेते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद लौट कर आएंगे। तब तक आप भी जल्दी से कॉल लगाइए बिना किसी देरी के। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: क्रूसेड ब्रेक के बाद हम लौट कर आ चुके हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ और शो का नाम है हेलो फरमाइश, जहां पर आप अपने पसंद के गीत सुनते हैं। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून आपको भी सर। क्या नाम है आपका?
1: मैम शेरपुर माफी से सारी मंसारी बात कर रहे हैं। क्या हाल चाल है आपके?
0: बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइएगा आप कैसे हैं और आपके परिवार में सब ठीक है?
1: मैम हम बढ़िया, हमारे परिवार में सब बढ़िया। बहुत लंबे समय बाद बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है।
0: जी हाँ, काफी समय की बात आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बताइएगा कैसा मौसम है आपके साइड सर?
1: हमारे यहाँ सुबह 6 बजे से बारिश पड़ी थी 11 बजे तक।
0: अच्छा,
1: अब मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, अच्छा हो रहा है मौसम।
0: ओके, बारिश रुक गई है लेकिन मौसम ठीक है।
1: हवा चल रही है,
0: हवाई
1: बढ़िया
0: चल
1: है।
0: ओके।
1: कल बहुत गर्मी थी।
0: अच्छा तो बताइएगा आप क्या सुनेंगे सर?
1: मैं आज बहुत लंबे समय के बाद बात हो रही है, तो आज गाना हमने सुना, आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है।
0: ओके हाँ ये तो है, जब कॉल लग जाता है तो ऐसी फीलिंग्स आती हैं।
1: वही तो, असल में काफी लंबे समय में बात हो रही है, मोबाइल फोन नहीं था ना हमारे पास, अब मोबाइल फोन अपना ले लिया तो FM डाउनलोड कर लिया।
0: अरे वाह, कैसा लग रहा है न्यू मोबाइल आपको मिला है अपने लिए है?
1: बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। और न्यू न्यू चैनल भी सुना है, काफी बदलाव हुआ है फिर मुरादाबाद में, बहुत अच्छा लगा हमें।
0: हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। तो
1: ओके
0: सुनवाते हैं गाना आपको।
1: ओके मैम, थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, हम सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक सर की पसंद का, और आप भी सुनना चाहते हैं कोई अपनी पसंद का गाना तो जल्दी से कॉल लगाइएगा आप। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: क्या बात है, इतना ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुनाया फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और इतनी खुश हमारी नेक्स्ट कॉलर भी है जो हमारे साथ कनेक्ट होने वाली है, अभी मतलब कनेक्ट हो चुकी है, लाइव उनसे बातचीत करेंगे। वो भी बहुत ज्यादा खुश है और उनकी खुशी का रीजन क्या है वो हम उन्हीं से जान लेते हैं। लेकिन ये अभी आपने प्यारा से गाना सुना श्रेया घोषाल जी की बहुत ही प्यारी आवाज में। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: हाँ जी नमस्कार सर,
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान बात कर रहा
0: हूँ। जी बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। आपकी डॉटर किधर गई?
1: डॉटर है, बात करने को कह रही थी आप।
0: हाँ वही मैं कह रही थी ना कि इतने ज्यादा वो खुश थी, इतना एक्साइटमेंट था उनके अंदर, वो हंस रही थी पापा मैं कैसे बात करूंगी। तो बात कराइए उनसे। हाँ जी
2: गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो डियर?
2: अच्छा।
0: क्या नाम है आपका?
2: माय नेम इज फायजा नाज।
0: फायजा नाज, ओके। तो फायजा आप इतना क्यों शर्मा रहे हो? हाँ घर में तो आप बहुत ज्यादा बातें करते हो सबसे, तो हमसे भी ऐसे ही बात कर सकते हो, ठीक है? और बताइए फायजा, आज क्या सुनना चाहते हो आप? ये आपका फेवरेट ट्रैक है?
2: यस।
0: ओके, तो आप डांस करने वाले हो?
2: यस।
0: हाँ तो फिर ठीक है, हम ये ट्रैक प्ले कर देते हैं, आप तैयार हो जाइए डांस करने के लिए, ठीक है?
2: थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम फायजा। देखिए बच्चों की खुशी में ना पेरेंट्स की खुशी होती है, और जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो पूरा घर खिलखिला उठता है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, या फिर आप किसी दोस्त को कोई भी ट्रैक डेडिकेट करना चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के दिल खोल कर कॉल लगा सकते हैं आप। मैं इंतजार कर रही हूँ और सुनिएगा अभी फिलहाल ये प्यारा सा ट्रैक।

थोड़ा खून बहा कर तो देखो, मैं लिख रहा ये गाने, ये मैंने, ये खुदा की मेहर है। अंधेरे के बाद फिर से आनी सवेर है।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और देखिए, समय हुआ है राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में 4 बज चुके हैं और हमारे साथ हमारे दूसरे घंटे के कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: हम बिलारी से बोल रहे हैं, संसार अंसारी
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सर?
1: बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइए।
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं। कब से ट्राई कर रहे थे आप कॉल लगाने का?
1: भैया आधा घंटा हो गया करीब।
0: ओके, तो कॉल लगा है, कैसे लग रहा है आपको बताइए? आधे घंटे से आप प्रयास कर रहे थे।
1: बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी मैम बोल रही है क्या?
0: हाँ जी, मैं खुशी बात कर रही हूँ।
1: आपसे हमारी मुलाकात हुई थी मंसूर कॉलोनी में।
0: हाँ जी हाँ जी, याद है मुझे, आपसे हमारी मुलाकात हुई थी सर जी। बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: हमको गाना सुना दीजिए, फिल्म दो प्रेमी का।
0: हाँ जी,
1: मौसम पे जवानी है।
0: ओके, और ये गीत आप किनके साथ सुनना चाहेंगे?
1: ये हमारे एक अजीज हैं, ये मंसूर कॉलोनी से ही, इरशाद अंसारी।
0: इरशाद हुसैन अंसारी जी?
1: जी जी, और हमारे सारे सुनने वाले।
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ जी।
1: मेरे साथ में दो चार, नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, लेकिन जरा हमारा नाम मत लो, ऐसे टाइम ज्यादा हो जाएगा।
0: हाँ जी हाँ जी, अरे वाह, अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट दोस्त हैं आपके, देखिए सब चीजों को समझते हैं
1: जी।
0: जी तो सुनवा दीजिए सर ये प्यारा सा गीत। आपने हमें कॉल किया, उसके लिए शुक्रिया। आप अपने दोस्तों के साथ ये खूबसूरत से गाने एंजॉय कीजिएगा और बस मैं वापस आने वाली हूँ लौटकर इस प्यारे से गाने के। इस बार आपका भी कोई भी गाना सुनने का मन है ना, तो आप कॉल लगा सकते हैं मुझे

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और ये खूबसूरत से गाना अभी आपने सुना आशा भोसले साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की बहुत ही प्यारी आवाज में। म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के, फ्रॉम द मूवी दो प्रेमी जो 1980 में आई थी। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं आज हमारे जो नेक्स्ट कॉलर हैं उनकी क्या पसंद है, उन्हीं से बात करके जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैं मदन।
0: हाँ जी, आपको भी आदाब, नाम बताइए अपना।
1: मैं निरालंदारी हो रही हूँ, करूँगा गुमटा मस्जिद से।
0: जी बताइएगा, कैसी हैं आप सब?
1: बहुत बढ़िया है, और आप बताइए कि आप कैसी हैं?
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: देश प्रेमी फिल्म का गाना सुनना है, आपस में देश करो,
0: आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों, है ना?
1: हाँ, और हमारे यहाँ ये 15 अगस्त कल है
0: जी,
1: और सब लोग हम 15 अगस्त मिलकर मनाते हैं।
0: हाँ
1: चौराहे पे हम मनाते हैं, बड़े बड़े लोग मोहल्ले के।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: एक दूसरे के गले में हार डालते हैं, वो तिरंगा लहराते हैं, अपने दुकानों के आगे लगाते हैं और घरों पर लगाते हैं।
0: जी बहुत अच्छा काम करते हैं
1: आप, मनाते हैं
0: जी, मिलजुल कर ही
1: हाँ।
0: जी मिलजुल कर ही मनाना चाहिए आजादी का पर्व महोत्सव, और सब आपस में सबको प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि हम सब एक ही हैं, और मुझे लगता है कि किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
1: जी सही बात है।
0: जी तो बताइएगा आप क्या सुनेंगे आज सर? अच्छा ठीक है, तो आप किन के साथ गाना सुनना चाहेंगे? कोई दोस्त हैं जिनका नाम लेना चाहते हैं? ठीक है सर, थैंक यू कॉल करने के लिए। और सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत, एंड दोस्तों उसके लिरिक्स कितने कमाल के हैं ना, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। और मुझे लगता है कि जब हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है ना हमारे आसपास का वातावरण, जैसे हम परिवार में एक साथ एकजुट रहते हैं वैसे ही ये हमारा इंडिया भी, हमारा भारत भी, हमारा ही अपना परिवार है, घर है, और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और खूबसूरत सा ये गीत सुनते हैं, उसके बाद आपसे भी बातचीत करेंगे।
2: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत मोहम्मद रफी साहब जी की बहुत ही प्यारी आवाज में, फ्रॉम द मूवी देश प्रेमी, जो 1982 में आई थी। और बात करते हैं अभी अपनी अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अजय सैनी।
0: जी बताइए, कैसे हैं अजय आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए, आप कैसे हो?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा जी, कैसे हैं परिवार में आपके यहाँ पर?
1: एकदम सब बढ़िया।
0: ओके, और मौसम कैसा है आपकी साइड का?
1: बारिश हो रही है इधर तो।
0: अच्छा, तेज बारिश हो रही है या हल्की बूंदाबांदी?
1: नहीं, हल्की हल्की हो रही थी, बूंदाबांदी।
0: अच्छा, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: हम सुनना चाहते हैं झुमका गिरावी बरेली की बाजार में।
0: अच्छा, तो उठाकर नहीं लेकर आए आप?
1: वो मिला था, वो शीर्षक हो गया, फिर हम सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कभी उसके जरिए से मिल जाए।
0: अरे वाह, क्या बात है अजी, सुपर। तो कुछ कहना चाहते हैं और बताइए हमें।
1: हाँ, मैं मोहम्मदपुर बटोल से अजय सैनी बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: और हमारे पापा हैं, हमारे पापा तरसिंह सैनी और मेरी सिस्टर है कौमसु सैनी, आसिफ सैनी।
0: ओके,
1: ये सब लोग सुनना चाहते हैं।
0: ठीक है, सभी के साथ सुनवाते हैं गाना। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: वेलकम।
0: तो चलिए ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं अजय सैनी की पसंद पर, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और ये ट्रैक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल भी है, तो चलिए सुन लेते हैं सब मिलकर।

0: दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ और ये है आपके अपने शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों, कुछ लोग अपने घरों में रहकर त्योहार मनाते हैं और कुछ ऐसे वीर होते हैं जो हमारी खुशियों की खातिर सरहद पर अपना आज कुर्बान कर देते हैं। हम चैन की नींद सो सकें इसलिए वो दिन रात भर जागते हैं एंड हम अपने परिवार के साथ रह सकें इसलिए वो अपनों से दूर रहते हैं। ऐसे हर वीर जवान को दिल से सलाम, जिनकी वजह से हमारा तिरंगा शान से लहराता है। और आप सुनते हैं, अपने अगले कॉलर से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आज वो क्या सुनना चाहते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? असम से बात कर रहे हैं। असम से बताइए, कैसा मौसम है सर वहाँ का?
1: गर्मी है, धुप हो रहा है, गर्मी ज्यादा हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा अच्छा, बताइएगा सर, कैसे हैं आपके परिवार में सब लोग?
1: जी मैम, मेरा परिवार में मेरा दो लड़का है और हम लोग दोनों चार आदमी हैं परिवार।
0: अच्छा, तो आप क्या करते हैं, बताइएगा अपने बारे में सर।
1: जी मैम, मेरा दुकान है, मैं दुकान में सिलाई का काम करता हूँ।
0: अच्छा, सिलाई का काम करते हैं आप?
1: जी मैम।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी यू नो स्किल्स भी है आपके अंदर। आप सिलाई करते हैं, डिजाइन के कपड़े बनाते हैं?
1: जी मैम, सिलाता
0: हूं। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप।
1: जी मैम, हमको सुना दीजिए लोकमुख का, उसमें देशभक्ति का गीत मेरा वतन, ये गाना सुनाइए।
0: ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और एवरीवन, समय हुआ है 4:35 और हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश
1: जी। मैम जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, क्या नाम है आपका?
1: मैम शिवा लोहा, एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ। आपका नेम है श्रोता
0: जी? बताइए शिवा, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ मैम। आपको और आपकी पूरी टीम को और सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मैम।
0: सेम टू यू सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। बताइएगा आज आपने हमें कॉल किया है, कैसा मौसम है एमपी का पहले ये बताइए हमें।
1: मैम बारिश लगी हुई है और मौसम सुहाना बना हुआ मैम।
0: सुहाना सा मौसम है, तो बताइए आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम मैं जिन लोगों ने शहादत दी उनको नमन करता हूँ
0: जी,
1: और जो वीर हमारी सेना पे खड़े हैं और जिनकी वजह से हम सारे कार्यक्रम और हम हमारे घर पे महफूज हैं, उन जवानों को भी नमन करता हूँ। और एक गाना रहेगा मैम, वीर यारा मूवी है उसमें एक गाना है, धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला,
0: देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला।
1: नहीं मैम, ये तो इसका है, फना मूवी का है, ये इसका है वीर यारा मूवी का।
0: वीर यारा मूवी का ऐसा देश है मेरा
1: जी।
0: ओके, तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद शिवा।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए शिवा की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी वीर ज़ारा से, एंड बहुत ही प्यारा गीत है, बिना किसी तरीके सुनते हैं।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका? सॉरी, क्या नाम बता रहे हो आप? हाँ, नाम बताइए अपना।
1: अलीसा।
0: ओके, बताइएगा। आप इतना मतलब नर्वस होकर बात क्यों कर रहे हो?
1: जी।
0: आप पहली बार बात कर रहे हैं क्या?
1: नहीं।
0: फिर आप इतना ऐसा घबरा कर क्यों बात कर रही हो? कहीं से दौड़ कर आई हो क्या अभी?
1: नहीं तो मैम।
0: अभी ठीक लग रहा है आपकी आवाज़, अभी नॉर्मल है। बताइएगा क्या सुनेंगे आज आप?
1: देश रंगीला रंगीला।
0: ओके, तो आप भी डांस करते हो? यस।
1: आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है।
0: थैंक यू। आपका क्या नाम है?
1: जी मैम, 15 अगस्त है ना।
0: हाँ, 15 अगस्त है। तो आप स्टडी करते हैं अभी? कॉलेज जाते हैं आप, स्कूल जाते हैं? बताइए।
1: नहीं मैम, हम तो जाते नहीं है।
0: अच्छा, पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो गई है?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए सुनवा देते हैं ये गाना। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप?
1: जी मैम, आप बात बहुत अच्छी सी करती हो।
0: धन्यवाद आपका, आपको पसंद आता है, शुक्रिया।
1: जी मैम।
0: जी, तो सुनवाते हैं गाना, आप इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ।
1: मैम आप घर पे आ जाना।
0: ठीक है, हम आ जाएंगे। बताइए कहाँ आना है? अच्छा,
1: धन्यवाद।
0: ओके, बिल्कुल, आप भी आइएगा हमारे फिर मुरादाबाद, आपका मोस्ट वेलकम है।
1: जी मैम।
0: जी, तो चलिए सुनिएगा एक खूबसूरत से गाना। जी, तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं ये प्यारा सा ट्रैक एंड लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896।

0: हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और बिल्कुल हमारा जो भारत है वो कलरफुल हो चुका है एंड चारों तरफ देशभक्ति का रंग सभी पर चढ़ा हुआ है। एंड अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार
0: जी, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं रमेश पात्र हूँ, बेतियनी चाय बागान डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट आसाम से।
0: आसाम से बात कर रहे हैं आप, बताइएगा कैसे हैं आप सब।
1: हम अच्छे हैं, और आप लोग?
0: हाँ जी, हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, इतनी दूर से आपने कॉल किया है आज, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं आज सुनना चाहूंगा, स्वतंत्रता दिवस है ना, उसी के लिए सुनना चाहूंगा
0: जी।
1: जहाँ पांव में पायल हाथ में कंगना है माथे पे बिंदिया, परदेसी बाबू मूवी का गाना है ये
0: जी, सुनवा देते हैं आपको।
1: और इस गाने को मैं स्वतंत्रता दिवस की सुबह अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए ये गाना आपको डेडिकेट करता हूँ। और मेरा रेडियो साथी है भाई कौन मुंडा, अमोल बसुमतारी, विमोल बसुमतारी, शिवा लोहार अभी फोन किया था।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: रमेश प्रजापति और सभी लिस्टनर को ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी जी जी सर, नमस्कार, धन्यवाद, आपने कॉल किया हमें। सुनवा देते हैं प्यारा सा गीत आपको भी। जी तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत, और इसी गीत के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। आप सभी श्रोताओं को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, एंड कल तीज फेस्टिवल है उसकी भी आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, टेक केयर, एंड हाँ स्माइल भी करते रहिए क्योंकि मुस्कुराते हुए आप सब बहुत प्यारे लगते हैं।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
6: उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि गांव की गलियों, खेतों, घरों और लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, और आज की कहानी है कानपुर देहात की। एक ऐसा जिला जिसकी पहचान गांवों की मिट्टी, खेती किसानी, मेहनत कश लोगों और बदलते ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। यहाँ की तस्वीर में परंपरा भी है और विकास की नई उम्मीद भी।
0: और यही बदलाव आज हमारी कहानी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का जोर इस बात पर है कि विकास की रफ्तार गांव तक पहुंचे और हर क्षेत्र को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: सड़क, रोजगार, स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं, यानी विकास की ऐसी तस्वीर जिसमें उत्तर प्रदेश के गांव भी नए उत्तर प्रदेश की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े।
0: यानी आज बात होगी विकास की कहानी आम लोगों की जुबानी।
1: तो चलिए चलते हैं कानपुर देहात के उस ग्रामीण परिवेश की ओर जहां बदलाव को महसूस किया जा सकता है, और सुनते हैं वहां के लोगों की अपनी कहानी।
0: उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि विकास की योजनाएं कागजों तक सीमित ना रहें, बल्कि उनका लाभ गांव, घर, परिवार तक पहुंचे। सड़क हो या रोजगार हो या स्वरोजगार, हर क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी मिले।
1: और यही सबसे अच्छी बात है कि जब किसी योजना का लाभ सीधे किसी परिवार तक पहुंचता है तो उसका

0: का असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उससे पूरा परिवार मजबूत होता है और आत्मनिर्भरता की राह आसान होती है।
1: तो अब सुनते हैं उस व्यक्ति की आवाज जिसने खुद इस बदलाव को महसूस किया है।
2: श्याम सुंदर कमल, ग्राम बखरिया, ढाकन सिवली से रहने वाला हूँ। मैं कानपुर में मिस्त्री टाइल पत्थर का काम करता था। अटेंडम एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया। बुखार में बच्चे अच्छे सब घबरा गए मेरे, तो उन्होंने मुझे लाद के डॉक्टर के यहाँ ले गए। तो डॉक्टर ने ये बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हम हृदय रोग संस्थान में एडमिट हो गए। वहाँ करीब जहाँ पे डॉक्टर ने जांच की तो उसमें उन्होंने बताया कि अटैक इनकी बीमारी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम खुद नए तो कम से कम 3-4 लाख रुपया लगेगा। हम 2-3 में पड़े रहे वहाँ पे, कुछ इलाज चलता रहा, जो घर का था सब खत्म हो गया, लाज गल्ला जो था वो भी सब बेच दिया। इसके बाद में मेरे पिताजी एक दिन देखने गए तो उन्होंने मुझे कागज दिखाया। तो वो कागज मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये तो आयुष्मान कार्ड वाला है, इससे आपका इलाज हो सकता है। तो उसी से मेरा फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, फेस में मशीन पड़ी, तब से आज तक मेरा वहीं से इलाज भी चल रहा है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो उन्होंने मेरी वक्त पे बुरे वक्त पे उन्होंने साथ दिया मेरा, मैं उनका दिल से आभारी हूँ।
0: सुना आपने, यही तो विकास की असली तस्वीर है, जब सरकारी प्रयास लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं तो योजनाओं का उद्देश्य भी सार्थक होता है।
1: और उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। गांव हो या शहर, किसान हो या छोटा कारोबारी, हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
0: साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
1: लेकिन हरी, ये बताइए, किसी योजना की सफलता को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
0: वो तो लाभार्थियों से पूछिए।
1: बिल्कुल सही। तो चलिए एक और लाभार्थी से जानते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया और सरकारी मदद ने उनके लिए किस तरह की नई संभावनाएं खोली।
3: मेरा नाम वंदना पाल है, मैं ग्राम तातमो खबरा की निवासी हूँ। मेरी एजुकेशन एमए है। मेरी शादी 2016 में हुई थी। 16 में शादी होने के बाद हम घर में ही रहते थे, जैसे घर का काम करते थे और हमें बाहर आना जाना नहीं होता था। 2022 में हमारे यहाँ ब्लॉक से कुछ दीदियाँ आईं जिन्होंने हमें समूह के बारे में जानकारी दी। हमने भी अपना समूह में जुड़ने का निर्णय ले लिया, जिसमें हम अध्यक्ष पद पे थे। मेरे समूह का नाम सागर महिला स्वयं सहायता समूह है। और क्या कहते हैं, 2 महीने बाद जब हमें समूह में जुड़ने के बाद 2 महीने बाद पता चला कि ब्लॉक में कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं, जैसे समूह सखी और बैंक सखी, ये सब निकली थी, जिसमें हमने बैंक सखी के पद पे फॉर्म डाला था, जिसमें हमारा 60 दिन की ट्रेनिंग आर शेट्टी अकबरपुर में हुई थी। उसके बाद हमको बैंक में 2022 अगस्त में हमको ज्वाइनिंग मिल गई थी। उसके बाद हम बैंक में आना जाना शुरू किया। वहाँ पे हम बैंक में रह के समूह की दीदियाँ, जैसे नए पंचायतों में खाते खुलते थे, बनते थे, उसमें हम उनके खाते खुलवाते थे। जब 6 महीने पूरे हो जाते थे उनका लोन पास करवाते हैं। ऐसे चलते चलते हम ब्लॉक में एक दिन गए तो हमें वहाँ पे पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के बारे में पता चला, जिसमें हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारा वो लोन भी पास हो गया और हमें 5 लाख का लोन मिला, जिसमें हमने किराने की दुकान की। ये पैसा हमको मतलब हाथ में नहीं मिला, इसके लिए जो हम सामान लाए उसके लिए मिला था। हम मतलब समूह में जुड़ के हमने काफ़ी कुछ किया। उसके पहले तो हम गरीब में रहते थे, अब हम भी अपना कुछ अपना खर्च निकाल सकते हैं अपने पैरों पे खड़े होके। हम तो सबसे यही कहते हैं सभी दीदियों से कि समूह में जुड़िए और समूह से लाभ उठाइए। मुख्यमंत्री युवा उद्यम के बारे में अगर हम भी नहीं जान पाते तो हम भी घर पे होते और बस वही थोड़ा समूह का काम करते होते। जब हमको इसके बारे में जानकारी मिली तो हमने ये अपना लोन करवाया और हम इसमें आगे बढ़े। हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी योजना ये शुरू की है, जिससे हम लोगों को, हम गृहिणियों को भी इसमें आगे बढ़ने के लिए लाभ मिल सकता है। जब ये हमारे यहाँ मेरे पास ये किराने की दुकान नहीं थी तो मेरे घर का खर्च मेरे पति ही चलाते थे। अब हम उनका हाथ बटा सकते हैं और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और हमारा जीवन कुशल पूर्वक है और शांति से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
0: वाह, इनकी बातों में सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि आगे बढ़ने का भरोसा भी सुनाई देता है।
1: और यही भरोसा उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा की ताकत है। सरकार की योजनाएं तभी प्रभावी बनती हैं जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और वो लाभ उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।
0: अब इस पूरे विकास कार्य से जुड़े अधिकारी से जानते हैं कि सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ रही है।
4: मैं विधान जायसवाल और मैं इस जनपद कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ पिछले लगभग 6 महीने से।
0: सबसे पहले सर श्रोताओं की ओर से जानना चाहेंगे कि जनपद कानपुर देहात में वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी प्रभावी योजनाएं संचालित हो रही
4: है। देखिए, शासन की विभिन्न योजनाएं हमारे जनपद कानपुर देहात में भी संचालित हैं और मुझे खुशी है कि विभिन्न जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं में लोगों को लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से हम देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगजन पेंशन, गरीब बच्चियों के जिनकी शादी नहीं हो जाती उनके लिए हमारे समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, शादी अनुदान योजना जिसमें उनको कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिसमें किसी अनटाइमली डेथ पे जो है कुछ सरकार जो है मदद करती है, इसी तरह पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है पूर्व दशमोत्तर, किसानों के लिए उनके सम्मान राशि के रूप में भारत सरकार के योजना के अंतर्गत किसान सम्मान निधि देते हैं, फसलों के लिए अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दैवीय आपदा राहत योजना, इसी तरह DBT के माध्यम से अगर पशुओं को भी आप रख रहे हैं तो उसमें भी तमाम योजनाएँ हैं जिसके अंतर्गत जो है लाभ पहुँचा रहे हैं। हर घर में नल हो, जल हो, उसके लिए हमारी ग्रामीण जो हमारी पाइपलाइन सप्लाई है उसके अंतर्गत है। इसके अलावा भी हमारी एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो पहले आप लोग जिसको नरेगा के नाम से जानते होंगे वो भी जो है BBG राम जी के नाम से और भी बेहतर ढंग से जनपद में संचालित कराई जा रही है।
0: जो भी योजनाएं आपने बताई इनका जो हमारे खासकर ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको प्रत्यक्ष कैसे लाभ मिल पा रहा है?
4: हमारी योजनाएं जो जमीनी स्तर पे जब लागू होती हैं उसका सीधा सीधा इसमें जो प्रभाव है और उसका लाभ है उस गरीब व्यक्तियों को मिलता है जिसका असर जो है ग्रामीण जीवन पे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। आप देखेंगे हमारे जो भी गांव हैं, गांव में गरीब लोग रहते हैं उनके पास यदि उनकी खुद की ज़मीन है तो उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी भी उनकी पात्रता हो उनके अंतर्गत उनको पक्का मकान हम बना रहे हैं। लाखों पक्के मकान हम लोगों ने बना लिया है अभी तक और आगे भी जैसे जैसे इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते जाते हैं वैसे वैसे इनको हम नए पक्के मकान बनाते हैं। इसी तरीके से BBG राम जी योजना के अंतर्गत 125 दिन का जो पहले नरेगा के अंतर्गत 100 दिन था उसको सरकार ने 125 दिन कर दिया, जो मजदूरी है वो भी बढ़ा के 300 रुपये के करीब कर दी है। तो उस सारी चीज़ें जो है रूरल जो हमारी इकोनॉमी है, रूरल जो हमारी लोग हैं वहाँ पे रहते हैं उनको उनकी आय और उनके जीवन को बेहतर ढंग से और आगे बढ़ाने के लिए ही लागू की जा रही हैं।
0: सर इसी के साथ क्या कोई ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार की किसी योजना का लाभ लिया हो और वो आज आगे सकारात्मक बढ़ रहा हो?
4: ऐसे तो आप देखेंगे तो कानपुर देहात में अनगिनत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे
0: जी।
4: सरकार हमारी जो है और जो हमारे विभाग हैं जिले स्तर पर उनमें आप देखेंगे हम निराश्रित जैसे अगर कोई वृद्ध हो गया गाँव में तो उसके लिए भी हम पेंशन की व्यवस्था करते हैं, विधवा है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करते हैं। एक बहुत ही अच्छी हमारी जो योजना है भारत सरकार के उसके योजना के क्रम में राज्य सरकार ने उसको लॉन्च कर रखा है, पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, वह है हमारे स्व सहायता समूह के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी महिलाएँ हैं उनको सशक्त किया जाना। तो तमाम हमारे समूह बनते हैं और उस समूह की महिलाएँ जो सरकार भी उस स्टार्टअप फंड और फिर अन्य भी बैंक के माध्यम से फंड के थ्रू जो है उनको मदद करती है, और उसमें बहुत सारी हमारी समूह की महिलाएं दीदियां जो है उसमें जुड़ के समूह बना के आत्मनिर्भर हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में जैसे अगर आपने जैसा पूछा है कि अभी किसी का, तो मुझे अभी याद आ रहा है कि अभी हम लोगों ने एक यहाँ पे कार्यशाला भी कराई थी, हमारी एक रंजना जय माँ दुर्गे सहायता समूह, उसमें उन्होंने जो है एक ग्रेडी से, पहले वो कुछ नहीं करती थी जैसे सामान्य दिनचर्या होती है एक महिला की ग्रामीण क्षेत्र में घर के काम, और उन्होंने एक समूह का गठन कराया, समूह में महिलाओं को जोड़ा, और वो समूह आज एक ग्रेडी से हटके एक उद्यमशील, एक एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंतर्गत जो खुद लोगों को रोजगार देने वाली वो बन चुकी हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो विभिन्न हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं, ऑफिसर्स अन्य जगहों पे जो स्टेशनरी इत्यादि की है, वो जेम पोर्टल जो भारत सरकार ने बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार के क्रम में, जिससे सामग्री खरीदने की बाध्यता है उसके बिना हम सीधे किसी से खरीद नहीं सकते, वो वहाँ पे भी पंजीकृत हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है आज उनकी मासिक आमदनी जो पहले कुछ नहीं थी वो जो है 20,000 से लेके 25,000 तक वो प्रतिमा जो है अपना अर्न कर रही है।
0: इसी के साथ सर ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति पात्र है किसी भी योजना का और वो लाभ नहीं ले पा रहा है, तो उसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए?
4: देखिए, हमारे सरकार और शासन के विभिन्न माध्यम हैं, सूचना विभाग है, हमारे अखबार हैं, आपका रेडियो है, इनके माध्यम से हम लोगों को जो सरकार की योजनाएँ हैं उनको जन जागरूकता के माध्यम से चलाने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जून माह में एक वृहद जो है एक जन जागरूकता शिविर लगभग 15 दिन का चलाया था, ब्लॉकों में और मुख्यालय स्तर पे जगह जगह कई कई दिन तक कैंप लगाए थे। इसके अलावा भी हमारे जो पंचायत भवन हैं जो हर गांव में हैं, वहां पे भी विभिन्न हमारे शासकीय जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके योजनाओं के पात्रता, उनके लाभ के बारे में वहाँ पे हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करा रखा है। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे कार्मिक हैं, सचिव हैं या अन्य विभागों के जो फील्ड स्तरीय कार्मिक हैं, वो भी जगह जगह जाके लोगों को इसके बारे में जागरूकता करके लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हैं।
0: सर इसी के साथ जानना चाहते हैं कि जो हमारी विकास की योजनाएं हैं इनका प्रभावी क्रियान्वयन और उसमें जो पारदर्शिता होती है वो सुनिश्चित करने के लिए जो हमारा जिला प्रशासन है वो क्या कदम उठाता है?
4: देखिए, अगर कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं होती है तो निश्चित तौर से ये उस योजना को कहीं ना कहीं वो एक कमजोर करती है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जनपद में बहुत ही स्पष्ट निर्देश और क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए योजनाओं का हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो भी लाभार्थी होंगे उनका पहले जो उनकी पात्रता होगी उसके आधार पर उनकी जाँच होगी, वास्तव में उसके लिए पात्र हैं। ऐसा तो नहीं कोई किसी वास्तविक कोई लाभार्थी का हक छीन के किसी अपात्र व्यक्ति को मिल रहा है जो इसके पास ऑलरेडी मकान है उसको हम मकान दे रहे हैं। तो इसलिए फील्ड में सरकार ने भी इसके लिए जो ऐप बना रखा है, ऑलरेडी एक ऐप बना रखा है, उसमें फील्ड पे जाके जियो टैगिंग होती है, फिर उसको देखी फ़ोटो खींची जाती है कि हाँ वो कहाँ पे है, आवास है नहीं है, फिर उसके बाद उसको आगे हम ले जाके उसको शामिल करते हैं। इसी तरीके से अन्य भी जो योजनाएं हैं DBT के माध्यम से सीधे उसके कहीं बीच में बिचौलियों की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे खाते में पैसा उनके जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, और इसके अलावा जो शिकायत भी मिलती है तो शिकायतों को भी हम लोग निराकरण कराते हैं। अगर कोई लापरवाही बरती जाती है किसी के स्तर पर तो उनको दंडित करने का भी काम करते हैं।
0: सर इसी के साथ अंत में जनपद कानपुर देहात के जो हमारे ग्रामीणांचल के जो साथी हैं आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: इनके लिए मेरा यही एक संदेश है कि आप सरकार की योजनाओं से जुड़ के इसका लाभ लीजिए। आप अगर अच्छा आपको खेती करने का मन हो तो हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और इसके अलावा भी विभिन्न सरकारी अनुदान हैं, उनके माध्यम से आप अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। आप अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो हमारे यहाँ CM युवा जैसी तमाम स्कीम्स हैं जिसमें आप हम फैसिलिटेट करेंगे और आप अपना कोई भी उद्यम उसमें अपना सकते हैं। इसी तरह समाज कल्याण की विभिन्न योजनाएं हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया आप आगे आइए, जो भी हमारा फील्ड ऑफिस है या कहीं भी आप जिला अधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, हमारे मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, किसी भी योजना के बारे में आपको जानकारी शत प्रतिशत मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ, प्रशासन से जुड़ें, सरकार से अधिक अधिक जो योजनाएँ हैं उनका लाभ आप तक पहुँचे, किसी भी तरीके से किसी मिडिल मैन बिचौलिए या कोई इस तरह से कहे कि हम आपका काम करा देंगे उसके प्रभाव में मत है। सरकारी जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे कंट्रोल रूम नंबर हमारे यहाँ चलता है, जिलाधिकारी प्रतिदिन जनता दर्शन में बैठ के लोगों को सुनते हैं, मेरे स्तर पर भी सुनवाई होती है, तो ब्लॉकों में तहसीलों में कहीं भी आप जा सकते हैं किससे अपनी समस्या का निराकरण कराने के लिए। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएँ हैं और जनपद कानपुर देहात में हम आपके साथ मिलकर ही इसके विकास को आगे बढ़ाएंगे, मेरी यही आप सभी के लिए संदेश रहेगा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला हमारे श्रोताओं

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

क्या बात है दोस्तों, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। हिंदुस्तान की कसम मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है, जो कि मूवी 23 जुलाई 1999 में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन के। इसमें क्या मतलब, सच में ये मूवी देखने के बाद ना एक अलग ही एहसास होता है। और आज रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। समय की बात करूँ तो 5 बजकर यानी कि 26 मिनट हो चुके हैं। 2 घंटे के लिए आज रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है, करने वाली है ढेर सारी बात। आज की तारीख यानी कि 14 जुलाई और टेम्परेचर आज का बहुत ही शानदार, बहुत ही कूल, यानी कि 31 डिग्री टेम्परेचर है आज मुरादाबाद। यानी कि सुबह के जो बारिश थी ना भैया, ओहो, उठने के बाद जब बारिश की फुहारे आपको दिखे तो एक अलग ही सुकून मिलता है, ठंडक ठंडी हवाएं, आए हाय। तो उस टाइम ना बहुतों को यही आलस आ रहा था कि यार भैया उठ जाए या ना उठ जाए, क्योंकि बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और जब सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जो आपको नींद आती है ना, बस उठने का मन ही नहीं करता है। सो आज क्या खास डे मनाया जाता है, साथ ही साथ आज एक ऐसा देश है जहाँ आज वो आज यानी कि उनका देश आज आजाद हुआ था और हमारा कल, वो कौन देश है अगर आपको पता है तो आप जरूर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896 और जानेंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले, साथ ही साथ ही अपने लोकल फॉर वोकल के बारे में भी बात करने वाले श्रोताओं। तो बने रहिए आरजे रीना के साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। और कल भैया हर घर यानी कि छत पर तिरंगा जरूर फहराइएगा आप सभी। फिलहाल गाना सुनते हैं एक बहुत ही शानदार आई लव माई इंडिया, यानी कि उदित नारायण जी की आवाज में, कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में, बड़ा ही खूबसूरत ये गाना। हरे कृष्ण।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है।
3: मेरा गांव मेरी धरोहर पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोकगीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।

क्या बात है श्रोतो, बहुत ही शानदार गाना। और ऐसे ऐसे गाने सुनकर ना एक अलग ही जुनून आ जाते हैं अपने अंदर, अपने देश के प्रति और भी प्यार जागृत हो जाता है। आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है। श्रोताओं, समय की बात करूं तो 5:37 हो चुके हैं। गज वाली इवनिंग है जी, इवनिंग मस्ती शो में। और आज का इतिहास बहुत ही खास है, यानी कि आज है 14 अगस्त, पाकिस्तान के इतिहास में एक खास दिन। इस दिन यानी कि साल 1947 में पाकिस्तान ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की और दुनिया के नक्शे पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नई पहचान बनाई। यह दिन वहां हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं और लोग अपने देश की आजादी को याद करते हैं। आजादी का मतलब सिर्फ एक देश का स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को खुद तय करने का अधिकार भी है। इसीलिए 14 अगस्त यानी कि पाकिस्तान के लोगों के लिए इतिहास, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण दिन है। और कल यानी कि 15 अगस्त जो कि इंडिया में ध्वजारोहण होगा, और साथ ही साथ हर घर तिरंगा आप छत पर जाके सुबह देखेंगे तो हर घर यानी कि मतलब छतों के नज़ारे ही अलग हो जाते हैं। कल मतलब अलग ही वेदर होगा, अलग ही चेंज वाला वेदर आपको दिखेगा, मतलब एक अंदर से आपको खुद एहसास होगा सुकून। सो कल का वेदर बहुत ही अच्छा होने वाला है। और साथ ही साथ मुरादाबाद के जितने भी यानी कि सरकारी दफ्तर है, ये कहा जा रहा है कि 8 बजे तक यानी कि झंडा फहरा दिया जाएगा। और कल स्कूलों में भी क्या कार्यक्रम होंगे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। बच्चे सर धज कर जब जाते हैं स्कूल में, सच में उनको देखकर लगता है कि हम खुद को बचपन यानी कि जो हम खुद की बचपन है उसको याद करने लग जाते हैं। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं श्रोताओं, और इसी के साथ लौट कर आएंगे और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें करने वाले हैं श्रोताओं। लेकिन एक और देशभक्ति गाना सुनेंगे, उसके बाद और भी ढेर सारी बातें, और फिर और गाने सुनेंगे।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करो श्रोताओ, तो समय हो चुका है यानी कि 5:47। और बहुत से बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग माताएं हैं जो सोचती हैं कि हम, क्योंकि देखिए बुजुर्ग होने के बाद उनके दिमाग और दिल में बस एक ही बात रहता है कि तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, भगवान के दर्शन करने चले जाते हैं, थोड़ा दर्शन कर लेंगे सुकून मिलेगा। लेकिन वहीं पर बात आ जाती है पैसे की, क्योंकि देखिए बाहर जाने घूमने जाते हैं तो सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है पैसे, क्योंकि जब पैसे जेब में होंगे नहीं तो आप कैसे घूम पाएंगे, है ना, दिमाग में। और ये मुझे लगता है कि हर किसी की कॉमन बात है कि भाई जाने से पहले पैसे होंगे तभी हम जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। और कभी कभी इस चक्कर में प्लान चेंज हो जाता है, जा नहीं पाते हैं और फिर सोचते काश पैसे होते तो हम घूम आते। लेकिन अब आपके पास एक गोल्डन चांस है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो गोल्डन चांस क्या है। अजी मैं बताती हूँ आपको गोल्डन चांस क्या है, लेकिन बताएंगे अगर आप जानना चाहते हैं। अभी तीर्थ यात्रा घूमने के बड़े शौकीन हैं जो बुजुर्ग है उनके लिए हैं, तो आप हमारे साथ बस कनेक्ट रहिए। गाने के बाद आते हैं, फिर बताएंगे कि आखिरकार आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो फ्री में आप कैसे घूम सकते हैं और कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। पहले गाना सुनते हैं, उसके बाद बताते हैं।

0: पूछा?
1: नहीं
2: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूद जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
3: साले डर गया, क्यों बुलाई?
2: साले इतना हंसा है, तू कूद गया?
3: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
2: क्यों?
3: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
2: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति।

0: क्या बात है जी। ट्यूबलाइट मूवी से आपने बहुत ही शानदार गाना एंजॉय किया है, नाच मेरी जान हो के मगन तू। सही बात है, जिंदगी को ना मगन होकर एंजॉय करना चाहिए। अगर आप हर रोज वही टेंशन कि कल क्या होएगा, कल के लिए क्या बचाना है, कल कैसे काम करेंगे, फिर तो आप इस वक्त को और आज के दिन को अच्छे से एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिंदास होकर जीना चाहिए, क्योंकि देखिए लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी टेंशन हो, वो कभी कम होती नहीं है। लेकिन अब आपने मैनेज करना है कि आप कैसे खुश रहते हो, क्योंकि जब पॉजिटिव रहते हो तो आपका काम भी अच्छे से होता है। अदरवाइज आप बस सोचते रहते हो तो ना आप ठीक रह पाते हो, ना आपका दिमाग, और टेंशन ही टेंशन। फिर इस टेंशन में कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है।
1: परंतु
0: फिलहाल हम बात कर रहे थे आप सभी के बीच, यानी कि जो बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए फ्री, यानी कि फ्री बस सेवाएं जो उपलब्ध कराई गई है, वो कहाँ कहाँ घूम सकते हैं।
1: सब ठीक।
0: तो मैं आपको बता दूं, पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री यानी कि तीर्थ यात्रा योजना को जो बुजुर्ग है उन्हें निशुल्क जो सेवाएं मिलेगी, किसी भी प्रकार की उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, वो बिना किसी टेंशन के आराम से घूम सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। बस ये नहीं सोचना है कि हमारे पास पैसे हैं नहीं है, बस झोला उठाया, दो कपड़े रखे, चल दिए। और इसी कड़ी में यानी कि होशियारपुर से 15 बसों को हरी झंडा दिखा दिया गया है। और आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं एक बार और मैं बताती हूँ, बुजुर्गों के लिए है ये सेवाएं, यानी कि सालासर बालाजी, श्री खाटू श्याम जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा आप आसानी से कर पाएंगे। यानी उम्र की वजह से अगर कोई बुजुर्ग अपने मन की तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहा था तो सरकार

कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ। और ये भी और एक बात और, अच्छा आपने मैसेज करके बताना है कि कितनों को लगता है कि हमारा जब देश आजाद हुआ था तो सिर्फ पुरुषों की भागीदारी थी या फिर महिलाओं की भी भागीदारी थी। आपने हाँ ना में रिप्लाई देना है कि पुरुष की भागीदारी थी सिर्फ या महिलाओं की भागीदारी थी। आपने मैसेज करके बताना है कि आपको क्या लगता है, हमारा देश आजाद सिर्फ पुरुषों की वजह से हुआ है या फिर उसमें महिलाएं भी इंक्लूड थी। थोड़ा सोचिए और मैसेज करिए। और फिलहाल के लिए देखिए कुछ, यानी कि न्यूज़ ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।

0: दिल थाम के बैठी है क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
2: अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
1: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
2: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
1: बरखुरदार हुस्न का मजाक।
3: इस इंडिपेंडेंस डे देशभक्ति के जज्बे को बनाइए और भी खास।
4: हिंद न्यूज 9
3: FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मूवी शो। आइए साथ मिलकर मनाएं आजादी का जश्न देशभक्ति और मनोरंजन के साथ। पावर्ड बाय ब्रिजलाल किशनलाल ज्वेलर्स, सपोर्टिंग बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, कॉस्मोस हॉस्पिटल, भव्या हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन,
4: BMR हॉस्पिटल,
3: डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एवं क्रस्ट हॉस्पिटल। इस इंडिपेंडेंस डे जुड़िए इस खास पहल से और महसूस कीजिए देशभक्ति का जुनून। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल इन इनिशिएटिव बाय
4: हिंद न्यूज 9
3: एंड FM मुरादाबाद 89.6।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और सच बताओ तो माधुरी दीक्षित की जो अदाएं है, हाय हाय, हर कोई दीवाना ही हो जाता है। सच बताओ इनकी जो अदाएं है, और हर मूवी में एक नहीं, इन्होंने अच्छे से अपना किरदार निभाया। समय की बात करो श्रोताओं, तो दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 6:08 हो चुके हैं। आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है आप, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आखिरकार देश आजाद होने में सिर्फ पुरुषों की भागीदारी थी या फिर महिलाएं थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पुरुष थे तो आप गलत हैं। इसमें महिलाओं की भी भूमिका बढ़ चढ़ कर रही है, जिन्होंने निडर होकर आगे बढ़ी और अपने देश के लिए आवाज उठाई। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं, इन बहादुर महिलाओं के बारे में, इनकी हिम्मत के बारे में। इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई। अरुणा अली, यानी कि अंग्रेजों के बिना डर के बावजूद तिरंगा फहराया और लोगों में आजादी की आवाज उठाई। उषा मेहता, यानी कि छुप कर रेडियो चलाया और अंग्रेजों से बचकर आजादी की खबरें लोगों तक पहुंचाती रही बिना किसी डर के। मन में एक ही था, जो होएगा देखा जाएगा, बस अपने देश के लिए आवाज उठाना है और देश के लिए काम करना है। मरना है तो देश के लिए, जीना है तो देश के लिए, इनके यही वचन थे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तीसरी वुमेन की, तो दुर्गावती देवी। उन्होंने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की मदद की और उन्हें सुरक्षित निकालने में भी साथ दिया था उनका। भीका जी कामा, यानी कि उन्होंने विदेश जाकर भी भारत की आजादी की आवाज उठाई और भारत का झंडा फहराया। रानी गाइडलू ने, यानी कि बहुत छोटी कम उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और यहाँ तक कि वो जेल भी गई थी। उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की थी, ना ही उम्र की परवाह की थी। उनका सिर्फ एक ही कहना था, उम्र तो बस एक एज है और इस एज को मैं देखती रहूंगी तो शायद अपने देश के लिए कभी आवाज और कभी अपने देश को आजाद कराने में, यानी कि उनके मदद नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए एज नहीं देखा उन्होंने और सीधा अपने देश के लिए आगे बढ़े। इन 5 महिलाओं ने हमें बताया कि हिम्मत एज या ताकत से नहीं, दिल से होती है। देश के लिए इनका साहस और त्याग हमेशा याद किया जाता है। जब उन वीरों को और उन नेताओं को याद किया जाता है, साथ साथ इन महिलाओं को भी याद किया जाता है, क्योंकि रेडियो पर खबरें पहुंचाना और विदेश जाकर झंडा फहराना और जेल से निकलवाने में मदद करना एक हिम्मत की बात चाहिए होती है। और इन्होंने, इन 5 विमेनिया ने हिम्मत दिखाई और अपने देश के आजादी के लिए अपनी भागीदारी दिखाई। तो सैल्यूट है इन 5 महिलाओं को जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया। और श्रोताओं, आई नो कि आप सभी के मैसेज आ रहे हैं, तो चलिए वो भी देखते हैं भाई किनका क्या मैसेज आ रहा है हमारे पास, वो भी तो शामिल करना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि साथ साथ जब आपके मैसेज आते और शामिल होते रहते तो बहुत श्रोता इंतज़ार करते रहते कि कब हमारे मैसेज का नंबर आएगा।

0: गज वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। ललिता कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं मुरादाबाद से। मैम चाय पी लीजिए। बिल्कुल जी, हम चाय पी लेंगे और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ जी,
1: आते हैं हमें तड़पाते हैं।
0: और इनका कि कल हमारे देश को 79 साल पूरे होने जा रहा है और सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड
1: अस्सी
0: साल पूरे करेंगे, साथ ही साथ झंडा फहराएंगे। और साथ ही साथ इनका कहना है कि कल यानी कि हरियाली तीज भी है, तो एडवांस में सभी श्रोताओं को, सुनने वाले को इंडिपेंडेंस डे की और तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है जी, आपने आप तो मतलब बड़ी एक्टिव लेडी है, सच बताओ। और इनका कहना है कि मैम देश को आजाद कराने के लिए ना महिलाएं भी थी, उन्होंने भी अपनी पूरी भागीदारी दिखाई थी। बिल्कुल जी। और ये कुछ लाइनें भी लिखती हैं, तिरंगे की शान में दिल से सलाम करते हैं, तिरंगे की शान में दिल से सलाम करते हैं, देश के वीरों को हर पल याद करते हैं, जिनकी कुर्बानी से मिली हमें आजादी की बहार, उन शहीदों को नमन, मेरा भारत रहे सदा शानदार, घर घर तिरंगा सभी फहराए। बिल्कुल जी, घर घर हर घर तिरंगा जरूर फहराइए आप सभी, क्योंकि ये हमारा गर्व है। और साथ ही साथ तिरंगा फहराने के बाद ये नहीं कि दो दिन का फेंक दिया, फेंकना नहीं है, संभाल करो, यानी कि छत पे उसको लहरते देने दो, बस अच्छा लगता है जब आप तिरंगे लहराते हुए देखते हैं तो। और आगे लिखती है, ना झुका है तिरंगा ना कभी झुकने देंगे, भारत की आन को कभी ना मिटने देंगे, वीरों ने दी है आजादी हमें कुर्बानी से,
1: घर कब
0: इस देश की शान हमेशा ऊंची रहेगी। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारी आपने लाइनें भी लिखी हैं। फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं और हम आपके प्रोग्राम में शामिल है। मैम आप जो लिखती हैं कोई फायदा नहीं इसका लिखने का, तो आप समझिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मैसेज होते हैं और आप हमेशा ये आप सब कहते हैं कि हमारे मैसेज शामिल नहीं होते हैं पूरे। अब एक बात बताइए, हम सब पूरे कोशिश करते हैं सभी के मैसेज पूरे अच्छे से रीड करने की, एक दो नंबर मतलब दोस्तों के नाम रुक रह भी जाते हैं तो उसमें क्या घाटा है, उनसे बोलिए वो भी अपने नंबर से मैसेज करेंगे, बात साफ, उनका भी मैसेज आराम से पढ़ा जाएगा, उनका नाम भी पढ़ा जाएगा, इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, बस ये है कि कभी कभी जल्दबाजी में एक दो नाम छूट जाता है, तो इतना दिल को नहीं लेने का, बस बिंदास होकर एंजॉय करिए, मैं तो यही कहूंगी। हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे जी। विक्की सागर जी मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं और आपने जो 5 महिलाओं के बारे में जानकारी दी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच सर। चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गाना सुनने से पहले श्रोताओं कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, अदरवाइज पता चले मेरे बॉस बोले भैया बाहर का गेट खुला है उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ। और आपको बस यही कहेंगे, रेडियो को सही बिल्कुल नहीं घुमानी है, आज रीना के साथ आपने कनेक्ट रहना है FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं श्रोताओं तो 6:26 हो चुके हैं और कल के वेदर के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि कल है 15 अगस्त और ये भैया लाल किले में झंडा फहराया जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है 5:30 से लेकर 8:30 तक यानी कि बारिश आने की संभावना 70% जताई जा रही है। साथ ही साथ 8:30 से लेकर 11:30 तक भी 80% बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि और साथ ही साथ इतने सारे तैयारियां हो चुकी हैं लाल किले में, इतने सारे फंक्शन होने वाले हैं। मुझे बताया कि अच्छा आपने महसूस करके बताना है कि कल सुबह सुबह यानी कि 8:00 कौन कौन टीवी के आगे बैठने वाला है। सच बताओ जब मैं घर पर रहती थी ना तो 15 अगस्त वाले दिन यानी कि स्कूल से आने के बाद मैं टीवी के आगे बैठी रहती थी बस देखने के लिए परेड। मतलब इतना अच्छा नज़ारा होता है, मतलब देखकर आपको लगता है कि आय हाय आप वहीं हो। मतलब अलग अलग तरह की झांकियां निकलती है, अलग अलग तरह के परेड होते हैं वहां पर। तो जरूर मैसेज करके बताइए कि कल कौन कौन इसका आनंद लुफ्त उठाने वाला है। और साथ ही साथ अपने मुरादाबाद की बात करूं तो कल बारिश आने की संभावना जताई जा रही है, साथ ही साथ संडे को भी जताई जा रही कि बारिश आने की संभावना है श्रोताओं। और इसी के साथ आज मैं आप सभी से क्वेश्चन तो पूछने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक और दो मैसेज है वो भी शामिल कर लेते हैं। रीना जी जय श्री राम, गौरव टेलर नबी नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। रीना जी गुड इवनिंग, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हैं, जानकारियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच जी। हर हर महादेव, 15 अगस्त की एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ लिखते हैं पैसा भी कमाल की चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी इज्जत नहीं है। और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं है, क्या बात है जी। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट हो गए हैं, शायद शारिक अली जी। रीना जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो यानी कि सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो और आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आपके माध्यम से मिलती रहती है जो कि बहुत काम की है, थैंक यू सो मच। रणवीर जी का कहना है कि चलो फिर वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला जिसे रोशन ना हो मेरा ही जलवा, जिससे रोशन हुआ था भारत, चलो उस बलिदान को सलाम करे। और ये गाना भी सुनना चाहते कर चले हम फिदा ए वतन साथियों का गाना हम आपको सुनाएंगे सर, लेकिन थोड़ा उसके लिए इंतजार आपको करना पड़ेगा। ललिता जी का मैसेज फिर से, इन्होंने आ गया इनका मैसेज और इनका कहने की आज बॉलीवुड एक्टर में एक का बर्थडे है जो हमें बहुत हंसाते भी है जी, इन्हीं के बारे में आज हमारा कड़क सवाल भी होने वाला है तो सोच लीजिएगा। और इनके बारे में पूछने वाले, इनकी आवाज, इनको डायलॉग सुनवाएंगे जो कि रोते हुए इंसान को भी ये क्या करते हैं, हंसा देते हैं। तो बस लेकर आते हैं आप सभी के बीच कनेक्ट रही आर्जेरीना के साथ, क्योंकि फिलहाल तो कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया भैया।
1: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120+ रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

0: उचक दे इंडिया। हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोता। एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो यानी कि 6:36 हो चुके हैं जी। गुड वाली इवनिंग है आप सभी को इवनिंग मिस्ती शो में। और अब टाइम हो चुका है,
1: अरे संडी मार रहा संसार, अब तू आने
0: यानी कि आप सभी से कड़क सवाल यानी कि पूछने का। लेकिन मैं आपको डायलॉग सुनाने वाली हूँ, आपने गैस करना है किसका, किन्होंने बोला है भैया, उनका अपने नाम बताना है आपने। चलिए, क्या बोले जी, सुना दे आपको। अगर आप देखिए चाहते हैं कि मूवी, आप यानी कि 16 तारीख को संडे है, उस दिन फ्री भी है आप, और 26 यानी कि 15 अगस्त के मौके पर आपको फ्री यानी कि टिकट मिलेगा मूवी देखने के लिए। तो आप चाहते हैं कि मूवी हम देखें, तो उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा और आपको मूवी देखने जाना है। मिगलानी सिनेमा में आप देखने जा सकते हैं मूवी, वहीं पर आप देखेंगे फ्री में। आप सीधा आपको वहां पर जाके बोलना है कि हम रेडियो की तरफ से विनर हैं, हमने टिकट्स जीते हैं, आपको वहां पर एंट्री मिल जाएगी। चलिए फिलहाल हम प्ले करते हैं आज का प्यारा डायलॉग, जो पहले कहते हैं ना, पहले आओ पहले पाओ।
2: फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टेयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर घर घर घर घर घर घर घर घर घर क्या हुआ, तू तो रोलर से उठ। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टेयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर घर घर घर घर घर।
0: जी अब आपको अपने दिमाग की बत्ती जलानी है और बताना है कि इनका क्या नाम है जिनकी आवाज मैंने आप सभी को सुनाई है, तभी आप मिगलानी सिनेमा में मूवी देखने जा सकते हैं श्रोताओं। फिलहाल अगला गाना भी बहुत शानदार है, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और करेंगे ढेर सारी बात।
3: स्टार्ट हो

0: राजा
1: चल मेरी बात तो सुनो,
0: मैं कुछ नहीं सुनना, हमारी मांगे पूरी करो। क्या दिया इस कॉलेज ने हमें, क्या दिया इस देश ने हमें? उतारो झंडा और गिराओ नीचे।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अगर

0: हेलो जी, गज वाली इवनिंग है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 6:46 हो चुके हैं और एक बहुत ही प्यारी अपडेट जो भाई सभी को ना बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि काफी टाइम के लिए मतलब जब भी जाते थे दर्शन करने के लिए उनको पास लेना पड़ता था, तभी वो अंदर जा पाते थे और दर्शन कर पाते थे। लेकिन अब आप अयोध्या यानी कि रामलला के दर्शन करने जाते हैं, जन्मभूमि यानी कि श्री राम जन्मभूमि, तो पहले पास लगता था, अब आपको पास नहीं लगेगा। आप बिना पास के ही पूरे मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर रामलला के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लिए पास लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पास अब नहीं लेना पड़ेगा, आप आसानी से दर्शन कर पाएंगे। ठीक है जी। और साथ ही साथ रक्षाबंधन के मौके पर जो बहने हैं उनके लिए बस सेवाएं हैं, यानी कि फ्री यात्रा आप कर सकती हैं, अपने घर जा सकती हैं। और ये 26 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रहने वाला है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं, जा सकते हैं। से पूछा है, बहुत ही आसान है, बस एक डायलॉग प्ले करूंगी, उसको सुनना है और आपने बताना है इनका नाम क्या है।
1: फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टेरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर घर घर घर घर घर घर।
0: चलिए जी, फिलहाल आप अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और बताइए कि आखिरकार ये जो डायलॉग अभी प्ले किया है किनका आवाज है। भाई इन्होंने सच बताऊ रोते हुए दिलों को ना हंसाया है, इनकी मूवी या डायलॉग एक अलग ही कमाल के होता है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और आप सभी के मैसेज की बारी रहेगी।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और चलिए अब बारी आ गई आप सभी के मैसेज शामिल करने की। तो अब देखना ये है कि किनका हमारे पास सबसे पहले राइट आंसर आया है, तभी आप एंजॉय कर सकते हैं मूवी टिकट। लेकिन
1: इस इंडिपेंडेंस डे देशभक्ति के जज्बे को बनाइए और भी खास।
2: हिंद न्यूज 9
1: FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मूवी शो। आइए साथ मिलकर मनाएं आजादी का जश्न देशभक्ति और मनोरंजन के साथ। पावर्ड बाय ब्रिजलाल किशन लाल ज्वेलर्स, सपोर्टिंग बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, कॉस्मोस हॉस्पिटल, भव्या हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन,
2: BMR हॉस्पिटल,
1: डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एवं क्रस्ट हॉस्पिटल। इस इंडिपेंडेंस डे जुड़िए इस खास पहल से और महसूस कीजिए देशभक्ति का जुनून। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल इन इनिशिएटिव बाय
2: हिंद न्यूज 9
1: एंड FM मुरादाबाद 89.6
0: जी। और साथ ही साथ आज का डायलॉग,
3: फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर घर घर घर घर घर घर।
0: चलिए जी, हम देखते हैं किनका हमारे पास राइट आंसर आए हैं। और साथ ही साथ देखिए, मूवी सिर्फ एक ही आप जा सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ मूवी देखने आप नहीं जा सकते हैं। कभी आपकी ये प्लानिंग हो कि दोस्तों के साथ जाएंगे, वहां पर हम टिकट्स ले लेंगे और दोनों एंजॉय करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अकेले विनर बनते हैं तो आपको अकेले ही मूवी देखने जाना है, दोस्तों और फैमिली के साथ नहीं जाना है।

फीवर, ओहो धमाल मूवी से ललिता जी कनेक्ट हो गई भैया, और आप बनती हैं आज हमारे शो के विनर। तो आप मूवी देखने जाना चाहती है तो बिल्कुल जा सकती है, अदरवाइज अगर आप नहीं जा सकती तो अभी मैसेज करके आप बता सकती हैं, कोई और को मैं विनर बना सकती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि एक ही मैसेज देखने जा सकती है। लेकिन सबसे पहले इन्होंने राइट आंसर दिया है, विक्की सागर जी का राइट आंसर है जोनी लीवर। अगले मैसेज की बात करूं तो जोनी लीवर जी करेक्ट आंसर है। रोहित राणा जी अलीगढ़ से कनेक्ट हो गए हैं।

जी, ललिता जी ने कह दिया है कि मैं अपने फैमिली के साथ ही जा पाऊंगी, तो आप किसी और को विनर बनाइए। तो अब देखना ये कि इन्हीं के सेम टाइम पर किसने मैसेज किया था, अब ये ढूंढ। मैसेज किया है 6:37।

विनर बनते हैं गौरव टेलर जी, इनका मैसेज भी यानी कि इनका 37 पे आया था, तो आप बनते हैं सर विनर। आप कल मूवी देखने जा सकते हैं। जॉनी लीवर जी की आवाज में है, तो आप विनर बनते हैं, यानी कि संडे को आपने मूवी देखने जाना है मिगलानी सिनेमा में, और समय रहेगा रात के 8 बजे। साथ ही साथ मंसूरी कॉलोनी से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं इरशाद जी, और इनका कहना है कि जॉनी लीवर। बबली अनजान जी, गीता कश्यप, लक्ष्मी कश्यप कनेक्ट हो गई हैं, इनका कहना है कि राइट आंसर है जॉनी लीवर। अगले मैसेज की बात करूं तो अंसार हुसैन जी कनेक्ट हो गए हैं दौलतबाग मुरादाबाद से। रीना जी, इतना मेहनत से आप प्रोग्राम तैयार करके लाती हैं हम सभी के लिए, और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, हम सभी बड़े चाव से सुनते हैं, थैंक यू सो मच सर। और इनका भी राइट आंसर, इनका कहना है कि जॉनी लीवर जी हैं। विक्की सागर जी का कहना है कि लहरी सी लड़की की लहरी सी मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को फूलों वाली डाली। भैया विक्की सागर जी का कहना है कि नहीं जा पाएंगे हम भी मूवी देखने के लिए। अब आपको देखिए मौका मिल रहा है लेकिन आप जा नहीं रहे हैं, तो आप भी बता दीजिए भैया जिन्होंने मैसेज करा है कि कौन मूवी देखने जाना चाहते हैं, उन्हीं को भेज दूंगी मैं। गौरव जी का कहना है कि टिकट कहाँ से मिलेगा, आपको टिकट लेना ही नहीं पड़ेगा, आपको वहीं पर आप जाइएगा और हम भी मिलेंगे, मैं और खुशी मिलने वाले हैं आप सभी को वहां पर। सीधा बोलना कि हम रेडियो की टीम की तरफ से है, हमने टिकट यानी कि जीता है, तो आपको एंट्री आराम से मिल जाएगी। तो आप मुझे मैसेज करके बताइए जल्दी, समय कम है, कि कौन मूवी देखने जाना चाहता है, क्योंकि आपके पास एक टिकट है, जल्दी बताइए।

सफीर जी हैं, तो क्या आप मूवी देखने जाएंगी? जल्दी बताइए आप मेरे को, अगर आप मूवी देखने जाएंगी तो मैं आपको विनर बनाती हूँ, क्योंकि आपका भी मैसेज भी बस 1 पॉइंट आगे है, तो आप बता

चलिए श्रोताओं, मैं यहां से लेती हूं जाने की इजाजत। हम आपको मिलेंगे कल, सेम टाइम तो नहीं मिलने वाले हैं, यानी कि हम मिलेंगे आपको मॉर्निंग मसाला शो में, करेंगे ढेर सारी बातें। बिल्कुल, मैं और खुशी आपको वहीं मिलने वाले हैं, मिल जाएंगे आपको, मूवी देखने ही चलेंगे। चलिए जी, अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और यूं ही मुस्कुराइए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

बदल रहा है उत्तर प्रदेश, तरक्की की नई पहचान, गांव-गांव में विकास की गूंज, हर हाथ को मिल रहा है सम्मान, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां आज हम

0: बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
1: और हूँ आपकी दोस्त प्राची।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं बल्कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जो गाँव, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
1: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ODOC योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
0: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद, संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार, उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है,
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं, समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सकें।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देसी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर किसी की थकान मिटा देती है।
0: कई दुकानों पर तो आज भी पुराने अंदाज में मिट्टी के मटकों में लस्सी जमाई जाती है, जिससे उसका स्वाद और भी गाढ़ा और प्राकृतिक वाला हो जाता है।
1: यही नहीं, अब ODOC योजना के तहत इस पारंपरिक लस्सी को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि इसका असली स्वाद देश दुनिया तक।
0: इस योजना की सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं?
1: क्या?
0: ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।
1: बिल्कुल सही, गाँव की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह अब लस्सी, घी और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
0: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, तान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं उसको, शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं, सुबह मथानी से मत के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया, इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
0: अब बात करते हैं कानपुर देहात की शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख आ देती है।
1: बिल्कुल, जैसे ही देसी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
0: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोलू में तेल निकाला जाता था, और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
1: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
1: और कानपुर देहात की कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
0: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है?
1: बहुत कुछ। सुनिए, छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों की जानकारी, आकर्षक पैकेजिंग तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, फूड फेस्टिवल और टूरिस्ट सर्किट में स्टॉल, आर्थिक सहायता और रोजगार की अवसर।
0: और खास बात, SAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद से गुणवत्ता सुधार और फूड सेफ्टी पर भी काम होगा।
1: यानी कानपुर देहात का स्वाद अब सिर्फ देशी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बनने जा रहा है।
0: आज के युवाओं के लिए ये भी योजना किसी अवसर से कम नहीं है।
1: सही कहा, पैकेजिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
0: यानी गांव का युवा अब अपने जिले में ही काम करके अच्छी कमाई भी कर सकता है। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन योजना के तहत कानपुर देहात के खाद्य तेल और लस्सी उद्योग और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यमी और कारीगरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उत्पादों की ब्रांडिंग वे पैकेजिंग को भी बेहतर बनाया जाएगा।
1: दोस्तों, जब किसी प्रदेश की मिट्टी, मेहनत और स्वाद को पहचान मिलती है ना, तो सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ता
0: बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: योगी सरकार की ODOC योजना आज छोटे दुकानदारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन रही है।
0: और कानपुर देहात की कुल्हड़ वाली लस्सी और सरसों का तेल अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने तैयार है।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत,
0: फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम दोनों की तरफ से नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जल्दी मिलेंगे श्रोताओं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

0: नमस्कार आदाब, मैं आपकी रेडियो दोस्त छाया। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कहते हैं स्वस्थ जीवन जीना जिंदगी की जमा पूंजी और योग करना रोग मुक्त जीवन की कुंजी। जी हाँ, आज हम योग पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग कितना जरूरी है, यही बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ऋतु नारंग जी, जो एक योगा टीचर हैं। मैम, आपका मोस्ट वेलकम हमारे स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम, सबसे पहले हमारे सुनने वाले श्रोताओं को अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम ऋतु नारंग है और मेरे पिता योग गुरु के नाम से इलाहाबाद में जाने जाते थे और बचपन से ही हमने योग उनके द्वारा देखा है। इनफैक्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी योगा कराते थे वो, और उसके बारे में महत्व के बारे में बचपन से जाना। लेकिन 2009 में जब मैंने श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करा और वहीं से मेरा एक प्रॉपर वे में एक सही दिशा में योगा के बारे में जानकारी होते हुए उसको आज मैंने अपने जीवन का एक मूल आधार बनाया और उसी के द्वारा आज मैं पूरे मुरादाबाद के आसपास क्षेत्रों में भी और जब कोरोना आया था ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन योगा लिया था। और इसी के साथ साथ एक सोशल वर्कर हूँ, नारी उत्थान केंद्र में काउंसलर हूँ, पुलिस में योगा ट्रेनर के नाम से जानी जाती हूँ और अपने हिंदुस्तान के 7 लोगों में जब कोरोना हुआ था तो चुना गया था तो साउथ में श्री सत्य साई बाबा भगवान इंस्टीट्यूट में मुझे अवार्ड मिला था। इसी प्रकार मिशन शक्ति और साथ ही साथ अपना डिस्ट्रिक्ट आइकॉन रही हूँ 19 और 22 में, और अपना स्वीप के लिए इलेक्शंस के लिए, जैसे स्वीप को मतलब होता है इलेक्शंस, 2017 में थे डिस्ट्रिक्ट आइकॉन स्वच्छ भारत अभियान के। इसी प्रकार से जर्नी रही और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है।
0: जी, खूबसूरत जर्नी तो आपके बातों से और ये जान के हमें लग ही रहा है। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे, योगा क्या है, क्यों करना चाहिए इसे?
1: देखिए, योग के बारे में अगर हम किताबों में और गूगल में बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर एक दिनचर्या और योग है क्या, एक्चुअली में एक लाइफस्टाइल है वो। योग एक पथ है जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। योग एक ऐसा जीवन शैली है, अगर उसे हम उतारते हैं अपने जीवन में, जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। जैसे कहते हैं एक फूल है, फूल की तरह रोज हमारी एक कली खिलती है ना, उसकी पंखुड़ियां खिलना शुरू हो जाती हैं। वैसे जब हम योग करते हैं तो ऐसे हमारा जीवन भी एक फूल की तरह रोज खिलता है और खुशबू फैलाता है जहाँ भी हम जाते हैं। हाँ, अगर आप उसको वैसे जानना चाहेंगे तो योग एक जोड़ना है, ये आपको पता ही है, जैसे मैंने कहा कि आप सब इसके बारे में जानते ही हैं। लेकिन योग को जोड़ना किसका, क्यों और कहाँ, ये समझना जरूरी है। योग सिर्फ आसन या अपने शरीर को ही नहीं, योग बाहरी दुनिया से अंदरूनी दुनिया को जोड़ना योग कहलाता है। स्वयं के संघा में रहना, और मैं एक लाइन जरूर बोलती हूँ, खुद से मोहब्बत करना। खुद से मोहब्बत करिए तो अपने आप योग आप करेंगे। खुद से मोहब्बत करना, खुद से मिलना, खुद को जानना योग है। योग, मैं फिर कहूंगी, एक जीवन शैली, कैसे हम अपना जीवन जीते हैं, कैसे अपने आप को हम समाज में और कैसे अपने आप को अपने परिवार में, कैसे अपने आप को अपने कार्य में जोड़ते हैं, कितनी खूबसूरती से जीते हैं, वो हम योग के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जीवन शैली को खूबसूरत बना सकते हैं।
0: क्या बात है, मतलब आपने पूरे योग की परिभाषा दे दी हमारे श्रोताओं को और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन मैम, आपने एक लाइन कहा कि खुद से मोहब्बत करिए। जरूर, खुद से मोहब्बत हर कोई करता है और आजकल के टाइम में हर कोई फिट रहना चाहता है। तो मुझे ये बताइए कि फिट रहने के लिए आजकल का जो यूथ है वो सबसे ज्यादा अगर भागता है तो जिम की तरफ भागता है। जिम और योगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बताइए।
1: जैसे अभी आपने बोला योग खुद से मोहब्बत,
0: जी
1: ये मैंने क्यों बोला, आज हमारे हिंदुस्तान का ये ज्ञान है, योग जो है हमारे जीवन शैली में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने 6-7 हजार साल पहले हमें दिया। जिम जो है पाश्चात्य है। आज आप देखिए 21 जून जब से हिंदुस्तान ने विश्व को दिया, आज वहाँ पर विदेश में जिम बंद हो रहे हैं और योगा स्टूडियोस खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है योग से जो प्राप्त होता है वो जिम से प्राप्त नहीं होता है। जिम एग्रेशन है, योग शांति है। जिम स्वयं को भगाना है, स्वयं के साथ एक कुश्ती लड़ना है, और योग जो है खुद से मोहब्बत है, खुद से साथ प्रेम है, खुद के साथ बैठ के अपने आप को पैम्परिंग करना। कहते हैं ना, आओ खुद के लिए कुछ करें, आओ खुद को कुछ जाने, योग वो है। आज विश्व को हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने योग दिया है, वो ज्ञान दिया है जो एक साइंस है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। योग एक विज्ञान है, सबसे बड़ा विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने हमें एक सोने की थाल में सजा के दिया है। आज मैं युवाओं से जरूर कहूंगी, स्वयं के अगर आप शांत रखना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिम को छोड़ो और योग को अपने जीवन शैली में अपनाओ। योग जो है और जिम जो है उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और आप जब इस दोनों को करेंगे तो आप इसका अनुभव अपने आप इसको आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, आप उसे बहुत ही सुंदर तरीके से अनुभव भी करेंगे।
0: क्या बात है, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमें जिम और योग दोनों से क्या मिलने वाला है। अभी आपने कहा कि अपने आप को शांत रखने का एक सही तरीका है योग। अगर इसी को लेके आगे हम बात करें तो आजकल के बच्चों से लेके युवाओं में गुस्सा बहुत आता है, हमेशा हर बात में वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्या योग से इस चीज को भी दूर किया जा सकता है?
1: बिल्कुल, शत प्रतिशत। इसके अलावा कोई और जरिया भी नहीं है, कोई भी जरिया नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपने पूछा मुझसे कि जिम और योग में क्या फर्क है। जिम में मैंने कहा एग्रेशन है
0: जी,
1: और योग में प्रेम है।
0: प्रेम है।
1: जब हम योग करते हैं हम बहुत शांत हो जाते हैं, जब हम शांत हो जाते हैं तो हमारा गुस्सा अपने से लुप्त हो जाता है। इसीलिए आज युवा ही नहीं, बच्चों से ही हमें शुरुआत कर लेनी चाहिए। आज स्कूलों में भी योग का पूरा आप देखिए ध्यान दिया जाता है कि योग बच्चों को स्कूल में कराया जाता है। आज इसीलिए युवाओं को भी प्रोत्साहित करा जाता है कि आओ योग करो, क्योंकि जो आज 21वीं सदी की मिलेनियम में जो आपका सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है कि आज गुस्सा, आज धैर्य आप देखिए बिल्कुल लुप्त हो चुका है। इसलिए झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, आपसी संबंध खराब हो रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में आप देखिए तो रेशियो ऑफ डाइवोर्स का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो सब इसीलिए है कि हमारी मानसिक संतुलन हमारा ठीक नहीं चल रहा है, अहम हमारे जीवन के अंदर आ चुका है, और हम दोस्त के बदले हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होके आ गए हैं। और जब हम योग करते हैं ना, हम फिर से कहेंगे खुद से मोहब्बत करेंगे। जब खुद से मोहब्बत करेंगे, एक लाइन आई डाउन करेंगे आप, जब खुद से मोहब्बत करेंगे ना, जो आपके आसपास है ना उससे आप स्वयं मोहब्बत कर लेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि आप जब खुद से मोहब्बत करेंगे तो आपसे प्रेम बहेगा, जब प्रेम आपसे बहेगा तो नेचुरल है आप समझ जाएंगे सामने वाला भी आपसे क्या चाह रहा है।
0: क्या बात है, मतलब खुद से मोहब्बत करिए। बार बार मैम अपने शब्दों में इस सेंटेंस का यूज कर रही हैं। वैसे इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं वो प्रॉब्लम भी खत्म हो सकती है योग करने से। तो योग करिए, मन को शांत रखिए, एक सही जरिया है योग हमारे मन को शांत रखने का। अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आयुष मंत्रालय का भी ये कहना है कि योग करिए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए और हर तरह के बीमारियों से निजात पाइए, ये कितना सही है?
1: ये बात बिल्कुल शत प्रतिशत सही है, सत्य है। इनफैक्ट जो आयुष मंत्रालय जी इस बात का दावा करता है, आयुष मंत्रालय की, बीमारियों से हमें निजात मिल सकती है योग के द्वारा, ये सही बात है। हम बहुत सारे पैसे अपने एलोपैथिक दवाइयों में बर्बाद करते हैं। कहते हैं ना, दवाई खाना आसान है लेकिन खुद से प्यार करना मुश्किल है। आप लोग मुस्कुराएंगे कि फिर से रितु दीदी ने ये कह दिया, मुझे बहुत प्यार से लोग रितु दीदी कहते हैं मुरादाबाद में।
0: अच्छा,
1: तो ये बात सही है क्योंकि मेरा अनुभव है, 2009 से 2023 हो गया है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए व्यक्ति आए ना हो शिवर करने मेरे पास। इनफैक्ट कैंसर पेशेंट्स जैसी बीमारियों के भी आए थे, और जब वो पहली बार आए वो खुद डॉक्टर भी थे, और उनको जब मैंने पूछा कि आप कैंसर पेशेंट हैं और आप योग करने आए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे खुद डॉक्टर ने, दिल्ली के डॉक्टर ने रिकमेंड करा है कि जाइए और योग करिए। आज एम्स में डॉक्टर्स खुद इस बात को कहते हैं कि जाओ और योग करो। क्यों? क्योंकि योग से हमारी विल पावर हाई होती है। बहुत साइंटिफिक चीज है, बहुत वैज्ञानिक चीज है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। मैंने आपसे पहले कहा कि योग एक बहुत बड़ा साइंस है जिसके बारे में जब हम समझेंगे तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा विश्व में जो अपनी सुबह की शुरुआत बिना योग के करेगा। क्योंकि योग जो है हमारी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाता है। जब हमारे अंदर सकारात्मक सोच आती है तो आधी बीमारियां तो हमारी वहीं से खत्म हो जाती है। जैसे आप देखिए डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रात को नहीं सोना, इंसोमिया जिसे हम लोग कहते हैं, ये सब जितनी चीजें हैं बच्चों का आजकल बहुत बड़ी परेशानी, बैठे बैठे रोना शुरू हो जाता है उनका, वो कहते हैं डिप्रेशन में। बचपन से ही बच्चा दवाई डिप्रेशन जब खाएगा तो आप ये सोचिए उसके शरीर के अंदर और क्या क्या होगा। और ये बात कही गई है कि डिप्रेशन का इलाज सिर्फ योग है, इसलिए क्योंकि योग में आप फिर मुस्कुराएंगे, प्यार करते हो आप अपने आप से। डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हमें अकेलापन लगता है, हम दूसरों से, हमें अपेक्षाएं हमारी होती हैं, वो चीज जब हमारी पूरी नहीं होती हम सोचते हैं हमारे लिए कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और यहाँ तक कि स्तर बढ़ जाता है कि हम सुसाइड करने की तरफ भी चले जाते हैं। आज आप देखिए सुसाइड रेट भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गया है,
2: बहुत बढ़ गया है।
1: तो ये सब पीछे क्या है? डिप्रेशन का एक्सट्रीम लेवल है सुसाइड, अकेलेपन का एक्सट्रीम लेवल है, गुस्से का एक्सट्रीम लेवल है। कई बार पति पत्नी में या घर में माँ बाप से झगड़ा होता है, बच्चा इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे पता ही चलता है वो सुसाइड कर लेता है, या पति पत्नी में इतना जबरदस्त गुस्सा आता है कि पत्नी जाकर सुसाइड कर लेती है या पति सुसाइड कर लेता है। आज हर तरीके से आप देखें क्यों है ये, क्योंकि हम कभी शांत मन से बैठते नहीं है। सुबह की शुरुआत अगर शांत मन से हम करते हैं तो हमारी परेशानियां, बीमारियां पहले ही खत्म हो जाती हैं। जहां तक बीमारी की बात है, मैं अपने अनुभव से आपसे कहती हूँ, कितने लोगों की बीपी की दवाइयां छूट चुकी हैं, मुरादाबाद में शुगर की मेडिसिन छूट चुकी हैं, थायराइड के पेशेंट्स आ चुके हैं, एस्थमिक पेशेंट्स आ चुके हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स आ चुके हैं, टीवी के पेशेंट्स आ चुके हैं, कैंसर पेशेंट्स आ चुके हैं। आप मुझसे पूछोगे शरीर के दर्दों के आ चुके हैं, यहाँ तक कि ये भी बोला गया कि जो स्ट्रेस है उससे भी पेन होती है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल नहीं है ज्यादा हाई तो आप उसको भी खत्म कर सकते हो, अपनी पेन को भी खत्म कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रेस अपने लाइफ से खत्म कर दोगे तो। आज जो ये तनाव है वो भी बीमारियों का कारण बन रहा है, और ये सब चीजें हमें कहाँ से फ्रीडम मिल सकती है? योग से। सिंपल, योग करिए निरोगी काया पाइए, बहुत पुरानी सेइंग है, योग करो निरोगी काया पाओ, सुबह उठो सांसें भरो योगा करो मस्त रहो।
0: क्या बात है मैम, आपने कई बार इस चीज को मेंशन किया है कि योग सुबह उठो योग करो, सुबह उठो योग करो, कि योग करने का जो सही समय है क्या वो सुबह में ही है? क्योंकि ज्यादातर लोग ऑफिस जाते हैं, अदर वर्क पे जाते हैं तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। अगर वो योग फॉलो करना चाह रहे तो वो किस टाइम कर सकते हैं?
1: देखो योग का समय जो अगर आप पढ़ेंगे हर जगह, चाहे गूगल में पढ़ लीजिए या पतंजलि योग सूत्र पढ़ लीजिए या आप किसी योगाचार्य से सुनेंगे तो आपको यही बोला जाएगा, चाहे आप श्री श्री रविशंकर जी से सुने, चाहे आप रामदेव जी से सुने, चाहे सदगुरु जी से सुने, आप किसी भी से भी सुनेंगे ना तो वो यही कहेगा सुबह उत्तम समय है। लेकिन योग करना जरूर चाहिए, अगर आप लेट हो रहे हैं शाम को करो। जैसे हम बच्चों का शिविर लेते हैं, अभी मेरा 15 दिन से लगातार चल रहा था, 6 साल से लेके 13 साल तक के बच्चों का, तो उनका मैंने जो समय रखा कि बच्चे छुट्टियां हैं वो चाहते हैं हम आराम से उठे, राइट, तो उनका टाइम जो रखा था वो रखा ही हमने 11 बजे था, 11 से 1-2 घंटा मस्त होके योग करो कोई बात नहीं, लेकिन कर तो रहे हैं ना। आप एक नींव डाल रहे हो बच्चों में योग की, आप जा रहे हो कॉर्पोरेट हाउस में काम करने जा रहे हो, आप सुबह सुबह भागा दौड़ी में आप लेट उठ रहे हो, लेकिन आधा घंटा उठ जाओ पहले अच्छा है, लेकिन अगर नहीं उठ पाए लेट हो गए किसी कारणवश तो शाम को कर लो, लेकिन खुद को 24 घंटे में से आधा घंटा जरूर दो, जरूर दो खुद से प्यार, अपने से आधा घंटा करो, दूसरों से मांगते रहते हो लेकिन खुद से भी तो करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। 24 घंटे में से आधा घंटा स्वयं को जब देंगे बीमारियों से भी फ्रीडम पाएंगे, जो आयुष मंत्रालय कहते हैं, जो सारे योग गुरु कहते हैं, इसीलिए आज पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान का ये विज्ञान बहुत प्रसिद्ध हो चुका है।
0: मैम आपने कहा कि आप बच्चों को सिखाती हैं जैसा कि आप योगा टीचर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक जितने लोगों को योग के बारे में आपने ट्रेंड किया है उनमें कितना इसका प्रसार हुआ है, कितना जान पाए हैं योग के बारे में वो?
1: बहुत गर्व से कह सकती हूँ, डीएम राकेश सर हमेशा मुझे योग गुरु के नाम से कहते थे, और मुरादाबाद में एक तरह से कहा जाता है कि योग के बारे में हमने काफी कुछ इसके बारे में कार्य क्षेत्र करा है। पुलिस में 50,000 मेरे 2019 में पूरे हो गए थे ट्रेनिंग में, मैंने योगा कराई थी यहाँ तक कि योग और ध्यान के साथ, और पब्लिक में कोई गिनती नहीं है, और उन सब का जो बेनिफिट्स है आप लोग मेरे फेसबुक में जाके देखेंगे, AOL मतलब आर्ट ऑफ लिविंग होता है वो शॉर्ट फॉर्म है, AOL RITU ऋतु दीदी मुरादाबाद, तो आप उसमें देखेंगे कि हर प्रकार से लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है, बच्चों से लेके बड़ों तक, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, पढ़ाई, मेमोरी हमारी शार्प होती है, कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ता है, फोकस हमारा बढ़ता है अगर हम योग करते हैं तो। आप सोचिए कितने बेनिफिट्स हैं। आपने अगर अपने आपको सुबह आधा घंटा से एक घंटा दे दिया तो आपको हर तरीके से, आज कहते ना बहुत जल्दी याददाश्त, अरे भूल गया, आप आजकल सुनते होंगे अक्सर आप मुंह से निकलता है भूल गया, क्यों भूल रहे हैं?
0: मेरे साथ भी हो जाता है इसके बाद मैं योगा फॉलो करने वाली हूँ।
1: यस, ये जो लाइन हम लोग अक्सर, आज युवा भी बोलता है, बच्चा भी बोलता है, याद नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर आप योग कर रहे हैं, जो मेरे पास शिविर होते हैं बच्चों के, उसमें स्पेशली इसी पर पूरा ध्यान होता है कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़े, क्योंकि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योग के साथ ध्यान में बैठना तभी वो पूर्ण होता है। योग के साथ ध्यान में ही अपने आप को कम्प्लीट करेगा, योग प्राणायाम और ध्यान। योग इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री थिंग, तीनों का मिलन है। आप योग को सिर्फ एक चार हाथ उठाना या पैर उठाना नहीं है, योग प्राणायाम और ध्यान, तब वो पूरा योग आपका होता है। तीनों चीजों को आप बराबर बांटिए और फिर आप देखिए उसका क्या रिजल्ट मिलता है। इसीलिए बच्चों को जब हम दो घंटे का लेते हैं, जैसे आजकल मेरा जो चल रहा है 13 साल से 18 साल के छोटे बच्चों का चल रहा है, तो पूरा उनको योग में योग कराया जाता है, ध्यान कराया जाता है, सुदर्शन क्रिया हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की है वो कराई जाती है, और साथ ही साथ उनको पूरा अपने संस्कृति से जोड़ा जाता है। इसीलिए मेमोरी बच्चों की, याददाश्त बहुत बढ़ जाती है। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, मैं स्कूल्स में भी लेती हूँ, तो वहाँ के प्रिंसिपल्स लोग यही कहते हैं, जब ये कोर्स हो जाता है तो बच्चों की रिजल्ट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए कितने फायदे हैं योग के।
0: हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि मैम आपने शुरुआत में ही मेंशन किया था कि आप ऑनलाइन योगा भी सिखाती हैं, तो और आपने इस वाले आंसर में ये सारी चीजें मेंशन की है कि तीन चीजें, योगा प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों जब तक आप नहीं करते हैं एक साथ तब तक आपका योगा कंप्लीट नहीं होता है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई योगा फॉलो करना चाहता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे हर जगह आपको हर तरह के वीडियो अवेलेबल मिलेंगे, तो हमें ये बताइए कि अगर कोई योगा फॉलो करना चाहता है तो वो वीडियो से ही कर सकता है या उसे किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी?
1: देखो ये बात बिल्कुल सही है, आज सोशल मीडिया हमारे जीवन शैली में बहुत हावी हो चुका है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। आप कोई भी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, आज अब यूट्यूब उसके लिए अवेलेबल है, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये तीनों चीजें आज हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि योग का एक प्रॉपर ट्रेनर आपके पास हो उसके बारे में भी आप स्टडी करिए, क्योंकि योग एक ऐसी चीज हो चुकी है जहाँ पर आपको घर घर में सिखाने पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके पास कितनी प्रॉपर ट्रेनिंग है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर चीज अगर गलत दिशा में सीखी जाए वो आपके शरीर को खराब करेगी। जैसे मैं अपना उदाहरण एक देती हूँ, एक व्यक्ति मेरे पास आए थे कहीं मिले मिले पार्टी में, तो उन्होंने कहा हमने योग करा, हमारा शरीर तो बिल्कुल खराब हो गया, या हमने कपाल भाती करी, एक आंटी ने मुझे कहा कि माँ तो पेट इतना भर गया, हमने कहा आपने कहाँ से सीखा, उन्होंने कहा हमने तो टीवी में देख के सीख लिया, या एक के घर में सिखाने आते थे, तो हमने कहा वो जो आपको सिखाने आते थे वो कहाँ से सीखे। तो क्या होता है ना कि आजकल को ये प्रोफेशन बन चुका है, आज इसकी वजह से आयुष मंत्रालय ने जो आज योग का पूरा एक प्रचार करा है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है हम लोगों को, कि आज हमारे पास नौकरी इस चीज की बहुत होगी, प्रोफेशनली ये बहुत हाई हो चुका है, आजकल के युवा इस चीज को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, घर घर आप देखिए आजकल योगा सिखाने लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा उसमें इनकम भी हो रही है, जिसे कहते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इससे आया है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आज हमारे हिंदुस्तान की वजह से आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इसमें मिला है, लेकिन उन्होंने स्टडी कितनी करी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, या उसने किसी कहीं से एक शिविर अटेंड कर लिया 4 दिन का 5 दिन का 1 महीने का और फिर वो खुद अपना सिखाने लग गया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनर से आप सीख रहे हैं वो जरूरी है, यूट्यूब में भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, क्या वो प्रॉपर ट्रेनर है, क्या उसने सही दिशा में कर रहा है, कैसे है। देखो हर चीज, अगर हम सिंपल सा एक लेडी है, हम दोनों लेडीज बैठे हुए हैं, एक मेकअप भी हमने सीखना है तो हम ऐसे ही नहीं सीख लेंगे यूट्यूब में जाके, है कि नहीं?
0: बिल्कुल,
1: राइट। तो ये तो आपका शरीर है जिसके बिना कुछ भी नहीं है, आज सब कुछ मुझे कौन दे रहा है, शरीर दे रहा है ना। तो आपने अगर यूट्यूब में देखना है, बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, लेकिन अपना पढ़ाई पहले पूरी करो। अगर हम मेकअप के बारे में पूरा स्टडी करते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं अपने फेस में, सही कह रहे हैं? नहीं कह रहे?
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: जब आप मेकअप को स्टडी करके अप्लाई कर रहे हैं तो आप जिसको भी अपना योग गुरु, क्योंकि जिससे भी आप सीखेंगे वो आपका योग

0: गुरु बनेगा। तो उसको भी आप पूरा स्टडी करिए और जरूर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन लिया है। इनफैक्ट कोरोना में सबसे ज्यादा इसका हाइप हुआ था। अगर कोरोना में अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो हम लोग सब कनेक्ट ही नहीं होते।
1: बिल्कुल सही कहा। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और ये कंफर्म हो गया कि अगर योग के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं हुई किसी को तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि योग करने का तरीका आप गलत अपना सकते हैं। ठीक है, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी योग फॉलो करना चाह रही है तो उनके लिए कोई ऐसा आसन जो प्रॉपर वो कर सके?
0: बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत बड़ा मिथ है, एक मिथ्या है कि प्रेग्नेंट लेडी को योगा नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आजकल की 21st सेंचुरी की जो डॉक्टर्स है, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो स्पेशली योगा कराते हैं कि जैसे वेट फालतू का गेन ना हो। हमारे टाइम में तो देखिए इतना ब्लूमा हो जाता था, इतने मोटे ताजे हो जाते थे। आजकल के जैसे ही बेबी होता है वापस शेप आउट हो जाते हैं। हम यही सोचते हैं बेबी आया कहाँ से, कहाँ गया, क्या हुआ, राइट? जो योगा प्रेग्नेंट लेडीज को कराई जाती है वो उसी उद्देश्य से कराई जाती है कि उनके पूरे शरीर में एक्स्ट्रा मास ना आए। अब उसके प्रॉपर ट्रेंड योगाचार्य होते हैं, उन्हीं से ही आपको करना चाहिए। इसको बहुत एम्फसाइज करके मैं आपको कह रही हूँ। और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मैं जरूर कहूंगी, ध्यान जरूर करिए। आपका बच्चा गुस्से वाला नहीं होगा, रात को बहुत प्यार से सोएगा। आप अगर गुस्सा करेंगे, आपको पता ही है, गीता में आपने सुना ही है, अभिमन्यु ने गर्भ से ही सीखा था चक्रव्यूह को के अंदर जाना, राइट, उसका तोड़ना,
1: है ना?
0: तो उसने निकलना नहीं सीख पाए थे। तो वो उसने कहाँ से वो ज्ञान सीखा था? माँ के गर्भ से। आज अगर माए इस चीज को, योग और ध्यान को अपनी जीवन शैली प्रेगनेंसी में बनाती हैं, तो मैं आपसे कह सकती हूँ हिंदुस्तान का बहुत ही खूबसूरत तीव्र बच्चा आप अपने हिंदुस्तान को देंगे।
1: क्या बात है, मतलब प्रेगनेंसी में योग जरूरी है, जरूर करें। मैम एक दो आसन आप मेंशन कर दीजिए जो महिलाएं कर सकें।
0: देखिए जो आसन हैं, हर प्रेगनेंसी का अपना अपना अलग अलग होता है।
1: ओके।
0: हर बॉडी अपनी होती है, तो मैं फिर से आपसे ये बात जरूर कहूंगी, योग का जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, बिना अपने योग इंस्ट्रक्टर और डॉक्टर की कंसल्ट के बिना बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको फिर कहूँगी कि अभी मैं कोई आसन बता दूं और वो उस लेडी के बॉडी के लिए इम्पैक्ट ना हो, वो ठीक नहीं रहेगा। ध्यान में जरूर फिर से कहूंगी, आप अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, यूट्यूब में श्री श्री रविशंकर जी की आवाज में बहुत हिंदी इंग्लिश हर प्रकार के ध्यान है, आप उस ध्यान को बैठ कर करिए। आप अपना जितने प्राणायाम से, हाँ कपालभाति नहीं, क्योंकि वो पेट पर इम्पैक्ट करता है, राइट
1: जी।
0: तो इसलिए ध्यान और प्राणायाम भी जैसे बताया आपको, वो भी आप प्रेगनेंसी के अनुसार करेंगे। जैसे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम में वो बहुत ही रिलैक्सिंग होता है प्रेगनेंसी में, और साथ ही साथ जब आप ध्यान करते हैं आप देखेंगे आपका पूरा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी और मुझे लगता है बहुत हेल्प मिलेगा हमारी उन महिलाओं को जो फिलहाल में गर्भवती हैं और योगा फॉलो कर रही हैं या करना चाहती हैं। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि वो महिला जो जॉब भी करती हैं साथ में घर भी संभाल रही हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो खुद के लिए योग को टाइम दे पाए। तो हमारा यही सवाल कि आप कोई ऐसा योग बताएं जो बड़ी आसानी से कम टाइम में वो कर लें और खुद को हेल्दी भी रख पाएं।
0: बहुत अच्छा सवाल है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए वो भी काम करते हैं भाई, क्या बात है, उनको भूल गए क्या?
1: बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं, बिल्कुल करते हैं, पर मैंने महिलाओं को इसलिए मेंशन किया
0: क्योंकि हम दो महिलाएं बैठे।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
0: देखिए चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप अगर कार्य क्षेत्र में, मैं एक डेक्स योगा लेती हूँ जो श्री श्री रविशंकर जी ने इनफैक्ट 21 जून में डेक्स योगा यूएन में ली थी। एंड वो आप जैसे अपने आप जॉब में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हुए हैं, आप देखिए कि जितने जॉब वाले जो कंप्यूटर में जो काम करते हैं उनको नेक के ऊपर की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, सर्वाइकल है, शोल्डर जैमिंग है, हेडेक है, ये ऊपर के प्रॉब्लम्स उनके लाइफस्टाइल में बहुत आ रही है। बिकॉज या तो हम लगातार बैठे हुए हैं और अपना कंप्यूटर देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या अपना नेटवर्क का काम कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को कहूंगी आप अपने कुर्सी में बैठे बैठे कुर्सी योगा करिए ना, आपको जैसे ही समय मिल रहा है हर 2 घंटे बाद अपना नेक मूवमेंट करिए, अपना शोल्डर मूवमेंट करिए, तो आपको इन सब चीजें आपकी बॉडी के अंदर डेवलप ही नहीं होंगी। बाकी जब शाम को महिलाएं अपने काम से वापस घर आती हैं, आधा घंटा अपने आपको जैसे पुरुष देते हैं वैसे आप भी दीजिए। लेकिन मैं फिर कहूंगी अपने शरीर के अंदर डेवलप हो ही ना, तो क्यों नहीं हर एक से दो घंटे बाद एक तो चेयर से उठो, हल्का सा मूवमेंट करो, जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, नेक रोटेशन है, शोल्डर रोटेशंस हैं, दाएं और बाएं अपने ले जाना, अपनी आंखों का रिवॉल्विंग कराना, ये सब चीजें हमारे बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में या हेडेक वाली, आप देखेंगे आजकल लोगों को माइग्रेन बहुत हो रहा है
1: जी,
0: सर्वाइकल बहुत हो रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग नेट के साथ इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स आज बहुत आम हो चुकी हैं। तो उसके लिए मैं ये जरूर कहूंगी हर एक से दो घंटे के बीच में, जहां आपको लगता है कि मेरे पास पांच मिनट है, तो उसमें अपना इंस्टाग्राम की लाइक्स मत चेक करो, अपने हेड को रिवॉल्व कर लो, शोल्डर रिवॉल्व कर लो।
1: ओके, बहुत ही छोटी छोटी चीजों को आपने बताया कि इसे भी फॉलो करके हम अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि योग करते वक्त कभी भी खुद को थकाना नहीं चाहिए, तो ये बताइए कि एक आसन कितने टाइम का होना चाहिए?
0: योग में थकावट है ही नहीं।
1: अरे वाह,
0: योग में थकावट ही नहीं है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो, एक्सरसाइज और योगा में फर्क है
1: जी।
0: सूर्य नमस्कार योग भी है, सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज भी है। आप फास्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज का रूप है, आप उसे मध्यम गति और स्लो और ध्यानस्थ कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, वो योग है। सिंपल, योग इज नॉट एन एक्सरसाइज, योग एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है, योग योगी है। अगर आप उसे फास्ट करते हैं तो वो व्यायाम बन जाता है, उसमें आप थकते हैं। आप अगर योग करते हैं अपने श्वासों के साथ, योग है मिलन आपका मन श्वास और आपके शरीर का और आपकी भावनाओं का, इन चार का मिलन होता है। और जब ये चार जब चीजें हमारे चार स्तर हमारे जीवन के मिल जाते हैं तो कभी भी थकावट आती नहीं, उल्टा आप थके हुए हैं और आप इसे कर रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ये आपको मैं गारंटी देती हूँ।
1: आपने गारंटी दे दी, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब वो योग कर रहे होते हैं, एक ही योग को काफी टाइम तक फॉलो कर रहे होते हैं।
0: देखिए, सूर्य नमस्कार जैसे कहा जाता है, अगर देखा जाए तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, 12 आना 12 जाना, राइट
1: जी।
0: तो उसे अगर आप कई लोग 108 तक कर लेते हैं, मैंने भी कई बारी करा हुआ है पुलिस ट्रेनिंग में, अगर हम उसे 108 बारी कर रहे हैं लेकिन उसे हम सहज भाव से कर रहे हैं, आप नहीं थकेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, योग में आप तब थकते हैं जब उन आसनों को आप तेज या तीव्र गति से करते हैं, चाहे वो कोई भी आसन हो। आसन वो एक्सरसाइज में पलट जाता है जब हम उसे फास्ट करते हैं। जब आसन हम कर रहे होते हैं वो श्वासों के संघा में जब करते हैं, हम कभी भी योग से थकेंगे नहीं, ये बात पक्की है।
1: ओके, तो योग को कभी भी फास्ट ना करें।
0: नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। किसी ने अगर उसे एक्सरसाइज के रूप में करना है, आपका सवाल था कि योग से हम थक सकते हैं।
1: हाँ।
0: हम योग से थकते नहीं है, हम एक्सरसाइज से थकते हैं।
1: ओके
0: ओके, देयर इज अ डिफरेंस, फर्क है। जो एक्सरसाइज है, जैसे मैंने बताया ना, सूर्य नमस्कार एक चीज है जो सबको पता है।
1: हाँ जी।
0: जब हम सूर्य नमस्कार फास्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज हो गई।
1: Okay.
0: जब हम सूर्य नमस्कार को अपने श्वासों मन और अपने भावनाओं के साथ अपने शरीर के साथ कर रहे हैं तो उसमें आप नहीं थकेंगे। आप देखिए, 108 सूर्य नमस्कार करने वाले लोग नहीं थकते हैं, वो कहते हैं पता ही चला 40-45 मिनट में हो गया, क्योंकि वो अपने ही शरीर के संघा में कर रहे हैं। और वही आप अगर 15 बारी फास्ट करेंगे आप थक जाएंगे।
1: तो ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया मैम ने। अभी ये बताइए हमें कि वजन बढ़ाने घटाने को लेके योग कितना फायदेमंद है, क्योंकि अक्सर जब हमें वजन घटाना होता है, बढ़ाना होता है, तो हमारे दिमाग में सीधा आता है कि हम जिम ज्वाइन कर लें।
0: नहीं, देखो, जिम में क्या होता है, वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आप जिम छोड़ोगे आपका वजन बढ़ जाएगा, योग छोड़ेंगे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बता रही हूँ आपको मैं ये वाली बात, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप देखिएगा, जो लोग रेगुलर जिम कर रहे होते हैं, शादी करते हैं और शादी के बाद ब्लूम अप हो जाते हैं, एकदम गुब्बारा बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: क्यों, वो कहते हैं, मेरे सामने बहुत ऐसा एग्जांपल्स हैं, इसलिए आपको मैं बहुत गारंटी से वाली बात कह रही हूँ। जो लोग रेगुलर योग करेंगे और वो छोड़ देते हैं तो उनकी बॉडी में कभी भी मोटापा इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, क्योंकि योग जो है आपको वजन भी घटाता है, आपका शेप आउट करता है। बॉडी की शेपिंग जो होती है वो योग ही देती है। जो आप कहते हैं ना कि शेप आउट बॉडी अच्छी लगती है, तो वो शेपिंग जो होती है, हमारे स्ट्रेचेस जो होते हैं जो हम योग में करते हैं, उससे हमारी बॉडी शेप आउट भी होती है, वजन भी हमारा कम होता है। अगर आपने वजन कम करना अपने एप्स बनाने, आप 100% मैं निवेदन करूंगी आप लोग सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दीजिए, आपकी बॉडी के एप्स पूरे के पूरे बहुत बढ़िया बनेंगे। आपको सिक्स पैक बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करके जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपना मनी है, खूब मेहनत से कमाते हो, बढ़िया से उसे एंजॉय करा करो।
1: क्या बात है, मैं भी आज से सूर्य नमस्कार शुरू करने वाली हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा मैम से बात करके। बहुत सारे वीडियोस हम ऐसे देखते हैं फेस योग का, तो इससे कितना फायदा मिलता है हमें?
0: मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपको मैं कैसी लग रही हूँ?
1: बहुत सुंदर मैम
0: अच्छा,
1: लग रहा है योग टीचर है आप।
0: हाँ, तो मैंने कभी भी, अभी तक मैं 50 इयर्स, अभी नवंबर में मेरे कंप्लीट हुए हैं, मैं 51 रनिंग हूँ, मैंने अभी तक फेशियल नहीं कराया है।
1: ओह माय गॉड।
0: तो मेरे ख्याल से मेरे स्किन को अभी तक किसी पार्लर ने छुआ है। नो पार्लर हैज टच माई स्किन। अगर आप कहोगे मैं होम रेमेडीज करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, हाँ मैं योग करती हूँ, सुदर्शन क्रिया करती हूँ, ध्यान करती हूँ, वो मेरा नियम है, उसके बिना मेरा जीवन नहीं है।
1: जैसा कि मैं आपको देख पा रही हूँ, मेरी जगह अगर कोई और भी होता उसे यही लगता, काफी फेशियल वगैरह कराती रहती है हर मंथ, और बहुत ग्लो है आपके चेहरे पे। मुझे नहीं पता था योग में इतनी ताकत।
0: कोई क्रीम भी नहीं लगाते हैं, आप मेरी स्किन टच कर सकते हो, वैसे अभी तक किसी ने करी नहीं है
1: चलिए किसी ने नहीं किया, मैं बचा लेती हूँ, मैं भी नहीं करूंगी, पर मुझे बिलीव हो गया और काफी योग में बहुत ताकत है, आपको देख कैसा लग रहा है। मैम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते हैं, तो इसको लेके क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपके साइड से?
0: बिल्कुल, पूरा मैं कहूँगी पूरा विश्व इसमें तैयारी कर रहा है। मुरादाबाद पूरा गेड अप है, हर जगह योग हो रहा है, हर ट्रेनिंग स्कूल्स में, हर हमारे यहाँ पर पुलिस के 7 ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। बस इसमें एक माइनस पॉइंट होता है, क्योंकि हमारे नॉर्थ साइड है, गर्मियाँ बहुत ज्यादा होती हैं, तो स्कूल्स हमारे बंद होते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल्स वाले पूरा 21 जून को, जैसे फोन कई सारे आए हैं कि 21 जून को मैम आपने आना है, योगा कराना है, तो पूरा का पूरा गेडअप है, रेगुलर ये सब चीजें चल रही है। इनफैक्ट मैं तो मई से गेडअप हो रही हूँ, जब भी छुट्टियाँ 27 मई को शुरू हुई थी, तब से मेरा योगा के शिविर नियमित रूप से चल रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चों के हुए चाहे वो बड़ों के हुए। एक भी हफ्ता मेरा अभी तक खाली नहीं गया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आजकल यंग यूथ का चल रहा है, उसके पहले 18 साल से ऊपर का था, तो पूरा 27 मई से अब तक हर दिन हर समय किसी न किसी वर्ग को लेके हम योग करा रहे हैं।
1: हाँ जी मैम, ये बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कि अगर 21 जून को कोई भी आपके शिविर में शामिल होना चाहता है तो कैसे हो सकता है?
0: देखिए, सबसे बड़ा इवेंट जो होते हैं एक गांधी पार्क में हो रहा है, जो हमारे विधायक जी करवा रहे हैं
1: जी।
0: एक हमारा जो होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होता है, डीएम सर उसे करा रहे हैं, आप लोग वहाँ पर कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरी सुबह की शुरुआत जो होगी 5:40 से पुलिस लाइन में होगी, वहाँ पर पुलिस पूरी करती है, लेकिन जो पब्लिक के लिए होगा ये 2 जगहें हैं, आप वहाँ पर कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीआरएम सर का रेलवे स्टेडियम में भी होगा 6:30।
1: ठीक है, तो हमारे दोस्तों को अगर ज्वाइन करना है, मैम ने बहुत सारे तरीके बताए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैम आजकल जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हर घर में कोई ना कोई नशे का सेवन करता रह रहा है, और इस वजह से फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है, तो कोई ऐसा योग, कोई ऐसा आसन जिसको अपना के लोग नशा मुक्त हो सके?
0: ये सवाल जो है आज के जमाने का सबसे अनिवार्य सवाल है, जो आपने अंतिम लम्हे में पूछा है
1: जी,
0: इस चीज पर मैं करीब 12 साल से काम कर रही हूँ, नशे के ऊपर। आज मैं आपके एफएम के द्वारा ये बात का मैसेज देना चाहूंगी कि नशे को अपने जीवन शैली से 100% खत्म करो। हमारा भविष्य, हमारी नींव आज हिल चुकी है, और जो कहा आपने ये बात सही है, किसी ना किसी प्रकार का नशा किसी ना किसी घर में आप मिलेगा, चाहे वो तंबाकू है, खैनी है, चाहे वो ड्रिंक है, चाहे वो बीड़ी है या सिगरेट है या ड्रग्स ही हैं। और जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या योग के द्वारा इसका निवारण है, पक्का है, हजारों लोगों ने छोड़ा है मेरे सानिध्य में।
1: क्या बात है,
0: हजारों ने। आप इसको फेसबुक में जाके, मैं फिर से कहूंगी, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट लोग मुझे तोहफे में अपना नशा ही देते हैं वापस मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगती हूँ कि अपना नशा मेरे को सौंप दो और खुद से नशा कर लो अपने आप का। योग इसमें बहुत बड़ा, योग के द्वारा ही छुड़वाया है। अगर आप ये बात पूछेंगे क्या टेक्निक है, तो योग और ध्यान के द्वारा ही छुड़वाया है, यहाँ तक कि ड्रग्स तक छुड़वाया है। एक बात ध्यान रखना, आज मैं बोलना चाहूंगी आप सभी श्रोताओं को, पैसा आपका है, शरीर आपका है, परिवार आपका है, उसको आग लगा के जला दो या उसको अपने जीवन में खूब उत्साह के साथ जी लो, निर्णय आपका है। करना क्या है वो आपका निर्णय है। इनफैक्ट अभी एक वकील साहब हैं, उन्होंने एक साल पहले, उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा छोड़ दीजिएगा, तो वो मेरे पास स्पेशली मिलने आए और उन्होंने कहा मुझसे कि मैंने अपना शराब छोड़ दी है और और आपने जो कहा था कि उसको बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट डालो और अपनी बिटिया के नाम कर दो, तो उन्होंने बताया 60,000 रूपए मैंने साल के बचाए हैं शराब ना पी के।
1: क्या बात है।
0: ये फेसबुक में उनका लाइव वीडियो है, आप सुन सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपके पास हमारे हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है, सबसे बड़ी बात है हमारी आदतें हिंदुस्तान की बहुत खराब हो चुकी हैं। आज गांव का बच्चे से लेके शहर के मेट्रो सिटीज तक ये नशा किसी न किसी रूप में, जैसे आपने कहा, हमारे घर के अंदर एक जड़ता के रूप में आ चुका है। दीमक

0: कि 60,000 रुपए किसी ने नशा छोड़ के सेविंग किया अपनी बेटी के लिए। इससे इंस्पायर हो सकते हैं आप लोग, योग को अपनाइए, सभी से रिक्वेस्ट है। मैम, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपका कोई फेवरेट आसन जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी?
1: हाँ है, बिल्कुल है, जैसे सूर्य नमस्कार है ना, ऐसे हाँ। पद्म साधना है। अच्छा। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की है पद्म साधना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ आसन्स है, जैसे कमल का फूल होता है वैसे ही हम भी खेलते जब वो आसन्स करते, वो मेरा दी फेवरेट है। उसके अंदर इतना फेवरेट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ आसन्स है, और उसको जब करने से हमारे इंटरनली एक्सटर्नली हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारा पूरा शरीर एनर्जी इतनी हाई रहती है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट आइकॉन थी 17 में 19 में 22 20 में, एंड मैं नशा मुक्त भारत कैंपेन की भी रही हूँ, अभी भी हूँ, तो मुझसे पूछा जाता था कि आपकी एनर्जी इतनी हाई कैसे रहती है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली एंड ओनली दिस पद्म साधना एंड सुदर्शन क्रिया। वो इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जब आप उसे कर लेते हैं ना, आपको लगता है कि आप बस आप पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत है सब कॉम्बिनेशन, और बहुत सिंपल आसन है जिसको कंपाइल करा है श्री रविशंकर जी ने एक साथ, और उसको हम लोग रेगुलर करते हैं। फेवरेट से मैंने, इट्स दी फेवरेट
0: पद्म साधना सुदर्शन क्रिया।
1: या
0: ओके, अगली बार मैं भी फॉलो करूंगी सेम आसन। मैम, एक लास्ट मैसेज जो हमारे पूरे मुरादाबाद की पब्लिक को देना चाहेंगी योग को लेके?
1: जो मैंने शुरुआत में कहा था, मैं एंड भी उसी स्तर से करना चाहूंगी।
0: बिल्कुल,
1: योग को अपने जीवन शैली में अपनाइए, खूब मुस्कुराइए। मुस्कुराहट कहीं खो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, क्या करोगे लंबा चेहरा ले जाके? योग करो, अपने को सबसे पहले सुबह उठ के खुद को मुस्कुराहट दो। योग एक जीवन शैली है, फिर से कह रही हूँ, एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं है। योग कैसे मैं अपने जीवन को जीता, योग एक पथ है, अ वॉक ऑफ लाइफ है। जस्ट वॉक इट, जस्ट लव योर सेल्फ, बी ब्यूटिफुल विद योर सेल्फ, अपने से प्यार करो, खुद से खूबसूरती से ध्यान दो, और योग को 100% अपनाओ। 24 घंटे में से आधा घंटा आपका शरीर का अधिकार है आपके साथ रहने का, इतना समय तो आप सब अपने आप को दे ही सकते हैं, और देना चाहिए और गर्व करना चाहिए। आज 21 जून हमारे हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को दिया है, यही सोच के कर लो कि भाई हमारा ज्ञान है, हमारा विज्ञान है, तो क्यों नहीं उसको अपने जीवन शैली में अपनाएं। आओ खुद से प्यार करें, खुद को मुस्कुराहट दें, और हमारे आसपास जितने भी हैं उनको भी मुस्कुराहट फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।
0: क्या बात है, खुद से प्यार करें, मुस्कुराते रहें और अपनों में मुस्कुराहट बांटते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद। अगर

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B, बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: जिद करो।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम RJ आनंद है और इस वक्त आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है 89.6 FM, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज की जो ये ब्यूटीफुल महफिल है ना, ये किन की बातों से सजने वाली, कौन है जो इस महफिल को और भी खूबसूरत बनाने वाले हैं, डेफिनेटली आपको पता लगेगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है, कोई अच्छा आपके अंदर स्किल है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टेशन में आके पूरी जनता तक उसको पहुंचा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आके हमें DM कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, व्हाटएवर, आप शेर व शायरी करते हैं, आप पोएट्री लिखते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसके लिए आपके शहर का अपना लोकल रेडियो स्टेशन है ना, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। और आज का ये प्लेटफॉर्म हम किसको देने वाले हैं, आई नो दैट आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी, बट वही है ना कि कभी कभी जब आप आवाज़ सुनते हो और एक लंबे अंतराल की बात सुनते हो तो शायद थोड़ा बहुत मिसिंग तो हो जाता है। कोई बात नहीं, आज हम आप उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे उनको, एंड जब वो आपसे मिलेंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आ जाए। वेल, आज की शाम कौन है हमारे साथ इस महफिल में, बताता हूँ आपको। सो आज की इस महफिल में हमारे साथ जो साथ देने वाले हैं वो है उत्कर्ष अग्रवाल जी। एंड इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, जब मेरी इनसे भी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने काफी कुछ बताया अपने बारे में। मतलब ही इज अ मल्टीटास्कर इंसान, बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं, एंड फिलहाल मुरादाबाद से तो बाहर ही रहते हैं, जैसे कि हम मुरादाबाद में आके कहीं और से यहाँ पर आपके लिए काम कर रहे हैं, बट अब तो मेरे लिए मुरादाबाद ही अपना शहर हो गया। आई लव मुरादाबाद सिटी। तो बिना किसी देरी के भैया को मिलवाते हैं आपसे। हेलो, हाउ आर यू भैया, कैसे हैं आप? वेलकम टू FM मुरादाबाद।
5: नमस्कार, मैं उत्कर्ष अग्रवाल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
4: मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ सर। मेरी जो है हाल चाल आप देख ही सकते हैं, स्टूडियो में बैठने के बाद सब एकदम ऑल गुड हो जाते हैं सर।
5: बिल्कुल बिल्कुल
4: जी। आप बताइए सर, आप मतलब पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी आए हैं आप?
5: नहीं, FM मुरादाबाद में मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन दिस इज वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू, और
4: आई एम सुपर हैप्पी। मेरे को भी अच्छा लग रहा है, यू नो।
5: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये शो बहुत अच्छा होने वाला है।
4: एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। वो कहते हैं ना भैया, जब किसी भी काम की शुरुआत आप एक अच्छी वाइफ के साथ करते हो, यू नो, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ करते हो, तो उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली अच्छा ही आता है।
5: डेफिनेटली डेफिनेटली,
4: वो ही चीज यू नो आज इस सेशन में होने वाली है। सो थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं उत्कर्ष भाई, मतलब यू नो आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, क्या है आपका काम?
5: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आऊंगा अपनी बात बताने, लेकिन मैं उससे पहले अपनी एक लाइन में जरूर बता देना चाहता हूं, जो मैं इंट्रोडक्टरी शेयर अपने लिए कभी पढ़ना चाहता हूं। हाँ। और वो लिखा था मैंने ऐसे कि भोला भाला सादा सा जान निसारने वाला लड़का हूं।
4: क्या बात है,
5: भोला भाला सादा सा जान निसारने वाला लड़का हूं, मैं जिस्मों की दुनिया में दिल हारने वाला लड़का हूँ। तो मैं जो बेसिकली हूँ, मेरा जो काम है वो, एक तो मैं पोइट हूँ, सिंपल सी बात है, आपने मुझे समझ लिया। तो लिखता हूँ, गाता हूँ, और सिंगिंग करने का शो रखता हूँ साथ में। सिंगिंग मैंने सीखी तो नहीं है, लेकिन पोइट्रीज में मेरा बहुत रुचि है, तो मैं प्रेम पे कविताएँ लिखता हूँ। प्रोफेशन मेरा है टीचिंग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लॉ डिपार्टमेंट में, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में। फिलहाल मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने लिए जो टाइम निकालता हूँ उसमें मैं ये करता हूँ कि मैं पोइट्रीज लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ, या यूँ कहिए कि लोगों के जज्बातों को, फीलिंग्स को बस कागज़ों में उतारने का काम है थोड़ा सा।
4: क्या बात है, साउंड्स इज अमेजिंग यार। मैं मतलब बहुत लोगों को इंटरव्यूज करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, एंड मैं उत्कर्ष भाई को सामने से देख पा रहा हूँ, तो मतलब उनको देख के इतने इनोसेंट, इतने यू नो सेंसिटिव लग रहे हैं वो, बट उनकी आवाज और उनका यू नो टॉकिंग वे एब्सोल्युटली अल्टीमेट है यार। मतलब यू नो वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो होता है ना उत्कर्ष भाई, एंड इतने मल्टीटास्कर हैं, मतलब आपने सारा कुछ बता डाला यार। तो एक एक करके यू नो आपका जो टैलेंट है उसको मैं चाहूंगा यहाँ पे हम पब्लिश करें, अपनी ऑडियंस के बीच में रखें। एंड गाइस, ये जो सेशन है डेफिनेटली बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे जाने वाला है, सो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और इस सेशन को ऐसे एंजॉय करेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, तो आप कहीं मत जाइए, डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। आज की इस महफिल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं हमारे साथ उत्कर्ष अग्रवाल जी, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बहुत कुछ सुनेंगे। सो एक काम करते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
1: fixing it.

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद। एक बहुत ही बेहतरीन गाना आपने सुना और इस गाने को सुनकर मुझे तो बहुत मजा आया। आई एम श्योर हमारे जो प्यारे से गेस्ट हैं उत्कर्ष जी, उनको भी अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल डेफिनेटली।
0: एंड सर, आप तो आपने बताया कि आप ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, बट अब आप काफी लंबे टाइम के बाद आ रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी?
1: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत समय के बाद आ रहा हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 ईयर हो गया होगा मुझे आए, और उससे भी ज्यादा शायद।
0: ओके, सो कुछ चेंज लग रहा है, यू नो, कुछ भी डिफरेंट, यू नो?
1: बहुत बहुत ज्यादा। मैं मतलब पहले से महसूस कर पा रहा हूँ कि हम लोग कितना डेवलप्ड हो गए और कितनी ज्यादा एफएम मुरादाबाद 89.6 जिसका नाम है, वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, वो एक बहुत अच्छी चीज है।
0: इनफैक्ट मुरादाबाद में हर चीज अपने आप में मतलब बहुत ही बढ़िया है, यू नो।
1: मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप आज के टाइम में भी एफएम जैसी चीज में तरक्की कर पा रहे हैं, और वो बहुत बड़ी चीज है कि लोग सुन रहे हैं।
0: Absolutely.
1: और ये सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट उनको दे रहे हो, बहुत अच्छा एक चीज बना के उनको दे रहे हो, वो उनको मजा आ रहा है, जो पब्लिक को बना रहा है, आपका लिसनर आपसे कनेक्ट कर रहा है। तो मैं कहूँ कि जैसे मैं सोशल मीडिया से तो कनेक्ट हुई, तो मैं देखता हूँ कि बहुत रीच आप लोग पकड़ रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है यार।
0: बट दिस इज वेरी, यू नो, कह सकते हैं कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है बहुत ज्यादा, इतना इजी नहीं है। दिस इज वेरी क्रिएटिव।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एक जैसे मैं भी हूँ, मैं मुझे गाने का इतना नॉलेज नहीं है। मैंने आपको शायद बताया होगा, मेरा अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले स्पॉटीफाई और यूट्यूब म्यूजिक और सावन पे भी मेरा एक गाना आया।
0: ओ वाह,
1: जानिया के नाम से वो लिखा मैंने है और मैंने गाया भी है, बट सम वॉइस सैंपल्स यूज करे हैं मैंने उसमें, ऑटो ट्यून किया है, क्योंकि आई एम नॉट अ हार्डकोर सिंगर टू बी ऑनेस्ट, मैं आपके एफएम रेडियो पे बता दूं, क्योंकि मैंने सिंगिंग सीखी नहीं, बट मुझे लिखना था और वो गाना मैं चाहता था कि बने और बिना खर्चे के बने, सबसे बड़ी बात। तो मैं चाहता था कि वो बने, तो मैंने खुद सिस्टम पे बैठ के उस पर 2-3 महीने जो मैंने काम किया है, मुझे पता है कि गाने को गाना बनाने में शायद कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। इसी तरीके से एक जो पीस आप तैयार करते हैं, एक शो आप तैयार करते हैं, उस शो को शो बनाने में, जो फिनिश प्रोडक्ट लोगों को कहने में सुन के अच्छा लगता है, उसको बनाने में पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी रिसर्च होती है, वो डेफिनेटली मैं रिलेट कर सकता हूँ, और उसके लिए आपकी तारीफ भी करता हूँ भाई साहब, बहुत अच्छा शो बना।
0: अरे धन्यवाद सर। एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि एज अ बीइंग अ आरजे, अगर आप रेडियो कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल होना चाहिए, रेडियो पे जेन्युइन होना चाहिए। जैसे एक्टर को कैमरे पे बिल्कुल ओरिजिनल एक्टिंग के साथ आना पड़ता है, क्योंकि वरना कैमरा होता है छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है एक एक्टर की, है ना, वैसे ही हमारा माइक होता है, हम इसके साथ में ना कोई भी, यू नो, फेक चीज नहीं कर सकते हैं। आप जितना ओरिजिनल साउंड करोगे लोग उतना ज्यादा आपसे कनेक्ट होंगे, वो कनेक्टिविटी तभी बनती है जब आप ऑर्गेनिक चीजें डिलीवर करते हो बेसिकली। सो वो चीजें, सो गाइज प्लीज बोर मत होना, बैक टू पॉइंट चलते हैं हम उत्कर्ष भाई की दुनिया में, एंड कुछ उनसे इंटरेस्टिंग सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जब अभी म्यूजिकल ब्रेक पे गए थे तो मेरा उनसे एक छोटा सा डिस्कशन हो रहा था, वो यू नो कुछ वॉइस को लेके कुछ तो यू नो कर रहे थे हम लोग आपस में टॉक, आरजे उन्होंने देखे हैं और उनको अच्छा लगा मेरा, और वो भी कुछ बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस, यू नो वॉइस के बारे में कुछ तो चल रहा था उत्कर्ष भाई अभी हम लोग।
1: मैं आपसे ये बात कर रहा था कि वॉइस की जो बात हुई, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि वॉइस कितना मैटर करती है जब आप कोई पोइट्री डिलीवर करने वाले, आप कोई शो डिलीवर करने वाले, स्पेशली इन आरजे या एंकरिंग का जो शो होता है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। और यदि हमारी वॉइस अच्छी नहीं होगी या इम्पैक्टफुल नहीं होगी तो शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी।
0: Correct.
1: मैं बहुत बार देखता हूँ, मैं बहुत सारे पोएट्री शोज में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो लोग नए नए लिख रहे हैं या नया नया पढ़ रहे हैं, वो लोग पढ़ते हैं मतलब एज अ जैसे रीडिंग कर दी उन्होंने, और उनकी वॉइस में वो इम्पैक्ट नहीं होता। शायद उन्होंने उनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे।
0: Correct.
1: और वो वॉइस उनकी कनेक्ट नहीं कर पा रही है लोगों से। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ज्यादा अच्छा ना भी लिखा हो, और उसका पढ़ने का कहने का अंदाज ऐसा होता है कि सामने वाले के दिल में उतर जाते। तो ऐसा कुछ होता है, जैसे आंखें और आवाज जो होती हैं वो दिल में उतरने का रास्ता होती हैं। तो अगर किसी के दिल में आपको उतरना है तो आपको अपनी आवाज में भी गहराई लानी चाहिए, जो कि आपकी तो आवाज में मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अरे सर, आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट अ शायर, आई एम नॉट पोएट, बट
1: वो ना, मतलब अगर आपसे कोई फोन पे बात करे तो आई थिंक वो फैन हो जाएगा, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो, क्यों ना।
0: वो अगर मैं आपको उत्कर्ष भाई एक चीज यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर करूँ, अगर हम रेडियो इंडस्ट्री में है, रेडियो फील्ड में है, तो डेफिनेटली वॉइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: वॉइस इज वेरी
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो में और रेडियो पे लोग हमें देख नहीं रहे।
1: आप देखिए, गाने भी लोगों ने कितने अच्छे अच्छे बना दिए, लेकिन जिनकी वॉइस अच्छी नहीं है, जो बना नहीं पा रहे, वो कानों में रह नहीं पाएंगे, याद नहीं रह जाते आपको, याद रह जाती है वो सूथिंग वॉइस।
0: एब्सोल्युटली
1: वो शोज में अगर आपको याद करता है तो किसी ने रेडियो में आपका चेहरा नहीं देखा आरजे का स्पेशली, अगर लोगों को याद रह जाता है कि ये वॉइस है आरजे आनंद की, तो वो क्या है, वो आवाज है। आई थिंक वॉइस इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल, वो बहुत नेसेसरी है कि वो बहुत इम्पैक्टफुल होनी चाहिए।
0: जैसे अभी आपकी आवाज बहुत इम्पैक्टफुल है और जो हम सभी लिसनर्स को, बिकॉज मैं भी अभी आपका लिसनर ही बन के बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे बहुत मजा आ रहा है और हम सब बहुत वेट कर रहे हैं उत्कर्ष जी आप कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ तो सुना दें जो आपके दिल के बहुत करीब है। कौन सी चीज है जिसके साथ आप, एक कहते हैं ना किसी भी काम की शुरुआत आप कुछ जब हैपनिंग तरीके से करते हो तो मजा आ जाता है,
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ बढ़िया सा कुछ खुशनुमा सा माहौल बनाते हैं कुछ तो अपने लिसनर्स के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, कुछ अच्छा सा जो आपको लगता है यार ये चीज तो मैं डिलीवर कर ही सकता हूँ आनंद।
1: बड़ी प्यारी सी मेरा एक शेर है छोटा सा,
0: हाँ,
1: बहुत ही प्यारा है वो सुनिए, कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे, ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, मैं जानता हूँ मुझ पे ताने कस रही हो,
0: वाओ,
1: ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, मैं जानता हूँ मुझ पे ताने कस रही हो, तुम्हारे इन झुमकों में बसती है जान मेरी, इन्हें उतार कर तुम कहाँ रख रही हो।
0: क्या बात है यार, यू नो मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम से हमने ये पोइट वाला मतलब यू नो शुरू किया है, स्पेशली मैं अभी कुछ टाइम से ही कर रहा हूँ ये उत्कर्ष भाई।
1: अच्छा,
0: सो टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब यू नो मुझे पहले ना समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है ये होता क्या है, मतलब व्हाट इज दिस पोएट्री और ये सब, मतलब वैसे तो मैंने बहुत सारे ओपन माइक्स वगैरह में मैं गया हूँ तो देखा है मैंने लोग करते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है सब चीजें सामने आ जाती हैं, आप स्क्रॉल करोगे आपको नहीं पता आपके सामने क्या चीज अच्छी आ जाए जो आपको टच कर जाए, यू नो तो वो चीजें, बट ये जो चीजें आप लोग बोलते हैं ना जो भी आपके शब्द होते हैं जो पोएट्री में आप रो रहे हैं या जो भी आप शायरी कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली ये बड़ी सच्चाई वाली चीजें जो बस आप उनको ना अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हो, बट ये ऐसा लगता है कि सच्चाई से हमारा एक सामना करा रहे हो आप लोग,
1: बिल्कुल
0: ये पोएट्री हो गई शायरी हो गई ऐसा लगता है मैं आईना दिखाया जाता है,
1: बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं मतलब कभी कभी मुझसे ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, हालांकि हर राइटर इससे रिलेट करेगा, उनसे ये पूछा जाता है कि आप इतनी जो शायरियां लिख रहे हैं क्या दिल टूटा है या दिल लगाया है किसी के लिए लिख रहे हैं,
0: ये तो मैं भी पूछने वाला था,
1: बट हाँ मैं बता देता हूँ आपको कि हाँ समटाइम्स ये जरूरी हो जाता है, समटाइम ये है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जरूरी नहीं है कि आपका दिल टूटा हो अगर आप एक अच्छे राइटर हैं या फिर आप अच्छे इमेजिनर हैं, आप जितना अच्छा सोच पा रहे हैं उतना अच्छा आप लिख पा रहे हैं, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छा पढ़ें, पढ़ेंगे आपकी सोच अच्छी होगी, और मतलब जैसे मेरा एक और मैं आपको एक शेर सुना,
0: अरे वाह बिल्कुल इरशाद,
1: मैं दिल्ली में रहता था जब तो मैं लीगल इंटर्नशिप कर रहा था हाईकोर्ट में,
0: ऑलराइट,
1: तो वहां पर हम एक रूम में रहते थे और पीजी में उसके बराबर में एक गर्ल्स पीजी था, तो अक्सर 8 बजे एक लड़की छज्जे पे आती थी,
0: मतलब छज्जा जो छत
1: छज्जा यानी कि बालकनी,
0: ऑलराइट,
1: वो छज्जा इसलिए क्योंकि मैंने वो वर्ड बालकनी
0: यू नो मतलब मुझे थोड़ा सा इसलिए भी लगा क्योंकि एकदम फ्लैशबैक में चला गया, छज्जा मतलब हमारे घर के बाहर एक छोटा सा बना दिया जाता था उसमें पेड़ वेड़ रख देते थे हम लोग,
1: बालकनी तो मॉडर्नाइज घर में होती है, पहले तो छज्जा ही हुआ करते थे,
0: करेक्ट,
1: तो एक लड़की ठीक 8 बजे बालकनी में आती थी और मेरा एक जो रूममेट था वो उसको डेली देखता था, और उसके बहाने हम लोग चाय पीने जाते थे, और ये होता था कि अगर दिख गई तो चाय वो पिलाएगा, नहीं दिखी तो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा।
0: क्या बात है ये मतलब एक बड़ा अच्छी से सेटिंग्स आप लोगों ने करके रखी हुई थी, मतलब
1: जी,
0: तो कितनी बार है जो जब आपने उनको चाय पिलाई है?
1: नहीं नहीं, नहीं मेरा केस नहीं था, ये केस मेरे दोस्त का था और उसने मुझे बहुत बार चाय पिलाई।
0: अच्छा, नहीं नहीं, मतलब तो आप लोगों की तो यहाँ पे एक बेसिकली एक टर्म्स एंड कंडीशन थी ना कि अगर वो आई तो वो पिलाएगा, नहीं आई तो आप पिलाएंगे,
1: तो मैंने तो बहुत कम पिलाई थी,
0: ऑलराइट, मतलब वो आई है इसलिए उसने आपको पिलाई
1: जी,
0: है
1: जी जी,
0: गजब यार,
1: तो हुआ ये कि कुछ दिन तक वो आई नहीं,
0: ठीक है,
1: तब एक शेर मेरा बना कि एक शेर सुनाता हूँ, मेरा एक शेर बना,
0: प्लीज यार, श्योर,
1: ओके, तो शेर ये था कि तभी से होठों ने मुस्कुराना छोड़ दिया,
0: वाह,
1: तुमने जब से दिल लगाना छोड़ दिया,
0: क्या बात है,
1: भी से होठों ने मुस्कुराना छोड़ दिया, तुमने जब से दिल लगाना छोड़ दिया, तुम्हें क्या मालूम इन गलियों पर क्या गुजरी,
0: वाह जी वाह,
1: तुम्हें क्या मालूम इन गलियों पर क्या गुजरी, तुमने तो बस छज्जे पे आना छोड़ दिया।
0: अरे वाह क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, मतलब
1: तो कभी कभी शेर आपके जो ऐसे पोइट्रीज होती हैं वो ऐसी सिचुएशन से निकलती हैं।
0: अच्छा ये चीज ना बड़ा यू नो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट इजी, आप किसी भी चीज को जब देख रहे हैं फील कर रहे हैं फिर उसको आप अपने शब्दों में पिरो रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: ये बहुत यू नो मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग भी होता होगा यार।
1: बिल्कुल होता है, लेकिन जब आप अच्छा पढ़ रहे होते हैं तो कभी ना कभी ये चीजें बनती हैं। जैसे एक और है, जैसे मैं टीचर ही हूँ तो मैं पढ़ा रहा था लॉ कॉलेज में, तो मैं बड़ा फ्रेंडली टीचर हूँ, तो मेरे से दो मेरे
0: वो
1: जो
0: तो
1: बच्चे होते हैं
0: मेरे
1: वो
0: को
1: बात
0: आपको
1: कर
0: देख के लग रहा है आपका एनवायरमेंट ऐसा है ही।
1: तो अक्सर बच्चे अपने एक लड़का है तो वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में ऐसे ही डिस्कस कर रहा था
0: ऑलराइट
1: कि मैंने उससे कहा कि भाई बेटा तुम्हारी अटेंडेंस लो हो रही है, क्यों नहीं आ रहे हो? तो क्लास के बच्चे ने चिल्लाया, सर वो भी नहीं आ रही है इसलिए नहीं आ रहा है। तो वो सिचुएशन क्रिएट होती है और तब एक शेर बनता है कि आंखों से ही दिल में उतर जाना होता है,
0: वाह जी वाह,
1: इश्क में ये भी कर गुजर जाना होता है।
0: गजब।
1: आंखों से दिल में उतर जाना होता है, इश्क में ये भी कर गुजर जाना होता है। कॉलेज बस तेरे दीदार को आते हैं,
0: अरे वाह,
1: अटेंडेंस तो महज बहाना होता है।
0: क्या बात है यार, आउटस्टैंडिंग। मतलब कितना कमाल का आपका जो है सेंस ऑफ ह्यूमर है
1: ये
0: भाई
1: जो
0: साहब,
1: अटेंडेंस है ये तो सिर्फ एक बहाना होता है,
0: बहाना
1: हम तो
0: होता है,
1: कॉलेज तेरे दीदार को आते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है।
1: तो
0: अच्छा,
1: सिचुएशनल
0: ये
1: शायरीज भी कभी
0: बेसिकली
1: कभी बनती
0: ये
1: है।
0: अगर देखा जाए तो ये सच भी है, कहीं प्रतिशत सच भी है ये बात। बहुत
1: हाँ जी
0: लोग
1: हाँ
0: हैं
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: यू
1: सच
0: नो
1: है।
0: ये
1: तो
0: चीज को
1: मैं वही
0: करते
1: कह
0: हैं
1: रहा हूं कि
0: फॉलो।
1: जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा
0: करेक्ट,
1: आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। आप जॉन एलिया साहब को लिखिए, आप बशीर बद्र साहब, जितने बड़े बड़े पोइट्स हैं आप उन्हें अगर सुनी है तो बशीर बद्र साहब अपनी शायरी में कहते हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा,
0: वाह
1: इतना मत चाहो उसे वो खुदा हो जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन आप रख सकते हैं उतना अच्छा आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते
0: दैट्स
1: हैं,
0: अमेजिंग
1: गा सकते
0: यार। बातें उत्कर्ष भाई से ढेर सारी हो रही हैं और बहुत
1: हैं।
0: सारी चीजें अभी आगे भी सुनेंगे। आई नो दैट थोड़ी सी लंबी कॉन्वर्सेशन होगी, बट कोई बात नहीं। अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक का टाइम है। इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वी कम बैक, मैं और उत्कर्ष भाई आ जाए। आज मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ स्टूडियो के अंदर, और आज हमारे साथ उत्कर्ष भाई मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। ढेर सारी बातें कर रहे हैं अपनी प्यारी प्यारी बातों से, अपनी प्यारी प्यारी शेर व शायरी से। आपको जो है आज बड़ा सुकून दे रहे हैं भाई, मेरा तो मन प्रफुल्लित हो गया है भाई की बातें सुन के। अब आपको जो एक बढ़िया से गाना सुनाते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो आज की शाम, एंड आई एम रियली श्योर आप भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप आपको भी ये सेशन डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा। यार मुझे तो एक ही शायरी आती है, इतने सारे शायर आए हैं, मैंने एक भी शायरी नहीं करी है, बट मेरे को ना एक्चुअली वो थोड़ी गंदी वाली शायरी आती है, उसको सुन के आप लोग हंस जाते हो। वो है ना मेरी एक बड़ी वो पुरानी सी शायरी जो मैं अक्सर चिपकाता रहता हूँ कि भर लो बाहों में कर दो मदहोश, भर लो बाहों में कर दो मदहोश, कौसे कबूतर खासे खरगोश। तो भाई मेरे को इससे आगे वाली नहीं आती है। वेल लेट मी टेल यू, ये जो शायरी थी तो बहुत गंदी थी, बहुत बकवास और वाहियात शायरी थी मेरी, बट जो उत्कर्ष भाई सुना रहे हैं बहुत ही प्यारी हैं यार, बिकॉज उनका जोनर ही यू नो अलग ही है। भाई वेलकम बैक है आपका एक बार फिर से।
1: थैंक यू।
0: एंड आई होप आप भी एंजॉय कर रहे होंगे यार हमारे साथ।
1: बिल्कुल, मैं डेफिनेटली बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये सेशन कहीं खत्म ना हो जाए।
0: ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भैया, मैं क्या ही करूँ, बट बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। यू नो मतलब दोस्तों कभी कभी होता है ना कि जब आप किसी से अच्छे से दिल से बात करते हो तो ऐसा लगता है नहीं कि आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसा होता है उत्कर्ष भाई? जैसे मैं एक्चुअली भाई को बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ था, तो भाई भी मेरे को देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ ये पर्सन है जो आने वाला है, आई डोंट नो। फिर ये इन्होंने मेरे को पूछा, मैं हाँ जी हाँ जी, फिर जो थोड़ी सी बातचीत करी, लेकिन ऐसा लगा नहीं यार हम पहली बार मिल रहे हैं भैया। हाँ, यहाँ पे स्टूडियो में आके से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं लाइव ऑन एयर, तो ऐसा लग नहीं रहा ना कि हम पहली बार मिले हैं, और ये होना भी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत अच्छा लगा आप आए, और ये बड़ी खुशनसीबी हमारी कि हम आपको सुन रहे हैं यहाँ बैठ के।
1: मेरी भी खुशनसीबी है कि आपने मुझे बुलाया।
0: अरे सर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप बड़े बिजी और बड़े बिजी पर्सनालिटी हैं आप, मैंने सुना है, तो आप जो है शाम को रवाना हो जाएंगे।
1: पर्सनालिटी का तो सर ये है कि मतलब जब आप काम में लग जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आपके ऊपर आ जाती हैं, तब फिर आप बिजी हो जाते हैं, वरना आपको पैशन और प्रोफेशन आपका जब अलग हो जाता है ना, तो प्रोफेशन आपको पैशन की तरफ आने नहीं देता
0: यार। अब मेरा ऐसा मानना है उत्कर्ष भाई कि अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना ले तो कितना अच्छा है।
1: बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा, और इसी कोशिश में भी हूँ।
0: नहीं, मैंने तो अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है। मेरा पैशन था मुझे रेडियो में आना है, मुझे बातें करनी है, बिकॉज आई लव यू नो टॉक करना, ये आई लव दिस जॉब, मैं हमेशा इसको बोलता भी हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
1: ज्यादा खुश इंसान ही नहीं होगा,
0: इसीलिए अब मुझे बहुत सारे लोग
1: ये काम कर लिया है। तो
0: मतलब यार मुझे ऐसा लगता है उत्कर्ष भाई, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर मुझे रात को 2 बजे भी कभी ऐसा लगता आता है कि यार आपको आना है करने कुछ, तो मेरे को लगते नहीं रात के 2 बजे यार यही तो करना था मुझे, अब 2 बजे क्या देखना भाई, चल यही तो मेरा पैशन था।
1: जब दिल से काम होते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं।
0: करेक्ट, और फिर हमें उसमें ना ऐसा नहीं लगता यार हमें टाइम पूरा करना है।
1: बिल्कुल डेफिनेटली,
0: हमें उसमें लगता है यार थोड़ा टाइम और मिल जाए।
1: जॉब होता ना तो जॉब होता 9 to 5, और आप जब 9 जॉब की तरह करते हैं तो वो 5 बजने का इंतजार होता
0: है,
1: सुबह 9 बजने से पहले आप उठते नहीं,
0: उठते नहीं है।
1: तो लेकिन आपका जब पैशन होता है ना, काम करने का मन होता है अच्छा, तो सुबह के 9 नहीं दिखते, शाम के 5 नहीं दिखते आपको।
0: करेक्ट करेक्ट, और जब आप दिल से काम करते हो,
1: जब दिल से आप काम करते,
0: बहुत ही बढ़िया आपने बोला है भाई, और हम भी आपके लिए डेफिनेटली प्रे करेंगे कि आप अगर अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं तो आई रियली होप ऐसा हो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे कनेक्ट हूं, तो आप भी बोले कि आनंद आज मैं अपने पैशन के साथ आया हूं और ये मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: दैट्स अमेजिंग उत्कर्ष भाई। अब जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले आप और मैं जिक्र कर रहे थे किसी फ्रेंडशिप का कोई किस्सा, आई थिंक आप सुनाने वाले थे ना।
1: हाँ, मैं एक दोस्ती का बहुत ही अच्छा और मतलब अच्छा किस्सा सुनाने वाला था।
0: डेफिनेटली,
1: लेकिन उसको बस थोड़ा सा मैंने पोएट्री में डाल दिया है, उसके अंदर की रियलिटी बिल्कुल रियल है। तो हुआ ये कि ये फ्रेंडशिप डे पे मैंने लिखा था।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: तो कल कुछ पुराने पन्नों को टटोला तो कुछ बिखरे अधूरे अल्फाज मिले।
0: क्या बात है।
1: उसी डायरी में तुम्हारा जिक्र किया था मैंने, जिसकी हर शायरी में सूखा सा मुरझाया हुआ गुलाब भी था, और ये वही गुलाब था जो मैं तुम्हें देने के लिए एक गरीब बच्चे से खरीद कर लाया था, और उसने मुझे साथ में एक दुआ भी दी थी, कहा था भैया आज ना आपको आपका प्यार मिल जाएगा। तो उस दिन ठान लिया कि कह दूंगा तुमसे दिल की हर एक बात, बता दूंगा तुम्हें अपने सारे जज्बात, मिटा डालूंगा दरमियां हर दूरी, और तब जाकर होगी तेरी मेरी कहानी पूरी।
0: क्या बात है यार।
1: मगर मगर मगर मगर मगर मेरी एक किस्म, मैं तुम्हें कभी वो गुलाब दे ही नहीं पाया, और देता भी तो कैसे, तुमने उस दिन मुझसे पूछ जो लिया था कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे ना, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा, और तेरे इन 2 सवालों ने मुझे तुझसे कुछ भी कहने से रोक दिया। अब दिल से यह आवाज आई कि शायद शायद तुझे मेरे हाथों में हाथ डालकर चलने से ज्यादा मेरे संग वक्त बिताना पसंद है, मेरे संग लड़ना पसंद है। तुझे बाजार के तोहफे नहीं, मेरे साथ वक्त बिताना पसंद है। और फिर इस दिल ने तय कर लिया कि अब चाहे अब कोई भी इजहारे नहीं होगा, कोई मोहब्बत नहीं होगी, होगी तो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती। और वो इसलिए भी क्योंकि मैं अपनी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, मुझे कबूल था। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
0: बहुत ही बढ़िया यार।
1: तो ये जब किसी दोस्त को लिखा गया कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तब ये लिखा गया था। बड़ा कनेक्टिंग है। आई होप सो कि मेरे जो लोग ये सुन रहे हैं, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, वो जब ये सुनेंगे तो वो बहुत रिलेट कर पाएंगे इस चीज से।
0: मेरे को ना एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, यू नो, कि आप जो भी चीज परफॉर्म कर रहे हो ना, आप उसमें यू नो, घुस जा रहे हो। वो कहते हैं ना, अगर आप कोई चीज करते हो तो आप उस कैरेक्टर में घुस जाओ। आपने अभी ये फ्रेंडशिप वाला जो भी किस्सा शेयर किया, इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो। आई डोंट नो, बिकॉज ये एकदम रिलेटेबल इसलिए लगा क्योंकि वो स्टोरी आपने खुद के ऊपर यू नो, एकदम से ब्रॉडकास्ट कर दी कि ये मेरी कहानी है।
1: yes.
0: और आपने उसको ऐसे शेरो शायरी या पोएट्री वे में नहीं, आपने उसको स्टोरी टेलिंग के साथ में यू नो, इतने फ्लुएंटली बोला, इतने अच्छे से और इतनी मधुर आवाज में मनमुक्त हो गया मैं तो।
1: इसीलिए मैं कहता भी हूँ हर बार कि आप जो लिखने वाले हो उसको पहले ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज को फील करिए।
0: एब्सोल्युटली।
1: जब आप फील कर लेंगे उस चीज को, दैट आप इमेजिन कर लेंगे कि आई एम इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में मैं हूँ, तब आप बहुत अच्छा
0: लिख पाएंगे।
1: बिगर राइटर आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे।
0: और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ डिलीवर भी कर रहे हैं,
1: तो आप उससे अच्छा नहीं डिलीवर,
0: क्योंकि वो जब तक आपके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, जब तक वो फीलिंग नहीं होंगी। इनफैक्ट ये सिंगर का भी सेम रहता है, उत्कर्ष भैया जब वो कोई गाना गा रहे होते हैं, अगर उनका उनका जोनर है कि भैया आपको सैड गाना है, तो वो मैंने उदित नारायण जी का इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि आप जब अगर कोई हैप्पी गाना गा रहे हैं तो आप इतने हैप्पीनेस के साथ गाइए कि आपसे दुनिया में ज्यादा कोई खुश है ही नहीं। मतलब आपको ऐसे गाना है कि सबसे ज्यादा खुश आप हैं, तभी वो एक्चुअल में फील होगा सामने वाले को। और अगर आप कोई सैड चीज कर रहे हो तो आपको ऐसे करना है कि आपसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई और है ही नहीं, आप ही सबसे ज्यादा दुखी दुनिया के इंसान है, तभी आप एक्चुअल में अपना जो भी आप देना चाह रहे हैं वो आप दे पाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है और ये आप में कूट कूट के भरा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप बड़ी शांत और बड़ी सरल स्वभाव के साथ बात कर रहे हैं, मतलब इतनी रियल लाइफ में भी शांत है या फिर इधर माइक पे बैठ के आप इतने शांत है?
1: नहीं, मैं जनरली, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही अपना इंट्रोडक्टरी शेर बताया था, मैंने कहा कि मैं भोला वसादा सा जाने सारने वाला, तो मैं हूँ एक्चुअली। मेरा नेचर ही सबसे पहले
0: चुपचाप से रहने वाले टाइप के लग रहे हैं आप।
1: रहने वाला नहीं, चुपचाप तो नहीं रहता हूँ, बोलने वाला, हंसी मजाक करने वाला और ये।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: लेकिन मेरे अंदर एक और पर्सनैलिटी है जो कि रिजर्वड है बहुत ज्यादा।
0: ऑलराइट।
1: तो मैं काफी जगहों पर खुद को शांत और अच्छा महसूस कराने के लिए अकेले बैठना पसंद करता हूँ, बात करना। और मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है वो जनरली काम ही रहता है। हूँ टीचर, लेकिन कभी चिल्लाता नहीं हूँ क्लास में, इवन जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चों से भी अगर आप कभी मिलेंगे तो पहली बार टीचर्स की फैन फॉलोइंग मैंने देखी है, जो मेरी है शायद, आई गेस मेरी है।
0: लग रहा है मुझे वो आपकी यू नो, वो इंसान की नेचर में आ जाती है।
1: कर रहा हूँ, बट मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नेचर है ऐसा कि मैं थोड़ा सा काम रहता हूँ, थोड़ा सुलझा हुआ, थोड़ा
0: नहीं। एक्चुअली मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भाई जाना है, उसके बाद वो वहां जा रहे हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप सेम चीज कर रहे होते हैं, तो कभी कभी आ जाता है।
1: असल में क्या था कि मेरे फादर से पापा, बहुत पापा टाइप वाले पापा थे मेरे, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, तो उनसे कभी ना कहने की हिम्मत नहीं हुई कि पापा मुझे एक्टिंग में जाना है, सिंगिंग में जाना है, पोएट्री या शायरी कुछ करना है समझो। अभी तो क्या है कि अभी जगह जगह जाते हैं, शोज करते हैं, तो पता चल जाता है, पापा बड़े खुश होते हैं। अभी उड़ीसा मुरादाबाद में जो हुआ था लिटरेरी इवेंट, उसमें भी मुझे पढ़ने का मौका मिला और काफी अच्छा मोमेंट वगैरह उन्होंने दिया, तो पापा को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। लेकिन पहले ये चीजें नहीं थी हमारे टाइम पे, जब हम छोटे थे तब हमें इतना मौका नहीं मिला, तो हम पढ़ाई। फिर मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने मन का ना कर सको तो आप जो कर रहे हैं उसमें अपना मन लगा लीजिए।
0: वेरी नाइस, ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही रियल बात बोली।
1: हाँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, मैं पापा के डर से किताब खोल के बैठ सकता हूँ, बट मैं पढ़ नहीं सकता।
0: मतलब उनको शो ऑफ करेंगे कि हाँ, आपका प्रेशर है, हम पढ़ रहे हैं।
1: और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज के टाइम पे यही
0: कर रहे हैं, वो दिल से नहीं आ रहा होता बेसिकली।
1: लेकिन अगर आपको पता है कि आपको पढ़ना ही है, आप इससे परे नहीं जा सकते, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप अपना कोई स्टेप नहीं ले सकते, तो फिर जो कर रहे हैं उसको मन से करिए, क्योंकि इनपुट जब आप दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं विच इज मनी करंटली, मतलब टाइम इज मनी ना, और अगर आप अपना किसी चीज को टाइम दे रहे हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, उसको इम्पैक्टफुल होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप जो भी काम करें मन से करें, भले वो आपके मन का हो रहा हो या किसी और के मन का हो रहा हो।
0: पॉइंट तो है गाइस, और अगली बात जो होगी वो आपके मन की होगी, आपके हित की होगी, क्योंकि अगला म्यूजिकल ब्रेक आपके लिए आ रहा है यार। हमारी बातचीत तो चलती रहेंगी, सो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको लग रहा है आनंद, थोड़ा सा गाने शाने की तरफ ले जाओ हमें, ठीक है। एक बढ़िया सा म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है, एक बढ़िया सा गाना सुन के वापस जल्दी मिलेंगे आपसे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। उत्कर्ष अग्रवाल जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और हम लौट कर आएंगे तो उनकी एक बहुत ही अच्छी सी एक, वो उन्होंने बताया था ना, राधा कृष्ण के ऊपर कुछ तो लिखते हैं बढ़िया सा, तो वो हम सुनेंगे। आप कहीं मत जाइए, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ। डोंट फॉरगेट, वहां भी अच्छी चीजें लेकर आते हैं। एंड ऑफिशियल आईडी डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं आप, एफ एम मुरादाबाद 89.6 इस नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो कीजिए। वहां पर भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। और अभी एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस लेकर आते हैं कर्ष जी को। आप ही में जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। क्या हाल चाल है जी, सब बढ़िया चल रहा है? वेरी नाइस यार।

0: वेलकम बैक की वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो। आप सुन रहे हैं आनंद विद यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप सब बहुत ही बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे इस कॉन्वर्सेशन को, इस प्रोग्राम को, और ये प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। मेरे साथ आज के हमारे स्पेशल गेस्ट उत्कर्ष अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, एंड आई एम सुपर हैप्पी बिकॉज उनके साथ बात करके बहुत ही मजा आ रहा है, और ऐसे मजेदार लोग मुरादाबाद में भी रहते हैं यार, पता नहीं था। वेल, थैंक यू वेरी मच उत्कर्ष भाई, आप आए, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिसनर्स के साथ साझा किया, और आपने जितना भी जो भी सुनाया वो बहुत ही मजेदार था, और बहुत ही मतलब काबिले तारीफ था यार भाई, मजा आ गया आपकी इस कॉन्वर्सेशन को सुन के। एंड आई होप यार आप तो खुद ही डिलीवर कर रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें, आपको कितना मजा आ रहा है आप बताओ यार भाई।
1: नहीं, मुझे तो डेफिनेटली बहुत मजा आ रहा है बातचीत करके, क्योंकि मैं तो चाह ही रहा था कि ये सेशन खत्म ना हो, क्योंकि मजा आ रहा है बातचीत में।
0: अरे वाह क्या बात है। अच्छा मतलब यू नो आपको ऐसा कुछ पता था कल तक कि आज आप इधर आने वाले हैं?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था। बस
0: कल रात को तो ऐसे सोचे नहीं थे कल एक आनंद नाम की लड़की से भी मुलाकात होने वाली है।
1: बिल्कुल, आरजे आनंद जी से मिलके वाकई आनंद आ गया।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच,
1: आप अपने नाम को सार्थक तो कर रहे हैं।
0: अरे सर थैंक यू सो मच। वही वापस बैक टू पॉइंट कि जब आपका पैशन प्रोफेशन बनता है ना तो आप उसमें जी जान लगा देते हो, है ना, फिर उसमें जो निकल के आता है कि ओरिजिनल वाला प्यार, वो फिर लोग पसंद करते हैं यार, तो वही वाली चीज है,
1: ऑटोमेटिकली पसंद आने लग जाता है लोगों को, क्योंकि आपने जो किया होता है ना वो कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल होता है।
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि वो आप उसमें वो चीज कर रहे होते हो जो आपको, जिससे आपको प्यार था वो चीज आप और अच्छे से करते हो, वो होते हैं जिस चीज में हमें मोहब्बत होती है कुछ नहीं आप ही अच्छी हो जाते है ना, वो चीज है जैसे आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको उस चीज से प्यार है, वो चीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर से बाहर निकल रही है, मैं देख पा रहा हूँ। सो भैया आप सोशल मीडिया तो डेफिनेटली यूज करते हैं?
1: हाँ मैं यूज करता हूँ, मेरा सोशल मीडिया, मेरा अपना जो पर्सनल अकाउंट है, हालांकि मैं
0: कितना मतलब एक्टिव है सोशली, आप अभी इतना अच्छा आप कर दे तो मुझे लगता है आपको सोशली पे जाना चाहिए।
1: मैं सोशली पोएट्रीज और इन सब चीजों को लेकर एक्टिव नहीं हूँ, सोशली में उतना ही एक्टिव हूँ जितना सोशल मीडिया को देखने में टाइम लगता है।
0: ओ भाई
1: मैं इसी चीज में थोड़ा सा पीछे हूँ।
0: ऑलराइट,
1: मैंने जैसे कि कहा कि मैं और कामों में इतना उलझा हूँ, जिम्मेदारियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कि खुद को नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, और दैट इज माय फॉल्ट। मैं इसे मानता हूँ कि ये मेरा प्रॉपर फॉल्ट है,
0: बिकॉज
1: अपने आप को जरूर टाइम देना
0: मुझे लगता है कि इतना अच्छा आप कर रहे हैं, और ये जहां तक 4-5 हजार लोगों तक जा रहा है, अगर आप ये मतलब जो आप करते हैं अपना जहां भी आप जाते हैं जितने भी आप सर्कल में करते हैं, बट सोशल मीडिया दैट इज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, अगर आप वहां कोई चीज कर रहे हैं तो वो फिर आप बताओ उसकी क्वांटिटी कितने लाखों करोड़
1: पेज था। एक हर्फ के नाम से मैंने एक पेज बनाया था,
0: ऑलराइट,
1: क्योंकि एक हर्फ वो पहली पोएट्री थी जो मेरी बहुत वायरल हुई थी।
0: अरे वाह,
1: एक हर्फ का टाइटल था उसका, तो मैंने उसी के नाम से पेज बनाया।
0: नाम बड़ा डिफरेंट अच्छा लग रहा है यार इसका, एक हर्फ।
1: हर्फ का मतलब होता है एक अक्षर, एक लेटर,
0: ऑलराइट,
1: एक अल्फाबेट आप कह सकते हैं। तो एक हर्फ मैंने लिखा था, मैं एक हर्फ की कुछ ऐसा लिखूं, तेरे नाम जिंदगी लिखूं, समथिंग ऐसा, वो बहुत पॉपुलर पोएट्री थी मेरी, बहुत वायरल हुई थी। बट फिर हुआ ये कि धीरे धीरे उस पर व्यूज उतना नहीं मिलता था मुझे, क्योंकि आजकल लोग जो होते हैं ज्यादातर अच्छी चीजों को कम और
0: थोड़ा
1: सा वो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को वो प्रॉब्लम होती है कि यार मैं इतना अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ लोग सुन नहीं रहे।
0: पर मुझे ऐसा लगता है उत्कर्ष
1: भाई, कंसिस्टेंसी उसमें, रेगुलरिटी,
0: मुझे भी वही बोलना था कि आपको ना यार आपको ना दुनिया के लिए नहीं करना है, हमें अपने लिए करना
1: है,
0: आपको आपको एक्साइटमेंट मिलना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए, वाह यार आज मैंने वीडियो डाली मतलब मजा आ गया, डजंट मैटर उस पे लाइक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं तो डालू भाई।
1: ये शेयर करने का मेरा मोटिव ये था कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं, और अगर उनमें से कोई मेरे जैसा कोई है या आपके जैसा कोई है जो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसे रिटर्न नहीं मिल रहा है, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कभी भी फ्रस्ट्रेशन में अपनी इन चीजों को खराब ना करें, आप लगे रहे, एक दिन आपको आउटपुट मिलेगा।
0: बहुत ही शानदार,
1: जब जो खराब चीजें करने वाले लोग लगे हुए हैं मेहनत,
0: हाँ, बिल्कुल,
1: तो हम तो अच्छा कर रहे हैं,
0: अच्छा कर रहे हैं,
1: बस हम अच्छा करने के बाद क्यों नहीं लगे हुए।
0: बट वही है ना कि हमारा जो फ्लो है, हमारी जो कंसिस्टेंसी है, वो हम बीच में तोड़ देते हमें, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार हमें वो मिल ही नहीं पा रहा है जो हम चाह रहे हैं।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप चाहे एजुकेशन के माध्यम में ले लीजिए, आप पोइट्री, शायरी, आपको कुछ भी ए टू जेड कुछ भी करना है, आप वर्ल्ड वाइड रीच कर सकते हैं सिर्फ एक सोशल मीडिया से।
0: करेक्ट,
1: और आप उसको चलाते भी, एंजॉय भी करते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, तो आप जितना टाइम उस पर बिताते हैं रील्स देखने में, उतना टाइम अगर हम रील्स बनाने में और पोस्ट डालने में लगाए, तो शायद हम भी किसी ना किसी मूवी में काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होंगे।
0: बट यार इतना इजी नहीं होता ना उत्कर्ष भाई, है ना,
1: मेहनत तो लगती है जी
0: लेकिन
1: पेशेंस,
0: एब्सोल्युटली वही मैं एक्चुअली, मुझे ये लगता है कि आपने बहुत सही बोला है कि हम ना व्यूवर्स बनना पसंद करते हैं, हम क्रिएटर बनना पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है जिस दिन आप क्रिएट करना शुरू कर दोगे ना चीजों को, और वो अलग लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे, तो आपका अच्छा होगा।
1: मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो व्यू करके क्रिटिसाइज करते हैं कि यार इससे अच्छा तो मैं कर लेता।
0: होता है यार, बहुत बार ही होता है हमारे मन में एक थॉट आता है।
1: इसका मतलब आप जानते हो कि आप उससे कहीं ना कहीं बेहतर
0: कर सकते हो। आपका पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए ना, मेन बात ये भी तो है। बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं आप, मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल आरजे आप बन जाओगे। मेरी चेयर हिलने लगी आपकी आवाज।
1: आरजे में आने का तो खैर इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपका कॉम्पिटिशन नहीं हूँ।
0: अरे यार, मुझे तो कंपटीशन अगर हेल्दी वाला हो यार, अपने को तो वो वाला जमता है भैया। हाँ। क्योंकि हम ना थोड़े से पॉजिटिव माइंड मेकअप के साथ काम करते हैं।
1: कंपटीशन होना बहुत जरूरी है ग्रो करने के लिए।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: जिनकी लाइफ में कंपटीशन,
0: मुझे लगता है कि अगर आप खुद से कॉन्फिडेंट खुद के साथ आप कंपटीशन कर रहे हो तो वो ज्यादा आपको बढ़िया लगता है,
1: वो बेहतर। देखो, खुद से कंपटीशन तो ऑब्वियसली बेटर है, लेकिन अपने आप से भी कंपटीशन करने के लिए आपको सामने एक मोटिवेशनली कंपटीशन होना चाहिए।
0: वो तो होता ही है।
1: अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पार्लियामेंट में एक बार बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी कि अपोजिशन जिस देश में मजबूत नहीं होता ना, उस देश की सरकार की अर्थ जो सरकार व्यवस्था होती है, जो सिस्टम होता है, जो कानून व्यवस्था होती है, वो सही नहीं होती है। क्योंकि अपोजिशन बहुत मजबूत होना चाहिए, और इसीलिए कंपटीशन आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको आईना दिखना चाहिए कि आप क्या हो।
0: बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मुझे भी लगता है, और देखते हैं यार, कंपटीशन तो दाएं बाएं है ही, सोशल मीडिया पे तो सबसे बड़ा कंपटीशन चल ही रहा है। और बाकी बट ये है कि अपना काम अच्छे तरीके से करो, सही डायरेक्शन में करो और सही मन से करो, तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही होगा यार। हाँ, मेरा मानना ये है। उत्कर्ष भाई, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू भाई। आप आए,
1: थैंक यू सो मच,
0: मुझे बहुत अच्छा लगा। बट जाने से पहले हमने एक छोटी सी यू नो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भैया आप जो करते हैं राधा कृष्ण जी के ऊपर, आप कुछ बढ़िया एक बार वो जाते जाते कुछ सुना दे हमारे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ। मैं एक स्टैंजा अपनी पोइट्री का सुना देता हूँ जो कि उसका टाइटल है, ना मैं कृष्ण हूँ ना तू राधा है।
0: वाह।
1: एक प्रेमी और एक प्रेमिका, यानी कि एक लवर और एक उसकी लवर का एक कॉन्वर्जेशन है। एक प्रेमी अपनी सारी कोशिशें करके हार गया है और उसको वो किसी भी तरीके से अपना नहीं बना पा रहा है। तब वो अपनी प्रेमिका से कह रहा है और बता रहा है कि मैं और तू बिल्कुल एक ही है, लेकिन फिर भी डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट वाली सिचुएशन। तो लड़का कहता है, मैं शब्द हूँ तू भाषा है, अपने प्रेम की यही परिभाषा है, अधूरा हूं तुझ में इस तरह जैसे फलक पर चांद आधा है।
0: क्या बात है।
1: मैं शब्द हूं तू भाषा है, अपने प्रेम की यही परिभाषा है, अधूरा हूं तुझ में इस तरह जैसे फलक पर चांद आधा है, सात जन्मों का ये वादा है, मैं पतंग हूं तू धागा है। सात जन्मों का ये वादा है, मैं पतंग हूं तू धागा है, पर जीवन की ये बाधा है, पर जीवन की ये बाधा है, ना मैं कृष्ण हूं ना तू राधा है, ना मैं कृष्ण हूं ना तू राधा है। लेकिन इसका आंसर देती है लड़की अपने आंसर, कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, क्या है मैं बताती हूं। और लड़की कहती है कि मैं प्रेम हूं तू समर्पण है, मैं रूप हूं तू दर्पण है, मैं प्रेम हूं तू समर्पण है, मैं रूप हूं

0: कैसे कह दिया प्रियतम, ना मैं तेरा कृष्ण हूं ना तू मेरी राधा है। थैंक यू सो मच।
1: वेरी वेरी नाइस भैया, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है यार, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, अनकररेबल, बहुत ही बढ़िया था एंड यू आर माइंड ब्लोइंग यार।
0: थैंक यू सो मच।
1: नाकुर पर्सनालिटी यार।
0: मैं भी आपके लिए सेम लाइन कहना चाहूंगा कि एब्सोल्युटली यू आर फैबुलस।
1: अरे यार थैंक यू सो मच, माय प्लेजर भैया, मुझे अच्छा लगा। और जब दो अच्छे लोग मिलते हैं तो ये तारीफें अपने आप निकल जाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना, वाइब मैच करने की बात भी होती है,
0: वाइब हमारी मैच हो गई है।
1: डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल भैया, क्योंकि एक्चुअली ना जोनर थोड़े से अलग हैं, बट जो चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी सेम है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: है ना। और जब आपका एक ऑरा बढ़िया होता है ना, जब आप पॉजिटिव होते हैं, आपकी वाइब्रेशन अच्छी होती है, तो सामने वाले के साथ वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाती है, राइट। बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ आपकी वाइब मैच करती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड आई एम रियली श्योर गाइज आपने बहुत एंजॉय किया होगा सेशन को। और अभी हम उत्कर्ष भाई को फ्री करेंगे, बिकॉज अगर वो जाएंगे नहीं तो वापस आएंगे कैसे भैया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनको मतलब दोबारा बुलाने के लिए इधर से बाय-बाय भी करना पड़ेगा। तो उत्कर्ष जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि हम इस सेशन को एंड करें, बट आई कांट बिलीव दिस, कैसे 40 मिनट हो गए। आई कांट बिलीव दिस यार, मतलब हमने इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन किया है, 40 मिनट हो गए बात करते करते, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि, और इतना लंबा तो खैर हम भी नहीं बोलते हैं, बट आपके साथ वही है ना कि जब आपके साथ कोई बातों नहीं इंसान आ जाए, फिर आपको नहीं पता आपकी गाड़ी कहाँ पहुंचने वाली है। सो वो वाली चीज थी। वेल बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आप डेफिनेटली जब भी मुरादाबाद आए तो प्लीज आप FM मुरादाबाद जरूर आए।
0: थैंक यू,
1: आपका स्वागत रहेगा।
0: जरूर आऊंगा, बिल्कुल आपसे मिलता रहूंगा
1: जी। एंड बाकी हमारे लिसनर्स को जाते जाते अगर कोई आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ आपसे सुनना चाहते हैं, कुछ आपसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो आपके इंस्टाग्राम पे आके आपको फॉलो कर सकते हैं।
0: बिल्कुल कर सकते हैं।
1: मैं भी कर सकता हूँ,
0: बिल्कुल कर सकते हैं।
1: इंस्टाग्राम आप बता दीजिए आप।
0: मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उत्कर्ष 1610 इज माई डेट ऑफ बर्थ, 16 अक्टूबर।
1: नाइस,
0: तो मैंने वही बना रखा है उत्कर्ष 1610। मैं अपने जितने भी पोस्ट हैं अभी पर्सनल अकाउंट से ही पोस्ट करता हूँ, तो जब भी मुझे कुछ पढ़ना हो कुछ सुन सकते हैं।
1: That's very nice. और बाकी FM मुरादाबाद भी सुन सकते हैं, बीच बीच में ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे,
0: गाने वगैरह आप सुन ही सकते हैं किसी न किसी तरीके से।
1: डेफिनेटली डेफिनेटली उत्कर्ष भैया वंस अगेन बहुत अच्छा लगा FM मुरादाबाद। आरजे आनंद आपका दिल से थैंक यू करता है एंड जल्दी मिलेंगे फिर किसी और मोड में, फिर कुछ नई मुलाकातों के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, दोस्तों आप भी अपना ख्याल रखिए। और उत्कर्ष भाई के साथ मैं भी लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। उत्कर्ष भाई आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वे बेस्ट, आप जो भी कर रहे हैं वो अल्टीमेट है, वो करते रहें। और बाकी हम भी आपके साथ हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर यार।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 पीतल नगरी का आपका अपना रेडियो स्टेशन। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, रेडियो बते रहिए, गुनगुनाते रहिए आनंद रेडियो। लेता हूँ अब आपसे जाने की इजाजत, जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बाय बाय, टेक केयर।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका अपना अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग। आज की शाम थोड़ी खास है क्योंकि पता है आपको, कल हमारे लिए भी बहुत कुछ चीज़ें, हमारे सभी के लिए, अपने सभी देशवासियों के लिए कल का दिन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि बात है उस एहसास की जिसे हम सिर्फ एक तारीख से नहीं जोड़ सकते। 15 अगस्त को सब सच में कहें तो ये कहते ना, एक तारीख नहीं, करोड़ों सपनों की जीत है। एक छोटी सी शायरी से हम शुरुआत करते हैं आज के शो की। सरहद पर जो जागते हैं उनकी वजह से हम चैन से सोते हैं, ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली दोस्तों, इसके पीछे ना जाने कितने लोग अपने सपने खोते हैं। दोस्तों ज़रा सोचिए, आज हम खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, अपने सपने देख सकते हैं, अपने पसंद का करियर भी चुन सकते हैं, लेकिन कभी एक ऐसा दौर भी था जब अपने ही देश में अपने फैसले लेने की भी आज़ादी नहीं थी। शायद आपको थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा सा याद हो या कुछ रिकॉल भी करें तो कहते हैं ना कि अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई आप बताइए कि आज़ादी का मतलब क्या है, तो आपके लिए आज़ादी का मतलब जो भी जैसा भी हो, कहीं ना कहीं दिल में रहता है कि हाँ, जब भी हम कभी बॉर्डर पे या कभी भी किसी भी अपने देश से रिलेटेड कोई भी एक एक्टिविटी, कुछ भी पता चलता है कि हाँ, आज हमारे देश में कभी कोई स्पोर्ट्समैन कुछ जीत के लाया, कोई भी मेडल जीत के लाया, या फिर कभी सरहद पे कोई हल्की सी वॉर हुई, तो एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कि हाँ, हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, जहाँ हम सामने वाले को पूरा करारा जवाब दे सकते हैं। और देश के लिए आप एक ऐसा क्या करना चाहते हैं जिस पे आपको भी गर्व हो, और 15 अगस्त की आपकी सबसे पुरानी याद कौन सी है? चलिए आज इन्हीं सभी सवालों पे, इन्हीं सभी बातों पे आज हम पूरा एक घंटे बात करेंगे और दिल से दिल की आवाज़ें निकालेंगे। तो चलिए कहीं नहीं, 9837896896 पे कॉल करें या मैसेज करें, या कोई भी एक ऐसा सुंदर सा मैसेज जो सभी के लिए आप डेडिकेट करना चाहें वो ज़रूर हमें फॉरवर्ड करें। अभी हमारे पास एक मैसेज आया है हमारे लिसनर का, कहते हैं, नमस्ते अखिल सर, कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा, मेरे जाने के बाद भी तिरंगा हिमालय पर इस तरह ही मुस्कुराएगा, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तड़पती धूप में जल कर देख लेना, कैसी होती है हिफाजत मुल्क की किसी जवान से पूछ कर देख लेना। क्या बात कही है सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्ले मेरा फेवरेट सॉन्ग देश के यारों, क्या कहना। ज़रूर आपके हम सॉन्ग प्ले करेंगे। नाम है आपके शंकर लाल यादव जी, निरांशी यादव, नमन यादव, अमित यादव, ऋतु यादव, लाइन पार मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहे से। सर आज हमारी बुआ जी की लड़की का बर्थडे है जो कि ज्ञानी वाली बस्ती में रहती हैं, अर्पिता यादव। तो अर्पिता यादव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और खिलखिलाते रहें। और ये जो गाना डेडिकेट किया है ये भी आपके लिए हम प्ले करते हैं, पूरी एफएम टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी फटाफट कॉल करें 9837896896 पे और करते हैं कुछ दिल से दिल की निकली हुई गुफ्तगू।

कोई शौक जवानों के, कहीं कर तब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और कहते हैं ना कि कुछ जो पुरानी बातें हैं, जो इतिहास की किताबें आज खोलते हैं, मगर बोरिंग तरीके से नहीं, कुछ ना कुछ नए तरीके से। क्या आपको पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ बड़े नेताओं तक ही सीमित नहीं था? देश के अलग अलग हिस्सों में आम लोग, विद्यार्थी, महिलाएं, किसान, मजदूर और युवा भी आंदोलन का हिस्सा बने। और एक बहुत खूबसूरत बात ये थी कि उस समय लोगों के बीच एक कॉमन इमोशन था, देश पहले था। ना उस दौर में व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था, ना लाइव न्यूज़ थी। इवन आप लाइव नाम का तो कोई ऐसा कहते हैं वर्ड ही यूज़ नहीं होता था कि कब आप एकदम इंस्टाग्राम या फेसबुक लाइव हो जाएं। जब ये चीज़ें थी नहीं तो कैसे हो सकती थी? तो संदेश तो तब भी पहुंचते थे, मगर उनका ज़रिया दूसरा था, अखबारों से, पर्चों से, या सभाओं से, या फिर व्यक्तिगत संपर्क से। एक शायरी इसी के ऊपर है, ना मोबाइल था ना कोई नेटवर्क था, फिर भी दिलों में देश का कनेक्शन था। आज टेक्नोलॉजी हमारे साथ में है, बस सवाल इतना है, क्या देश के लिए हमारा दिल भी उतना ही स्ट्रांग है? कहते हैं ना, ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। चलिए सुनते हैं एक मोटिवेशनल सॉन्ग। तब तक के लिए आप भी कोई ना कोई बात अपने पास रखिए जो आपको आज़ादी से जोड़ती है, और अंदर ही अंदर आवाज़ आती है कि काश ये चीज़ भी होनी चाहिए थी आज़ादी पे, और ये भी होनी चाहिए थी। होती बहुत सारी चीज़ें, मगर कुछ चीज़ें होती हैं हमेशा हमेशा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जोर लगाती रहती। 9837896896 इस पे करेंगे खूब सारी बातें, आपके मैसेजेस और कॉल की थोड़ी सी होंगी गुफ्तगू। तो चलिए पहले सुनते हैं ये गाना, उसके बाद करते हैं खूब सारी।

एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। 1947 में लोगों की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? सिर्फ आजादी। और आज हमारी सबसे बड़ी इच्छाएं क्या हैं? अच्छी नौकरी, अपना घर, बिजनेस, सक्सेस, ट्रेवल, खूब सारा घूमना, खूब सारा सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होना। मगर ये सब गलत नहीं है। सवाल ये है कि क्या हमारी पर्सनल सक्सेस के साथ साथ देश की प्रोग्रेस भी हमारी प्रायोरिटी है या नहीं? देश के लिए कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ सेना में जाना नहीं है, ईमानदारी से काम करना भी एक कंट्रीब्यूशन है, टैक्स देना भी एक कंट्रीब्यूशन है, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना भी एक कंट्रीब्यूशन है, और पेड़ लगाना भी एक कंट्रीब्यूशन है, सड़क पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना भी अपने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर रेड लाइट है तो उसको रेड लाइट पे रुकना ही है साहब। रेड लाइट होने के बावजूद भी गाड़ी क्रॉस कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने से दूसरा बंदा हर्ट हो सकता है। कभी कभी होता है ना कि रेड लाइट हो रही है, इधर उधर देखते हैं कि भाई ट्रैफिक नहीं है, कोई उधर से गाड़ी नहीं आ रही है, तो क्यों रुक जा, पास कर देते हैं। मगर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जो चीज़ है उसे फॉलो करते हुए चलें और अपने देश के लोगों का सम्मान भी करना चाहिए। यही तो एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने देश की आज़ादी में कि हाँ, हम इस तरीके से भी साथ दे सकते हैं। एक शायरी हमारे पास आई है, आमिर जी ने भेजी है। देश बदलने का सपना सब देखते हैं, पर शुरुआत खुद से कितना करते हैं। तिरंगा हाथ में लेना आसान है, तिरंगे की इज्जत दिल में रखना ज़रूरी है। क्या बात है आमिर साहब, आपकी बातें सुन के तो मुझे आमिर खान साहब की याद आ गई। वो भी ऐसी मोटिवेशनल जो हैं बातें करते रहते हैं। उनका एक शो भी आया था, शायद आप सभी को याद हो। हाँ, अगर याद है तो मुझे मैसेज करिएगा, बताइएगा उस शो का क्या नाम था जो उन्होंने सभी भारतवासियों के लिए, जब वो आता था उस शो में तो खूब सारी बातें होती थी देश की, अपने देश के से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनसे रिलेटेड उस शो में बातें होती थी। तो शायद याद होगा आपको, बताइएगा, मैं भी चेक करता हूँ कि क्या क्या आपको याद रहा है। चलिए साहब, एक शायरी जो है हमारे एक लिसनर की भी है, उनकी भी सुनते हैं। मेरा प्यारा भारत, मेरा भारत देश महान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा मेरी शान है, भारत मेरी जान है, वीरों ने बलिदान दिया, देश को अपना मान दिया, हाथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, भारत का नाम करेंगे, जय हिंद का नारा लगाएंगे, भारत को खूब सजाएंगे, जय हिंद जय भारत। ये जो शायरी हमें भेजी है, ये शायरी आई है रामपुर से शबनम बी, लाइबा, काजमी, अफरोज, फातिमा, गुड इवनिंग अखिल सर, कैसे हैं आप? 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका ये जो गाना जो आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था वो तो आपने सुन ही लिया होगा, तो बहुत ही अच्छी शायरी थी। और कहते हैं ना कि 15 अगस्त को जब एकदम सामने से मिलता है बंदा, एकदम मुस्कुरा के, एकदम दिल खोल के मिलते हैं, तो बहुत ही अंदर से फीलिंग्स जो है एकदम आपके पास मोटिवेशनल रहती हैं। और हमारे पास हमारे और लिसनर्स के मैसेज हैं, जरा देखते हैं और पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं सब। अखिल जी, मेरे लिए आज़ादी का मतलब है कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सकूं। रोहित रामपुर, क्या बात है साहब, रामपुर से आज मेरे मैसेजेज आ रहे हैं। रोहित जी बहुत बढ़िया बात कही, और इससे खूबसूरत डेफिनेशन क्या होगी। दूसरा मैसेज है, मेरे लिए आज़ादी का मतलब है कि हर लड़की बिना डर के अपने सपने पूरे कर सके। संगीता, आशियाना कॉलोनी, क्या बात है संगीता जी, और बहुत ही बढ़िया लिखा है आपने। आपने ये जो मैसेज के द्वारा बहुत ही खूबसूरत बात भी कही एक तरीके से, कि बिना डर के आज के समय में अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके लड़कियां, और बिना डर के जो अपनी पढ़ाई है, जो अपनी शिक्षा है, वो भी पूरी कर सकें। इससे खूबसूरत बात आप और क्या कहें। एक मैसेज और है, आज सबने भाई बना दिया, अखिल भाई, देश के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन अभी छोटा है,
लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ। क्या बात है साहब, आपने भले ही ये बात छोटे उसमें कही है, मगर ये सोच जो है ना आपकी बड़ी है, बहुत बहुत ही बड़ी सोच है। देश को हमेशा बड़े बड़े हीरोज की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी छोटे छोटे अच्छे काम मिलकर ही बड़ा बदलाव कर देते हैं। तो काम करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लेके आएगा। और दोस्तों, ऐसी कोई बात आपकी भी हो जो दिल से निकलती हो, तो ज़रूर हमें मैसेज करें, कुछ भी बोलें जो दिल से निकली हुई बात हो। 9837896896, एक बार मैं फिर से आपको नंबर बता देता हूँ अपने FM का, 9837896896। करते हैं खूब सारी बात, तब तक के लिए सुनते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और आते हैं इस गाने के बाद।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, जहाँ आप बातें करते हैं अपने दिल की और बताते हैं कि क्या आपको पसंद है या नहीं, या फरमाइश में कौन सा गाना चलने वाला है। कहते हैं ना साहब, ये भी एक आज़ादी होनी चाहिए और ये आज़ादी का बखूबी फ़ायदा उठाते हैं, बखूबी मज़ा भी लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी आज़ादी को भी ना बहुत हल्के में ले लेते हैं, मगर कहते हैं ना, हम क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है साहब, आपका एक वोट उससे फ़र्क पड़ता है, आपकी ऑनेस्टी से फ़र्क पड़ता है, आपके बिहेवियर से फ़र्क पड़ता है, आपके किसी बच्चे को पढ़ाने से फ़र्क पड़ता है, आपके किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से ही फ़र्क पड़ता है। आज हर अगर हम अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें एक बात याद रखनी होगी, देश सिर्फ सरकार नहीं बनाती, देश उसके नागरिक भी बनाते हैं। एक शायरी इसी के ऊपर, वतन से मोहब्बत सिर्फ गीतों से नहीं होती, वतन से मोहब्बत सिर्फ गीतों में नहीं होती, कुछ जिम्मेदारियां निभानी भी पड़ती हैं। तिरंगा हर घर पे अच्छा लगता है, मगर उसके सम्मान की वजह भी बनना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं अपने एक लिसनर से, देखते हैं क्या कहते हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद। क्या कर रहे हैं?
1: जय हिंद, वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम साहब, क्या कर रहे हैं आप?
1: हम क्या कर रहे हैं, आपने मौसम इतना सुहाना कर रखा है कि खाना पीना सर छोड़ दम तुम गाने सुन रहे हैं।
0: क्या बात है साहब, नहीं खाना पीना भी जरूरी है साहब, खाना पीना छोड़ के मत सुनिए कुछ भी।
1: ना ना ना, पहले गाना बाद में खाना।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही बात। तो कुछ आज शायरी सुनाएंगे आज आप? सुनाइए सुनाइए साहब।
1: अच्छा सर, अमर शहीदों ने मिलकर एक सपना सजाया था, अमर शहीदों ने मिलकर एक ऐसा सपना सजाया था, खुशहाल रहेगी देश मेरा, ये सोचकर सब कुछ हो जाता।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है, बिल्कुल एकदम आज आपने पूरी देशभक्ति वाली शायरी सुनाई। तो आज कल आप क्या कर रहे हैं जेठालाल जी,
1: बताइए सर।
0: आपसे हम पूछ रहे हैं, कल आप वैसे कल क्या रहे हैं? कल शनिवार है और आपके लिए पूरे
1: झंडा फहराएंगे।
0: हाँ जी, 15 अगस्त से सर, झंडा फहराने के बाद लड्डू भी खाएंगे।
1: लड्डू खाएंगे, लड्डू खिलाएंगे आपको।
0: ठीक है साहब, साहब हम लड्डू खाएंगे, आप लड्डू खिलाएंगे।
1: भाई आप हमारे फायर ब्रिगेड हो, तो हम तो आपकी हर बात मानेंगे, आप नहीं मानोगे हमारी बात।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही।
1: तो
0: और बताइए सर,
1: बस बॉर्डर फिल्म का गाना सुनवा दीजिए, और क्या हम तो कहें, सभी देशवासियों को जो सुनना है FM रेडियो मुरादाबाद, उन सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
0: क्या बात है साहब, बिल्कुल सही कहा आप सभी, आपको भी सर, आपको भी, आपको भी, आपके आपसे जुड़े हर शख्स को, हर जो भी रेडियो सुन रहे हैं सर, सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आपकी भी ख्वाहिश पूरी करते हैं सर, बॉर्डर मूवी का गाना सुनाते हैं। नमस्कार जी। तो ये जुड़े थे हमारे साथ जेठालाल जी, जो अपनी शायरी के लिए जाने जाते हैं, जब भी आते हैं कुछ ना कुछ बड़ी ऐसी शायरी सुना देते हैं। तो हमारे लिसनर्स ही ऐसे हैं कि ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी हमें भी उनकी याद आ जाती है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन बन जाता है। तो चलिए करते हैं इनकी भी ख्वाहिश पूरी, और इस गाने के बाद लेंगे एक लास्ट कॉल। अगर आपकी कहीं से भी कोई भी दिल में हो फरमाइश, कोई भी बात कहना चाहते हैं, कोई भी ऐसा गाना जो पूरे देशवासियों को, अपने मुरादाबाद वासियों को भी डेडिकेट करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कॉल करें, ज़रूर हमें मैसेज करें, और थोड़ी सी दिल की बातें भी निकालें साहब। मिलते हैं छोटे से गाने के बाद।

और दोस्तों, अब समय हो गया है आज के इस खास सफर को अलविदा कहने का। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल, अगर भारत आपको आज मैसेज भेजे तो आप उसे क्या जवाब देंगे? शायद मेरा जवाब तो यह होगा कि भारत, तूने मुझे पहचान दी, मुझे सपने देखने की आज़ादी दी, अब मेरी बारी है कि मैं तुझे थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करूं। चलने से पहले एक प्यारी सी शायरी आप सभी के लिए, अपने इस देश के लिए। तिरंगे की शान में कुछ यूं रंग जाएं हम, कि हिंदुस्तान को अपने कर्मों पे नाज हो। नाम चाहे छोटा हो हमारा, लेकिन काम ऐसा हो कि देश को हम पर नाज हो। तो मैं हूं आपका अखिल, और ये वक्त था आज दिल से दिल तक बातें करने का। अब हम मिलेंगे अगले सोमवार से शुक्रवार तक, और ठीक 9 बजे जहाँ होगी दिल से दिल की बातें, आपकी और हमारी। याद रखिए, आज़ादी हमें मिली है, लेकिन उसे सम्मान देना हमारी भी जिम्मेदारी है। तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरे प्यारे दोस्तों, और जल्द ही मुलाकात करेंगे हम आपसे।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हमने

0: चतुर गोला चतुर एक पैर है ना, या गोला बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मर

सुबह पे जिस तरह शाम का वो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।